मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ज और एफएम 100.3 मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 10वीं तिथि तदनुसार 1 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना और शुरुआत करते हैं इस गणपति वंदना के साथ।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के

जब हम सच्चे हृदय से ईश्वर को भजते हैं, सच्चे हृदय से उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं, तो उनकी कृपा अनवरत अहेतुकी रूप से हम पर बरसने लगती है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है, पूरे प्रयत्न के साथ हम उन्हें प्राप्त कर लें फिर से, क्योंकि यह उनकी लीला स्थली है। जैसे बच्चे रेत के घनौदे बनाते हैं और फिर मिटा देते हैं, उसमें उन्हें दुख नहीं होता, ऐसे ही यह ईश्वर की लीला स्थली है। ये पूरा संसार उनका क्रीड़ा स्थल है और हमें भेजा है उन्होंने यहाँ रहकर सारे काम क्रोध मद लोभ मत्सर पर विजय प्राप्त कर उन्हें फिर से प्राप्त करने के लिए। यद्यपि वे हमारे अंदर स्वयं विद्यमान है, आत्मा रूप से, चेतना के अंश के रूप से, फिर भी ये एक क्रीड़ा ही है कि हम उन्हें फिर से प्राप्त करने के लिए इन सब से युद्ध करते हुए विजय प्राप्त कर उनकी चरण शरण ग्रहण कर उनके परम धाम को प्राप्त करें।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं महाकवि पद्माकर की गंगा स्तुति।
1: बैति बिरंची भई बामन पगन पर फैले।

0: फैली फिरी ईस सीस पे सुगत की, आई के जहान जहनु जंघा लपटाई फेरी, दीनन के हेत दौरी कीन्ही तीन पथ की। कहे पद्माकर सुमहिमा कहाँ लो कहो, गंगा नाम पायो सोई सबके अरथ की। चार्यो फल फली फूली गह गही गह बही, लह लही कीरत लता है भगीरथ की। गंगा जी के नीर तीर छोड़ी हैं शरीर जिन, तेऊ गने जात पुण्य वंतन की धुर हैं। कहे पद्माकर त्यों तिन की जलू से लखी, गीरवान सकल सराहें जुर जुर हैं। सारथी गोविंद दीप दान वारे भानु होत, पंख वारे भारे पाक शासन से सुर हैं। खौर वारे वरुण तमोर वारे तारापति, चौर वारे चारु चतुरानन चतुर हैं। मुनि मन माने सद माने सारदादि वंदी, नारदादि जाने जे बखानी वेद वानी के। आप अविनाशी हैं विनाशी दुख जालन के, पुण्य के प्रकाशी प्रण पूरक सुप्राणी के। कहे पद्माकर सपाप तम पूषण है, दूषण रहित भव भूषण महानी के। ध्यावो अब ध्यावो लोक पावो देव देवन के, गावो अरि गावो गुण गंगा महारानी के। गंगा के चरित्र लखि भाख्यो जमराज यह, एरे चित्रगुप्त मेरे हुकुम में कान दे। कहे पद्माकर नरक सब मूंद करी, मूंद दरवाजेन को तज यह थान दे। देखु यह देव नदी कीन्हे सब देव याते, दूतन बुलाई के विदा के द्वय पान दे। फारि डारू फरदन राखु रोज नामा कहूँ, खाता खति जान दे बही को बही जान दे। लोचन असम अंग भसम चिता को लाई, तीनों लोक नायक सो कैसे को ठहर तो। कहे पद्माकर बिलो की मिढंग जाके, वेद पुराण गान कैसे अनुसर तो। बांध जटा जूट बैठ पर्वत कूट माही, महाकाल कूट कहाँ कैसे कह हर तो। पीवे नित भंगे रहे प्रेतन के संगे रहे, पूछ तो को नंगे जो न गंगे शीस धर तो। कै धोती हूँ लोक की सिंगार की विशाल माल, कै धो जगी जग में जमात तीर्थन की। कहे पद्माकर विराजे सुर सिंधु धार, कै धो दूध धार काम धेनु के थन की। भूपति भगीरथ के जस की जुलूस कै धो, प्रगटी तपस्या कै धो पूरी जहनु जन की। कै धो कछु राखे राका पति सो इलाका भारी, भूमि की सलाका कै पताका पुण्य गन की। लाई भूमि लोक ते जसूस जब रही जाय, जाहिर खबर करी पापिन के मित्र की। कहे पद्माकर बिलोक जम कही के, बिचारो तो कर्म गति ऐसे अपवित्र की। जो लो लगे कागद बिचारन कछुक तोलो, ताके कान परी धुनि गंगा के चरित्र की। वाके सी सही ते ऐसी गंगा धार बही, जामे बही बही फिरी बही चित्र और गुपित्र की। ज्ञानन में ध्यान में निगम निदानन में, मिलत न क्यों हूँ हरि ही मैं ध्याई यतु है। कहे पद्माकर न तच्छन प्रत्यक्ष होत, अच्छन के आगे हु अधिच्छ गायतु है। इंदिरा के मंदिर में सुनिए आनंद भरे, बींधे भव फंद तहाँ कैसे जायतु है। वेदन के वृंद में न पइये क्षीर सिंधु में, सुगंगा जल बिंदु में गोविंद पाइयतु है।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महाकवि पद्माकर की गंगा स्तुति। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने कृषि जगत।

0: किसान भाइयों को आज हम सुनवा रहे हैं डॉक्टर प्रवीण चरण से अमरीश कुमार शुक्ला की गई बातचीत। विषय है मौसम के अनुरूप कृषि प्रबंधन।
1: किसान भाई, इस समय बारिश का मौसम बा और इस समय सबसे ज़्यादा समस्या किसान भाई के सामने ये आवत है कि अपन उस सब्जी की खेती जोना है ओकर कैसे इंतज़ाम करें, ओकर कैसे अच्छे से प्रबंधन करें कि सब्जी का उत्पादन बढ़िया हो और फसल सुरक्षित रहा है। आज ई विषय पे बातचीत करे खातिर डॉक्टर प्रवीण चरण जी आए हैं। आप निदेशक प्रसार हैं सुआर्ट्स प्रयागराज में। आपका कार्यक्रम में हमारे बहुत बहुत स्वागत बा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये बरसात के मौसम में सब्जी तथा और जोन फसल किसान भाई बोअ थीन ओका बचाव कैसे किया जा सकता है, ओका अच्छे से प्रबंधित कैसे किया जा सकता है।
2: बहुत ही अच्छा आपका सवाल है साहब, क्योंकि विशेष करके इस समय खेती में जो है सब्जियों की और हमारी जितनी भी खरीफ की फसलें हैं उनका रख रखाव प्रबंधन बरसात के मौसम में करना बहुत ही समस्या हो जाती है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिस पर हम किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं। यदि हम इस समय कोई भी सब्जी की बेहन तैयार कर रहे हैं तो बेहन तैयार करने के लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता है इस पर हम विशेष ध्यान दें, या बेहन को हम लगा रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं इस पर भी ध्यान दें। इससे क्या है कि हमारे उत्पादन में काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर हम बेहन किसी के फसल की हम तैयार कर रहे हैं तो हमें विशेष ये ध्यान देना होगा कि बरसात के मौसम में पानी का भरोसा नहीं रहता है, कब अधिक बारिश हो जाए और उस खेत में जल भराव हो जाए। तो जब भी हम बेहन अगर तैयार करते तो हम बेहन तैयार करने के लिए अपने खेत के वो हिस्से का चुनाव करें जहाँ पर जल्दी पानी ना भरता हो और हम उस बेड को, उस क्यारी को ऊंचा बनाएं, कम से कम जो हमारी खेत से और बेड का लगभग 1 फीट ऊंचाई रहनी चाहिए, जिससे कि यदि किसी भी प्रकार से बारिश हो जाती है और भर जाता है पानी तो हमारी बेहन उसमें डूबने ना पाए और अच्छे जल निकास की प्रबंधन करें जिससे कि वो हमारी बेहन खराब नहीं होगी। दूसरी बात, बहुत सी फसलें जो हैं पानी उनको कम चाहिए होता है परंतु पानी इस खरीफ के मौसम में चाहिए, जैसे हमारी मक्का है, आपका मक्का है, तिलहन की है तथा आपकी अरहर है, इसमें पानी चाहिए परंतु पानी मात्रा कम चाहिए, पर पानी चाहिए। अब जैसे धान की बात करेंगे धान में पानी हमें ज़्यादा चाहिए। अब जिस प्रकार से धान में पानी खड़ा रहता है उसी प्रकार से अगर मक्का में या अरहर में या तिलहन में खड़ा हो जाएगा तो वो हमारी सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए, हमें ऐसे अपने खेतों का चुनाव करना चाहिए, ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जिसमें जल भरने की क्षमता कम से कम हो, पानी उसका निकल जाए, क्योंकि ये प्राकृतिक है, अगर बारिश हो रही तो जल भरेगा। तो ऊंचे खेत होने चाहिए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए कि चिकनी ज़्यादा मिट्टी नहीं हो जिससे पानी अगर भरता है तो, और जल निकासी की सही प्रबंधन करना चाहिए जिससे जल निकास हो जाए। यदि हम मक्के की खेती कर रहे हैं तो मक्के की खेती जैसे हम आलू बोते हैं, अगर इस प्रकार से मेड़ी बनाकर अगर इन बरसात के मौसम में खरीफ के मौसम में मक्के की खेती करते हैं तो उससे क्या है कि हमारी जो पौधे की जड़ें जो उस मेड़ पर ऊपर रहेंगी और वो पानी में नहीं डूबेंगी जिससे कि हमारे मक्के की फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार के खेतों का हम चुनाव कर रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल थोड़ा प्रचलन में है और किसान भाई हमरे जाने चाहतीन कि अगर मेड़े पर खेती करें तो क्या उसी फसल को बचावा जा सकता है।
2: हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और बिल्कुल निश्चित फसल बचती है और बचने के साथ साथ उसका उत्पादन भी बढ़ता है। जैसा कि हम जमीन के साथ बोते हैं खेत को, जैसा कि अब आपका रिच बेड का प्लांटर आ गया है अरहर में, कि जैसे कि हम क्या, जैसे आजकल हमारे किसान भाई बहुत से लहसुन की बुवाई करने लगे हैं थोड़ी उठा के क्यारियाँ, तो उसमें क्या प्याज को भी उठा के करने लगे, तो उससे क्या है कि पौधों की जड़ों में पानी तो मिलता है परंतु पानी के साथ साथ क्या होता है कि तमाम खरपतवार भी वहाँ पे आ जाते हैं, खरपतवार के साथ कीट पतंगे भी आ जाते हैं, तो पानी जड़ें खींचती हैं तो हमारे उन पौधों से वो खरपतवार तथा वो कीट पतंगे दूर रहते हैं जिससे कि हमारी फसल जो है अच्छी रहती है तथा साथ के साथ में उसकी पैदावार भी बढ़ जाती है।
1: बढ़िया डॉक्टर साहब, आप कीट पतंगन की बात करें ना इस समय, तो ये मौसम में खासकर कीट पतंगन फसलन को बड़ा प्रभावित करते हैं, खासकर पौधा का, तो उसी बचाव का तरीका भी आप तनिक किसान भाइयों को हमें ज़रूर बता दें।

0: देखिए, इस समय बहुत ज़्यादा जो है कीट पतंगों का प्रकोप रहता है बरसात के समय में, तो इसके लिए देखिए जो जो दवाइयाँ जिस फसल के लिए अगर वैज्ञानिकों ने बताई है उन्हीं दवाइयों का प्रयोग करें, साथ के साथ उन दवाओं का प्रयोग उतना ही करें जो रिकमेंडेड डोज हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई अधिक कर लेते, और विशेष करके खेतों के किनारे साफ सफाई का प्रबंधन जरूर रखें, क्योंकि क्या होता है कीट पतंगे हमारी मुख्य फसल से आके जो किनारे खरपतवार होते हैं उनमें छिपते हैं, फिर रात को या शाम को उन फसलों पर अटैक करते हैं, तो खेत के चारों तरफ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें जिससे कीट पतंगों की मात्रा कम हो जाती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इग्रे साथ एक चीज़ और आप बताओ कि देखें इस समय किसान भाई का हो तो कभो अगैती फसल बोए का है तो पिछैती प्रजाति इस्तेमाल कर लेन, पिछैती बो रहे है तो अगैती इस्तेमाल कर लेन, तो समय पे बुआई करे का फायदा होता है, का ऐसी उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है, इकरे बारे में जानकारी?
0: हाँ जी हाँ, बिल्कुल उत्पादन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अमूमन हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे सपोज करिए कि हमारे जो है हम वैज्ञानिक गण जो कहते हैं कि आप गेहूं की बुवाई 15 नवंबर से स्टार्ट करती है, और हमारे किसान भाई कहाँ तक चले जाए 15 जनवरी तक बुवाई करते जाते हैं, तो हाँ कोई ना कोई कारण होता है हमारे किसान भाई जिस प्रकार से बुवाई नहीं कर पाता है, उसके लिए उनको विशेष करके इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फसल के लिए उन प्रजातियों का चुनाव करें कि मध्यम वर्गीय है कि आपकी अगेती फसल है, उन प्रजातियों का चुनाव करके ही बोएं, क्योंकि हर प्रजाति के लिए अलग अलग समय दिया गया है बुवाई के लिए, तो उससे उत्पादन पे फर्क नहीं पड़ता। यदि हमने अगेती फसल को अगर देर में बो दिया तो हमारे उत्पादन पे फर्क निश्चित पड़ेगा, क्योंकि हर फसल की एक समय सीमा है बढ़ोतरी की, एक समय सीमा है लाइट लेने की, उससे उसके उत्पादन पे फर्क पड़ता है। तो यदि हमने अगर ऐसी फसल का चुनाव कर लिया कि हम जब बाज़ार से खरीद ले जाते हैं जो बीज रखा होता है वही दुकान से हमको मिल जाता है, परंतु हमें जानकारी नहीं रहती है तो इसलिए हम वो बुवाई कर देते हैं, तो हम जरूर कृषि विज्ञान केंद्रों से तथा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों से संपर्क करें, वैज्ञानिकों से संपर्क करें, साहब हम इस समय ये फसल नहीं बो पाएँ और इस फसल की बुवाई करना चाहते हैं, इस समय के लिए कौन कौन सी प्रजातियों को हम चुनाव करें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखें कि बारिश के मौसम में खेती करत किसान भाइयों के लिए अन्य मौसम की अपेक्षा में थोड़ा सा कठिन होता है, और इसमें खासकर नर्सरी अगर तैयार करता है तो वह बहुत परेशानी आवा था, तो कुछ आप इकरे बारे में जानकारी दें कि बारिश के मौसम में नर्सरी कैसे तैयार की जाए, का सावधानियाँ बरते की जरूरत है किसान भाइयों के?
0: देखिए, नर्सरी की बरसात के समय काफ़ी असावधानियाँ हो जाती हैं, क्योंकि बरसात का किसी को कुछ पता नहीं रहता, इसके लिए एक तो लो टनल पॉली हाउस भी होते हैं जो कि, और हम जो बेड जो भी नर्सरी के तैयार करें तो उसको हमेशा हम ऊंचे स्थान पर रखें, कम से कम 6 इंच ऊंची हमारी और ज़मीन से ऊंचा होना चाहिए, जिससे कि हमारी उसमें नर्सरी में पानी ना भर सके, यदि पानी भर जाएगा तो हमारे जो है हमने जो नर्सरी डाली वो हमारी पूरी बहन ख़राब हो जाएगी और हमारा नुकसान हो जाएगा, तो इसका हम विशेष ध्यान रहें। लो टनल पॉली हाउस पर भी हम अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और हमारे किसान भाई जानते हैं कैसे तैयार करते हैं और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों तथा कृषि विश्वविद्यालय माध्यम।
1: किसान भाई जरूरी बात का ध्यान रखें कि मौसम के अनुरूप अगर कृषि प्रबंधन आप करत हैं तो न सिर्फ आपको फसल बढ़िया हुई बल्कि अगर पैदावार बहुत अच्छी हुई, और जैसे कि डॉक्टर साहब बताएं एक चयन, हमेशा फसल का चयन आप सही समय पर करें, सही समय पर बुआई करें तो फायदा निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया हुई। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मौसम के अनुरूप कृषि प्रबंधन विषय पर किसान भाई अभी सुन रहे थे डॉक्टर प्रवीण चरण से अमरीश कुमार शुक्ला की बातचीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर राधा मोहन मिश्रा की वार्ता। विषय है दंत चिकित्सा में ध्यान देने योग्य बातें।
1: दंत चिकित्सा में मरीज को कुछ ऐसी बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए जिसका अगर अनदेखा करें

0: गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मुंह का इलाज में क्रॉस इन्फेक्शन यानी एक मनुष्य की बीमारी दूसरे मनुष्य में आसानी से जा सकती है या संक्रमण फैल सकता है, इसकी संभावना बहुत अधिक होती है। कोरोना काल में दंत चिकित्सक बहुत अधिक प्रभावित रहे क्योंकि संक्रमण का 100% संभावना थी। ऐसे ही न केवल कोरोना बल्कि और ऐसी संक्रमणकारी बीमारी बड़ी आसानी से दंत चिकित्सक या मरीज की अनदेखी में फैल सकती है। संक्रमण टीबी का, एचआईवी का, हेपेटाइटिस का, साधारण इन्फ्लुएंजा आदि कई बीमारी हैं। ऐसे में डॉक्टर एवं मरीज ये सुनिश्चित करें कि क्या क्लिनिक में उपयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट न केवल साफ हों बल्कि ऑटोक्लेव हों। ऑटोक्लेव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न केवल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस समाप्त हो जाते हैं बल्कि उनके स्पोर्स जिसमें क्षमता होती है कठिन से कठिन परिस्थिति में जीवित रहने की, वो भी मर जाते हैं। अतः कोई भी इलाज करवाने से पहले इस बात की जानकारी पुख्ता कर लें कि इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव है कि नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि टीबी की बीमारी खांसने और छींकने से निकलने वाले महीन लार के कण में मौजूद बैक्टीरिया से फैलते हैं, ऐसे में दंत चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट अगर ऑटोक्लेव ना हो तो ये संक्रमण फैल सकता है और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हुआ। ऐसे ही एचआईवी, हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी भी फैल सकती है। इसलिए अनुरोध है, मुंह में किसी प्रकार का इलाज कराने से पहले सुनिश्चित करें कि इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव हो। साथ ही मरीज सुनिश्चित करे कि सुई नई हो, पुरानी या इस्तेमाल की हुई नहीं। दांत निकलवाने के बाद एक्सरे जरूर करवाएं, जिससे ये भ्रम ना हो कि दांत पूरा निकला कि नहीं। कई बार छोटा सा दांत का बचा हुआ टुकड़ा गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। दांत निकलवाने के बाद जो खून का थक्का जमने लगता है निकले हुए दांत की जगह, उसे संभाल कर परिपक्व होने दें। अगर खून का थक्का बोलने, खांसने, कुल्ला करते वक्त निकल जाए तो ड्राई सॉकेट नाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। कई बार तो दर्द की दवा भी सही से काम नहीं करती और जो घाव 2-4 दिन में ही सही होने लगता है, अब 15 से 20 दिन या ज्यादा समय भी लग जाता है। ऐसे में कोई लापरवाही ना करें। दांत निकलवाने के बाद अपना विशेष ध्यान रखें। दांत निकलवाने के बाद अगर खून बंद ना हो तो तुरंत ही कॉटन घाव के ऊपर रखकर दबा दें और 15 मिनट तक दबा कर रखें। अगर फिर भी बहे तो दंत चिकित्सक की सलाह लें। 24 घंटे सिर्फ ठंडा या नॉर्मल खाना ही खाएं। बार बार थूकना या कुल्ला ना करें। सुन्न का इंजेक्शन अगर नीचे के जबड़े में इलाज के लिए दिया है तो जुबान भी सुन्न पड़ जाती है। ऐसे में ज़्यादा बातचीत ना करें क्योंकि कई बार दांत में जुबान कट जाती है और सुन्नपन की वजह से उस वक्त तो पता नहीं चलता, पर बाद में जुबान में घाव हो जाता है और बेहद पीड़ा सहना पड़ता है। अतः मुंह में किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो और टांका लगा हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि टांका ना टूटे। अगर टांका टूट गया तो घाव सूखने में समय लगेगा और बेहद पीड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। मुंह की सर्जरी से पहले मरीज खाना अवश्य खाए। खाली पेट सर्जरी नहीं हो तो बेहतर है क्योंकि मरीज सिनकोप या बेहोश हो सकता है और सर्जरी के बाद तुरंत कुछ खाया पिया भी नहीं जा सकता, इसलिए मरीज खाली पेट सर्जरी ना करवाएं। ध्यान देने बात यह है कि चूंकि लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी हो रही है इसलिए ऐसा कर सकते हैं। अगर जनरल एनेस्थीसिया है तो 24 घंटे खाली पेट अनिवार्य है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान जिस दांत में इलाज हो रहा है उसमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। कभी कभी दर्द होने लगता है और जिसको ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। अगर दंत चिकित्सक से रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी एक्सरे की कॉपी जरूर लें, भविष्य में दिक्कत होने पर या क्रॉस चेक करने में मदद मिल सके। ज़्यादातर दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट तभी होता है जब वो काफ़ी हद तक खोखले हो जाते हैं। ऐसे में दांत के ऊपर कैप जरूर लगवाएं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद। ज़्यादातर आम धारणा है कि जब सारे दांत निकल जाएंगे तो ही 32 लगवाएंगे। यह बचे हुए 2-4 दांत निकलवा के 32 लगवाते हैं। बताना चाहूँगा कि अगर एक भी दांत अगर मुंह में है तो उसे ना निकलवाएं क्योंकि वो आपकी 32 को और अच्छे से काम करने, चबाने में चमत्कारिक रूप से मदद कर सकता है। दांत निकलवाने से आंख पर कोई असर नहीं पड़ता। दांत की सफाई करवाने से दांत खराब नहीं होते बल्कि मसूड़े स्वस्थ और दांत की उम्र बढ़ती है। साथ ही मुंह से बदबू और पैरिया से भी निजात मिल सकता है।
1: दंत चिकित्सा में ध्यान देने योग्य बातें विषय पर अभी आप डॉक्टर राधा मोहन मिश्र की ये वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 200

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। आज रात 9:30 बजे चर्चा का विषय है कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर, दिन में 12:15 पर और रात 10:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे रेशमा श्रीवास्तव का सितार वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर सुनिएगा मनीषा निर्खी के गाए गीत और भजन। वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर।

सुबह 10:30 पर हरिश्चंद्र पांडे और साथियों के स्वर में आप सुनेंगे लोकगीत। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का प्रसारण समय दिन में 12:30 पर। शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सियाराम मिश्र से सुनेंगे नीति वचन और शाम 7:31 पर बोलते नगमे कार्यक्रम का प्रसारण होगा।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, प्रतीक्षा करें।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन

किंतु साथ ही चेतावनी भी मिली कि वे फिर कभी किसी द्विज का अपमान न करें, क्योंकि विप्रद्रोह उसे भी भस्म कर देता है जिसे इंद्र का वज्र, स्वयं शंभु का त्रिशूल या हरि का चक्र भी नहीं मार सकते।

पक्षीराज गरुड़ को काकभुशुंडी अपने एक पूर्व जन्म में शाप मुक्ति की कथा सुना रहे हैं। हजार योनियों में जन्म लेकर उन्हें भटकना तो पड़ा, किंतु कृपालु शंकर ने उस दुस्सह दुख से मुक्त कर दिया जो जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने में होता है। उन्हें ये भी वरदान मिला कि किसी योनि में भी जन्म लेकर उनका ज्ञान लुप्त नहीं होगा।

अभी आप ए हरि हरन के स्वर में सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। ए हरिहरन और सुरेश बाटकर के स्वर में आपने सुना ये श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन। सबसे पहले हम आपको हरे राम हरे कृष्ण फिल्म से ये रचना सुनवा रहे हैं। रचना है आनंद बख्शी की, संगीत है राहुल देव बर्मन का, आवाज किशोर कुमार की।

और अब अंत में हम आपको जॉनी मेरा नाम फिल्म से इंदिवर की लिखी हुई रचना सुनवा रहे हैं। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की।

0: इसी के साथ फिल्मों से भजन अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का लिया निर्णय। UPTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना।

0: समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। UPTET 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित हो रहे UPTET 2026 परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने UPTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर सहित प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा।
1: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
0: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो रहा है। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रदेश के सभी जिलों में आज से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कल आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित

0: करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
1: वो लोक माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास करकर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो, ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
0: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आज से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन से फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहन के धारक स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। प्रदेश के सभी जिलों में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत करीब एक दर्जन सरकारी विभाग आपसी समन्वय बनाकर पूरे माह संचारी रोगों की रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। राज्य के लगभग सभी जिलों में मॉनसून की दस्तक हो गई है। मॉनसूनी वर्षा शुरू हो जाने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर सहित कई जिलों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।
2: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले 2 दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं, वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
0: प्रदेश में टाइगर रिजर्व के लिए 1 नवंबर 2025 से जारी पर्यटन सत्र कल संपन्न हो गया। 8 महीने तक चले इस सत्र के दौरान लखीमपुर खीरी के दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों ने वन्य जीवों का अवलोकन किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का लिया निर्णय। UPTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रेशमा श्रीवास्तव का सितार पर राग नट भैरव, तबले पर आपके साथ संगत की अनूप कुमार बनर्जी ने। तो आइए सुनते हैं रेशमा श्रीवास्तव का सितार वादन, राग है नट भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रेशमा श्रीवास्तव का सितार पर राग नट भैरव। तबले पर आपके साथ संगत की श्री अनूप कुमार बनर्जी ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

0: वी बी जी राम जी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है।

0: इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है, तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज

0: राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है, एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Vikasit Bharat Ji Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Nareka. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football, and India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England today. Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat Ji Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry says that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country.
3: The VBG

0: Sweden. In the round of 32 clash, France defeated Sweden 3-0 at New York's New Jersey Stadium this morning to storm into round of 16. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Earlier, Norway beat Ivory Coast 2-1 in Texas, USA to advance to the round of 16. Antonio Nusa scored in the 39th minute to give Norway the lead, but Ivory Coast's Amad Diallo equalized in the 74th minute. However, Erling Haaland's 86th-minute goal secured Norway's spot in the round of 16. Norway will now face Brazil in the round of 16 on Sunday night. India's men's cricket team will begin their five-match 2020 international series against hosts England today. The opening match will be played at the Riverside Ground in Chesley Street starting at 10 p.m. Indian time. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Sunil. In their first conversation after Iran-US MOU, Iran's President Pezeshkian briefs Prime Minister Modi on developments in West Asia and the way forward, reports the Indian Express. The Hindu quotes a Union Finance Ministry report that reveals that Gulf remittances rose in April despite West Asia crisis. The lead story in Hindustan Times is what the newspaper calls a grim forecast by India Meteorological Department, predicting that July is likely to be drier and hotter than normal across India. The special intensive revision of electoral rolls kicks off in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Maharashtra and Karnataka, reports the Asian Age. Niti Aayog has proposed a sweeping overhaul of India's tourism regulations as part of its latest report, Unlocking Growth in Tourism and Hospitality Sector, reports the Pioneer. In its editorial piece titled Safer Chats, the Tribune argues that WhatsApp's introduction of usernames is a long overdue privacy reform because it lets users communicate without exposing their phone numbers. And finally, work has begun on war footing on India's wrist petroglyph conservation park at Sindhu Ghat in Leh with the relocation of centuries-old rock carvings, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Vikasit Bharat G. Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President. Stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a three-day visit to India. France beats Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their five-match 2020 international series against hosts England today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। विकसित भारत जी रामजी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है, जो मौजूदा एमजी नरेगा की जगह लेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बातचीत की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तिजारत के तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाई ताइकीची भारत के तीन दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। अब खबरें तफसील से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि इस कानून से जिसमें हर माली साल में 125 दिन के उजरत वाले रोजगार की गारंटी दी गई है, देही भारत बाइख्तियार बनेगा। हमारे नवनिगार ने बताया है कि मुल्क भर में नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए रवा माली साल में 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसील हमारे नवनिगार से।

0: बी जी राम जी कानून ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून एमजी नरेगा 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का मकसद गारंटी वाले रोजगार में इजाफा करना है। इस कानून के तहत माली साल में अब तक 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब से 125 दिन की गारंटी दी जाएगी। गारंटी वाले रोजगार में इस इजाफे का मकसद देही तरक्की की रफ्तार में तेजी लाना, मजीद आमदनी की यकीन दहानी करना और देही घरों को बाख्तियार बनाना है। इस कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेही पर मबनी उजरत की अदायगी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। इस नए कानून के तहत ये सहूलत फराहम की गई है कि अगर किसी को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर काम फराहम नहीं किया गया तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी कानून एक जामे फ्रेमवर्क है जिसे 2047 तक विकसित भारत के कौमी तस्वूर के मुताबिक देही रोजगार फराहम करने के लिए तश्कील दिया गया है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
1: देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस मिशन पर अमल दरामद के बारे में कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी बगैर कामकाज के न रहे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ करीबी ताम रखते हुए सभी इंतजामी माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं ताकि नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि भरपूर माली वसाइल दस्तयाब कराए गए हैं, लिहाजा अमल दरामद का निज़ाम पूरी तरह तैयार है और जो काम जारी हैं वो बिला रुकावट जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 125 दिन की उजरत वाले रोजगार की इस गारंटी से देही गुजर बसर को इस्तेहकाम हासिल होगा, लोगों को मुस्तकिल असासे फराहम होंगे और विकसित भारत के तसव्वुर पर अमल दरामद में तेजी आएगी। मरकजी हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी कानून 2025 के लिए गारंटी के तहत उजरतों में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया है जो आज से लागू हो गया है। देही तरक्की की वजारत की तरफ से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहों में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इजाफा किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा पहली बार है कि 300 रुपये रोजाना की उजरत आर्जी बुनियाद पर शुरू की गई है, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इस प्रोग्राम के तहत नोटिफिकेशन में शामिल कोई भी उजरत इस सतह से कम न हो। एमजी नरेगा के तहत कौमी सतह पर औसत उजरत पहले 298.80 रुपये थी, जिसे अब वीबी जी राम जी के तहत 327.40 रुपये रोजाना कर दिया गया है, जो औसतन 10% से ज्यादा है। उत्तराखंड अकीलती तालीमी इतारे अथॉरिटी आज से नाफिज हो गई है, जो रियासत में मदरसा बोर्ड की जगह लेगी। इस तरह उत्तराखंड में सभी 456 मदरसे रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत दोनों के जेर निगरानी रहेंगे। रियासत के समाजी बहबूद और अकलियतों की बहबूद के वजीर खजान सिंह ने कहा कि रियासत में सभी मौजूदा तस्लीम शुदा मदरसे अब उत्तराखंड अकलियती तालीमी इदारे अथॉरिटी के तहत आएंगे। ये मदरसे उत्तराखंड के स्कूली तालीम के बोर्ड के साथ भी मुंसलिक होंगे ताकि तलबा कौमी तालीमी मयारात के ऐन मुताबिक पढ़ाई कर सकें।
2: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया, उनको समय भी दिया गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा और इससे जुड़िएगा, सबकी एक शिक्षा होगी, एक सम्मान होगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और अल्पसंख्यक में मुस्लिम ही नहीं, सिख भी है तो ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है।
1: सभी मदरसों को तालीम से मुतालिक मुत्तहिदा जिला इत्तिलाती निजाम के नंबर अलॉट किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुर जिले में जंतुलूरू के मकाम पर आंध्र प्रदेश की मरकजी यूनिवर्सिटी के पहले तकसीम असनाद जलसे में शिरकत करेंगी। वो उन 1268 तलबा को डिग्रीज अता करेंगी जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल की है। वो 56 तलबा को उनकी गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल भी अता करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियां से टेलीफोन पर बात की। इस गुफ्तगु के दौरान ईरान के सदर ने जनाब मोदी को मगरबी एशिया के हालात और वाकयात और आगे बढ़ने के लिए इकदाम से वाकिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुफाहमत पर इत्तेफाक राय होने का खैर मकदम किया और भारत के इस मौकिफ को दोहराया कि सभी मामलात मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी

0: बनाने और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त के तहफ्फुज नीज तिजारत के लिए कोशिशें जारी रखे जाने की जरूरत दोहराई। ईरान के सदर ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान अमन इस्तेहकाम और इलाकाई इश्तराक की हिमायत करने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जाती रोल की सदाइश भी की। इधर भारत में ईरान के सिफारतखाने के मुताबिक इस बातचीत में सदर पेजिश्कियान ने भारत में ब्रिक्स के तवानाई महकमे के वजीरों की मीटिंग की मेजबानी और इसकी कामयाब मंसूबाबंदी के तहत इत्मीनान का इजहार भी किया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा होगा। मुहतरमा तकाईची वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगी। इस सरबराह मुलाकात से तरफेन को इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने और उन्हें मुस्तहकम बनाने का मौका मिलेगा। हमारे नामनिगार ने बताया है कि भारत और जापान की दोस्ती तवील अरसे से कायम है और ये सदियों से सकाफती और तहजीबी तबादले, रूहानी रिश्ते, नीज आज़ादी, जमहूरियत और कानून की अमलदारी के तई एहतराम की मुश्तरका अकदार पर मबनी है। एक रिपोर्ट।
1: भारत जापान बाहमी ताल्लुकात को 2014 में खसूसी कलीदी और आलमी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया था। अब जबकि दोनों मुल्क अगले साल अपने सफारती ताल्लुकात के कयाम को 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसमें तिजारत, सरमायाकारी, इक्तसादी सिक्योरिटी, दिफा, साइंस, टेक्नोलॉजी, सकाफत और अवाम से अवाम के राबते भी शामिल हैं। भारत जापान जाम इक्तसादी साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 को नाफिज हुआ था। इधर साल 2025-26 के दौरान बाहमी तिजारत 27 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गई। जापान भारत में सरमायाकारी करने वाला 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। जापान ने अप्रैल 2000 और मार्च 2026 के दरमियान 48 अरब 17 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की। सकाफती इश्तराक भी काफी मजबूत है और जापान ने योग समेत भारतीय सकाफत में बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मरकज ने आज से 15 दिन के लिए बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर आयद महसूल की शरों में तब्दीली की है। वजारत खजाना की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन नई शरहों के तहत बरामद किए जाने वाले पेट्रोल पर 4 रुपये फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं। डीजल पर यह महसूल 8.5 रुपये होगा जबकि पहले यह महसूल 14 रुपये था। वजारत ने बताया कि हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर आयद खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी को 12.5 रुपये से कम करके 7.5 रुपये कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जब यह बरामदाती ड्यूटी इब्तदाई तौर पर नाफिज की गई थी तो बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर सरकारी शोबे की तेल कंपनियों ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए छूट फराहम की थी। अब इस छूट में तौसी कर दी गई है और इसमें मॉरिशस और मालदीव भी शामिल कर लिए गए हैं। 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस आज जयपुर में शुरू हो रही है। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इंतजामी इसलाहत और अवामी शिकायत के महकमे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत नीज राजस्थान सरकार ने मुश्तरका तौर पर किया है। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है विकसित भारत 2047, मसनूई जहानत और डेटा पर मबनी महफूज डिजिटल हुक्मरानी। राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान सरकार के डिजिटल गवर्नेंस के कई इकदामात और इख्तियारात का आगाज किया जाएगा। फिल्म थिएटर की मारूफ शख्सियत विजय मेहता का कल रात मुंबई में उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 92 साल की थी। उनका शुमार मराठी तजुर्बाती थिएटर के कायदीन में होता था। फुटबॉल में न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आज सुबह खेले गए मैच में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। फ्रांस की तरफ से किलियान मबापे ने 2 गोल किए। इस तरह वो वर्ल्ड कप में 18 गोल कर चुके हैं और अब वो लियोनेल मेसी से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। इससे पहले टेक्सास में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 1-2 गोल से हरा दिया और इस तरह नॉर्वे भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। अब इतवार की रात को प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। मर्दों की क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज चेस्टरली स्ट्रीट में रिवर साइड ग्राउंड पर खेला जाएगा।

0: ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। श्रेयस अय्यर के जेर कमान भारतीय टीम गुजश्ता सीरीज में आयरलैंड से 2-0 से हारने के बाद खेल में वापसी की भरपूर कोशिश करेगी। सबकी निगाहें उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज भी होगी। खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। ओवल मैदान पर ही कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम ने आमने सामने होंगी। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक से टकराने के बाद स्लीपर बस में आग लगने के वाकये में 7 अफराद की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यह हादसा बंदीकुई के नजदीक रात देर गए 3 बजे के आसपास पेश आया। ये बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनू मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने का इम्कान है। इधर मानसून मध्य प्रदेश के कुछ और इलाकों छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार के बकिया हिस्सों उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों नीज उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग को नुमाया किया है जिसमें कारोबार और रहन सहन में आसानी और खुदकफील भारत जैसे अहम मौजूद पर तबादला ख्याल किया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ के ओहदे से सुबुकदोश, नए जनरल धीरज सेठ ने फौजी सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, दिल्ली समेत 5 रियासतों में एसआईआर का अमल शुरू, महाराष्ट्र कर्नाटक मेघालय और झारखंड में होगा एसआईआर। अखबार की बैन अलाक़वामी सुर्खियां इस तरह हैं, खाने काबा को गुस्ल देने की रूह परवर सालाना तकरीब मुनक़िद, यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बर्रे आज़म।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, विकसित भारत जी राम जी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है जो मौजूदा एमजी नरेगा की जगह लेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बात की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तिजारत के तहफ्फुज़ की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब वक्त हुआ है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा का। स्वर प्रस्तुति है शुभम कुमार की और राग है नट भैरव। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: प्रयागराज केंद्र, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, आज का दिन बहुत खास है। खास इसलिए है कि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महत्वपूर्ण खास बातें हुई हैं। पहली 1 जुलाई 1882 को हुई। आज ही के दिन महान चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ। ये दिन इसलिए भी खास हो जाता है कि 1 जुलाई को ही साल 1962 में डॉक्टर बीसी रॉय का निधन भी हो गया। डॉक्टर बीसी रॉय न केवल एक महान चिकित्सक थे बल्कि वो एक शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता भी थे और उन्होंने सभी क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज 1 जुलाई को क्या खास है। तो हम आपको बताएं, आज 1 जुलाई को हम भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं और ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई है साल 1991 से। 1991 से समाज में डॉक्टरों के अमूल्य योगदान के लिए ये दिन हमने मनाना शुरू किया। डॉक्टर केवल चिकित्सा विशेषज्ञ ही नहीं होते बल्कि वे जीवन के सबसे कठिन क्षणों में हमारे लिए मार्गदर्शक, रक्षक और आशा की किरण होते हैं। जिस प्रकार हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं उसी प्रकार हम एक चिकित्सक पर भी विश्वास करते हैं, यानी डॉक्टरों को हम धरती के दूसरे भगवान का दर्जा देते हैं। ऐसे में इनका दायित्व और बढ़ जाता है, इसलिए इनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। ज़रा सोचिए, एक डॉक्टर पर कितने ढेर सारे मरीज होते हैं, कितने ढेर सारे रोगियों की उन्हें चिकित्सा करनी होती है। ऐसे में इन डॉक्टरों को भी सहायता की ज़रूरत होती है कि कोई इनकी देखभाल करे, क्योंकि जब ये स्वस्थ होंगे तभी तो अपने मरीजों को स्वस्थ कर पाएंगे। इसलिए इनका भी स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है और इनका सम्मान भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं श्रोताओं, तो हमें एक उम्मीद होती है कि हमें इस काम का थोड़ा तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, थोड़ा तो अप्रिसिएशन, थोड़ी प्रशंसा, थोड़ी तारीफ। अगर अच्छा है तो अच्छा, अगर कुछ कमी है तो उसे भी प्यार से कह दिया जाए कि हाँ, आपने यहाँ कुछ कमी की। ऐसे ही हर व्यक्ति को तारीफ या सराहना ही कहिए उसे, सराहना की आवश्यकता होती है। और डॉक्टर जिनके हाथ में ज़िंदगी होती है उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनका सम्मान और उन्हें अपना प्यार दें। उनकी भी देखभाल उतनी ही ज़रूरी है जितनी मरीजों की।

और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना जो आज के दिन हुई है वो है जीएसटी दिवस। जी हाँ, 1 जुलाई 2017 के दिन देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। तब से हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक राष्ट्र एक कर, दोहरी संरचना, गंतव्य आधारित कर आदि इसकी विशेषताएं हैं। जीएसटी जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजना है, इसलिए इसके केंद्र में उपभोक्ता है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
7: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
6: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
7: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
6: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
8: ओ, सजना।
0: फिल्म संगीत का यह पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं परख फिल्म से। आवाज है लता मंगेशकर की, संगीत है सलिल चौधरी का और गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं आदित्य नारायण और आशा भोसले की आवाजों में महबूब का लिखा हुआ गीत। संगीत है ए आर रहमान का और फिल्म रंगीला।

और अब फिल्म संगीत का आखिरी गाना हम आपको राजा फिल्म से सुनवा रहे हैं। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: हलचल। आज सुनिए हाथरस और भदोही जिलों की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए की हलचल। पहले सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख है संजय कुमार का।
2: भदोही में अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 30 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रत्येक गांव में करीब 20-20 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा चयनित गांवों का सर्वे पूरा कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। बजट स्वीकृत होते ही विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2019-20 से अब तक जिले के 128 गांव इस योजना में शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 50 से अधिक गांवों में कार्य चल रहा है, जबकि शेष गांवों में ग्राम विकास योजना और बजट की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य प्रारंभ होंगे। शासन की इस योजना से अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुई भीषण अग्निकांड के घटना के बाद भदोही जिले में भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर DIOS भदोही, औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम लगातार होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही है। विशेष अभियान में कुल 145 प्रतिष्ठानों की जाँच की गयी। जाँच के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले 85 संचालकों को नोटिस जारी किया गया, जबकि गंभीर अनियमितता मिलने पर 6 कोचिंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि जिले के कई प्रतिष्ठानों ने अब तक अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तक नहीं लिया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि भविष्य में किसी भी

0: प्रकार की दुर्घटना न हो। साइबर थाना पुलिस ने निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर देश भर में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्ञानपुर के नंदापुर निवासी मन्नू सिंह और चख सिखारी निवासी ओम प्रकाश गौतम ने लोगों को कम समय में 3 गुना लाभ देने का झांसा देकर फर्जी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ठगी करते थे। जांच में सामने आया है कि इनके नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक खातों के माध्यम से 50 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी की गई है। इनके खिलाफ केरल, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 50 से अधिक NCRP शिकायतें दर्ज हैं। 5 ATM कार्ड, 3 पासबुक, 3 चेकबुक, 47 फर्जी आधार और पैन कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन, स्टाम्प पैड तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस जांच में विभिन्न बैंकों के खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी मिली है। गिरोह के सरगना सुमित सिंह समेत 4 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। औराई क्षेत्र के समधा गाँव में 106 हेक्टेयर में फैले विशाल ताल को राज्यपाल द्वारा आधिकारिक रूप से वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के तहत चयनित इस ताल को अब इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला वेटलैंड समिति का गठन किया जाएगा, जो विकास की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। यहां प्रवासी पक्षियों के अनुकूल प्राकृतिक वातावरण विकसित करने के साथ साथ पर्यटकों के लिए वन डे टूर, भ्रमण पथ, बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और जिले में पर्यटन की नई संभावनाएं भी विकसित होंगी। नगर पालिका प्रशासन ने लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे नए शहरवासियों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य कराए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि वर्षों से उपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे नागरिकों को बेहतर शहरी जीवन मिल सके। पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गोपीगंज में भदोही साइकिलिंग क्लब की ओर से साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। बड़ा चौराहा से शुरू हुई यह यात्रा क्लब अध्यक्ष अताउल मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में निकाली गई। जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी जर्जर विद्यालय भवनों को प्रत्येक प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर उन्हें पूरी तरह बंद कराया जाए, ताकि कोई भी छात्र या अन्य व्यक्ति उनके अंदर प्रवेश न कर सके।
1: भदोही जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार का।
2: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जनप्रतिनिधियों के साथ अवलोकन किया। प्रभारी मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों व संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 12 वर्ष विषयक समेकित जन कल्याण का एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकास खंड मुरसान, ग्राम पंचायत रायक, नगला लच्छी, सैनपुर, अर्जुनपुर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में केंद्र सरकार द्वारा विगत 12 वर्षों में संचालित जन कल्याणकारी योजना, गरीब कल्याण कार्यक्रम एवं विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की गई। साथ ही आम जन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने यहां अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में तहसील सदर हाथरस में के ग्राम अधीसा भगवंतपुर में अटल कन्वेंशन सेंटर व गेस्ट हाउस निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि लगभग 200 लोगों की क्षमता वाली इस कन्वेंशन सेंटर में सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक लोगों को विभिन्न आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता था, लेकिन इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के बाद यह समस्या समाप्त हो जाएगी और जनपद को एक आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आयोजन स्थल प्राप्त होगा। इसमें महत्वाकांक्षी योजना परियोजना पर लगभग 7 से

0: 7.5 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने केलोरा चौरा स्थित ठाकुर मलकान सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही जनपद हाथस में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन पर एवं शिलान्यास किया तथा जनपद में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण विकास हेतु जनपद वासियों के लिए सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी द्वारा 1,024.70 लाख रुपए लागत की 9 पर्यटन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनके विकास भवन स्थित पर्यटन केंद्र निर्माण एवं विकास कार्य मोड़ा बाली माता मंदिर दावजी महाराज मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर उदय सिंह की कचहरी परिसर में लैंडस्केपिंग एवं जनसुविधा कार्य गंगागढ़ी स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर सिद्धपीठ पर्वशाला तीर्थ भूमि कर ढकपुरा मंदिर स्वर्ग आश्रम तथा काली माई मंदिर के पर्यटन विकास कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 308.80 लाख रुपए लागत की 4 परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम पर्यावरण चेतना अभियान की शुरुआत की गई। इस खास मौके पर वन विभाग के तत्वाधान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शासनी स्थित नगर वन में संपन्न हुआ जिसमें पर्यावरण संरक्षण को भारी उत्साह देखने को मिला। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जनपद के बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा कलेक्टर परिसर में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: अभी आप सुन रही थी जिले की हलचल। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।
3: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
4: तुमने दी आवाज लो मैं आ गया।
3: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर नई उड़ान।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में देश गान।

0: समोसरों में आप देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी प्रयागराज है। 9:30 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।
1: आज की पेशकश आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से है। आइए सुनते हैं मकाला, बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार। मकाला निगार हैं डॉक्टर नीलोफर हफीज और कलामी शायर हैं असलम आदिल। आइए सुनते हैं।
2: हर रोज एक नया समा बंधता है, आवाज की इस महफिल में हर रोज एक नया समा बंधता है। बात पहुंचती है जो आप तक, वो दिल को छू जाती है। इन्हीं खूबसूरत अल्फाजों और जज्बातों के साथ आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं आपकी मेजबान निकहत सिद्दीकी। कबूल करें मेरा आदाब। सामिन, आज उर्दू बज्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकाला, बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार, और कलामे शायर के तहत सुनिएगा जनाब असलम आदिल से उनका कलाम। सबसे पहले समाअत फरमाइए डॉक्टर नीलोफर हफीज से मकाला, बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार।
3: वालिदैन की तवज्जो और रहनुमाई बच्चों की अखलाकी दुरुस्तगी, किरदार साजी और समाजी सलाहियतों के फरोग में हमेशा ही अहम रही है, लेकिन दौर हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियां पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा हो चुकी हैं। और इसकी वजह ये है कि अब बच्चों की तालीमी और तफरीही ज़राए में बड़ी हद तक तब्दीलियां आ चुकी हैं। कदीम रवायात की पासदारी या पाबंदी से अब हमारे बच्चों को कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रह गई है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इन बच्चों को उनकी उम्र से पहले ही बालिग और संजीदा कर दिया है। असरे हाजिर की नज़ाकतों की बुनियाद पर ही शायद परवीन शाकिर ने कहा था, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। हम सभी देख रहे हैं कि मौजूदा वक्त में बच्चों को तालीम से दूर करने और उनके अखलाक व किरदार को मुतासिर करने वाली काफ़ी दाखली और खारजी मसरूफियात पैदा हो गई हैं। तहकीक से पता चलता है कि बच्चों की बेहतर कारकर्दगी और आला दर्जात तक उनकी रसाई वालदेन की तालीमी सरगर्मियों, दिलचस्पी और

0: आसपास जो माहौल होता है वही उनके मिजाज का हिस्सा बनता है। लिहाजा वो वालदेन जो अपने औलाद की जिस्मानी, दीनी, रूहानी बामकसद ज़िंदगी गुजारने और उनके शऊर की तरबियत करने के मुतमन्नी हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि पहले वो अपने आप को इन सिफात का हामिल बनाएं। हमेशा ये बात जहन में रखें कि बच्चे नसीहतों और बातों से उतना नहीं सीखते जितना कि वो अपने बड़ों के रवैयों को देखकर सीखते हैं। अगर माँ बाप ही हक के रास्ते पर नहीं, उनको खुद ही मकसद ज़िंदगी का शऊर नहीं, तो वो हरगिज भी औलाद को ईमानदार, परहेजगार और एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने की तरबियत देने में कामयाब नहीं हो सकते। वालिदैन को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के बुनियादी उसूलों के बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। मसलन, बच्चों की जिस्मानी और जहनी तरबियत का पहला उसूल यह है कि उनको अच्छी गिज़ा दी जाए और ऐसी गिज़ाओं से बचाया जाए जो उनको नुकसान पहुँचा सकती हैं। बाहर के खानों की वजह से बच्चों की तबीयत और मिजाज पर बहुत ही मनफी असरात मुरतब होते हैं। जंक फूड हमारे बच्चे आज बहुत खाते हैं। इस फूड में गजाइत की कमी होती है जिसकी वजह से बच्चों के मिजाज में चिड़चिड़ापन, मोटापा, शुगर और दीगर बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ख़राब सेहत की वजह से उनकी तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासर होती हैं। मगर अफसोस कि आजकल बच्चों की गज़ा के सिलसिले में वालदेन की तरफ से बड़ी गफलत इख्तियार की जा रही है और ये बे एहतियाती बाज़ोकात बच्चों में मुस्तकिल जिस्मानी कमज़ोरियों का सबब बन जाती है और उनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देती है। लिहाजा ज़रूरी है कि वालदेन एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाएं और अपने बच्चों के लिए सेहत बख्श ग़ज़ा फराहम करें। दूसरी अहम चीज़ जो बच्चों की जिस्मानी और जहनी सरगर्मियों पर असरअंदाज होती है वो अच्छी नींद है। सही और वक्त पर नींद न होने की वजह से बच्चों की तबीयत और मिजाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए वालदेन बिलखसूस माँ की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की नींद की सही तरतीब बनाए और उस पर सख्ती के साथ अमल करें। नींद सही न होने की सूरत में भी बच्चों की जिस्मानी और जहनी नश्वोनुमा रुक जाती है और उनकी तालीम पर भी ख़राब असर पड़ता है। एक और बहुत अहम चीज़, वालदेन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तालीम में गहरी दिलचस्पी लें। पढ़ाई के दौरान पेश आने वाले मसाइल को हल करने की कोशिश करें, खुद भी किताबें पढ़ें और अपने बच्चों को भी अच्छी किताबें पढ़ने की तरगीब और तशवीक दिलाएं और पढ़ाई के लिए ऐसा माहौल फराहम करें जहां हमारे बच्चे खुद को महफूज और पुरएतमाद महसूस कर सकें। उन्हें तालीम हासिल करने के लिए हर मुमकिन सहूलत देने की कोशिश करें। इसके साथ साथ उन्हें ये भी समझाएं कि तालीम सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्रियों की जमा आवरी का नाम नहीं है बल्कि ज़िंदगी को बेहतर और सरबुलंद तरीके से जीने का एक बड़ा ज़रिया है। यानी अपने बच्चों को ज़िंदगी गुजारने के फ़ायदेमंद तरीके सिखाएं, ऐसी महारतें और सलाहियतें उनमें परवान चढ़ाएं जो उनको उनकी अमली ज़िंदगी गुजारने में मददगार साबित हों। इसी के साथ साथ बच्चों की जज्बाती और नफ्सियाती तरबियत भी ज़रूरी है। वालदेन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को नफ्सियाती तौर पर मजबूत बनाएं, उन्हें कम्फर्ट जोन से बाहर निकालें और ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। इस ज़माने में वही कौम तरक्की कर सकती है जो इल्म और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे है। इसलिए ये हमारी अहम तरीन जिम्मेदारी है कि हम इस बात को अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाएं कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया बना के अपना रास्ता जो इस भीड़ से निकल गया। लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल सिखाएं ताकि वो जदीद दुनिया के तकाजों के पेश नज़र अपने कामों को दुरुस्तगी के साथ अंजाम दे सकें। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि किसी इंसान का मकसद कितना ही आला हो और उसमें काम करने का जज्बा कितनी ही शिद्दत से क्यों ना पाया जाता हो, लेकिन उस काम के लिए जिन सलाहियतों की ज़रूरत है, अगर वो सलाहियतें और लियाकतें उसमें मौजूद ना हों तो फिर जज्बात या अजायम काम नहीं आते। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के अंदर वो सलाहियतें पैदा करें जो किसी भी मकसद के हुसूल के लिए ज़रूरी हैं। माँ और बाप के दरमियान का मजबूत तावुन और मुश्तरका कोशिशें ही बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत दे सकती हैं। इसलिए वालिदैन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए और वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र अपनी औलाद को बेहतरीन और आला तरीन तालीम व तरबियत देने की कोशिश करना चाहिए।
1: बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार, इस मौजू पर अभी आप मकाला समाप्त फरमा रहे थे। मकाला निगार थी डॉक्टर नीलोफर हफीज। और अब समाप्त फरमाइए जनाब असलम आदिल से उनका कलाम।
2: गजल का मतलब समाप्त फरमाएं।

पर बर्क सी गिरा देता, अहले दिल के दामन पर बर्क सी।

सर वहीं झुका देता, रूबरू आ जाते। सर वहीं झुका देता, रूबरू। गजल का मतलब समझ पर मैं एक

0: अभी आप जनाब असलम आदिल से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे और इसी के साथ आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम को खत्म करने की अपनी मेजबान निकहत सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। इस प्रोग्राम की पेशकश थी प्रदीप मिश्रा की।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 870-001-4242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मनीषा निर्खी के गाए गीत और भजन। सबसे पहले लीजिए सुनिए मनीषा निर्खी के स्वर में सूरदास की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मनीषा निर्की के गाए भजन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। ठीक 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे समाचार, प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय हस्ती विजया मेहता का

0: 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थी। एक रिपोर्ट।
1: विजया मेहता ने रंगायन नाट्य समूह के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई नाट्य भाषा, नई दृष्टि और वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके चर्चित नाटकों में बैरिस्टर, सखाराम बाइंडर, हयवदन और वाडा चिरेबंदी शामिल है। रंगमंच के अलावा उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन कृतियों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। विजया मेहता को वर्ष 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1986 में फिल्म राव साहेब के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को दर्शाता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा 7 जुलाई, चौथा 9 जुलाई तथा पांचवा और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहम्पटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉयस ऑफ प्रयागराज। वॉयस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करेंगे उसकी अनदेखी हम बहुत आसानी से कर देते हैं, ये सोचकर या कहकर कि हमारे करने से कौन सा सुधार हो जाएगा या फिर ये कोई हमारा काम थोड़े ही है। ऐसी बातों से हम दरअसल अपने दायित्वों से भाग रहे होते हैं, क्योंकि हम जिस खूबसूरत पृथ्वी पर रहते हैं इस पर केवल मनुष्यों का ही नहीं, हर प्रकार के जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, कीट पतंगों का, नदियों पर्वतों का अधिकार है और अपने इस बेहद खूबसूरत से निवास स्थान को हम ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसा हम अनजाने में कर रहे हैं बिना स्थिति की गंभीरता को समझे। श्रोताओं ज़रा सोचिए कि धरती पर ये जो तरह तरह के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे आदि ना हों तो क्या हमारा जीना आसान होगा? जवाब होगा नहीं। सच तो यह है कि ये जैव विविधता ही हमारे परस्पर जीवन का आधार है और ये विविधता ही हमारे धरती की खूबसूरती भी है। और हमारा आज का विषय भी यही है, जैव विविधता का संरक्षण।
3: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीधे में भर लूंगा।
4: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लूंगी।

बात सही है कि पंछी, नदियाँ, पवन, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे सब के सब हमारे इस धरती का हिस्सा हैं, हमारे इस जैव विविधता का हिस्सा हैं, और सबका एक दूसरे पर निर्भर होना यही विविधता को दर्शाता है। लेकिन इस खूबसूरती पर ग्रहण लग गया है, और वो भी हमने लगाया है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1970 के बाद से वैश्विक वन्य जीव आबादी में औसतन 69% की गिरावट आई है। जैव विविधता का ये नुकसान मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। एक छोटा सा तथ्य ये देखिए कि भारत जैसे मेगा बायोडायवर्सिटी देश में हजारों प्रजातियां हैं, बाघ, शेर, गैंडा, हाथी से लेकर अनगिनत पौधे और सूक्ष्म जीव। ये भोजन हमें देते हैं, दवाइयाँ, साफ हवा, पानी और मिट्टी भी देते हैं, जंगल बाढ़ रोकते हैं, और यही नहीं, जिन मधुमक्खियों को, जिन कीड़े मकोड़ों को हम अपने लिए नुकसानदायक समझते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि ये मधुमक्खियाँ कई तरह के फलों और फूलों के उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाती हैं। कई प्रकार के कीट हैं जिनके परागण से कई तरह के फल फूल विकसित होते हैं। वन्य जीव पर्यटन से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। और एक तथ्य ये भी है कि भारत में हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव तक, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर पश्चिमी घाट के घने

इन जंगलों तक में कमी आई है। जैव विविधता हमारे ग्रह की जीवन रक्षक प्रणाली है, क्योंकि हमारा भोजन, ऊर्जा, औषधि सब कुछ यहीं से तो हमें मिलता है।

जैव विविधता पर सबसे बड़ा खतरा है जंगलों की कटाई, प्रदूषण, अवैध शिकार व वन्य जीव व्यापार, आबादी का बढ़ता दबाव। भारत में हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल गायब हो रहे हैं, कई पक्षी और जानवर विलुप्त होने के कगार पर हैं। भारत में कई प्रजातियां लुप्त प्राय हो भी चुकी हैं। शहरीकरण और कृषि विस्तार भी इसके कारण में है। उदाहरण के लिए गंगा नदी का प्रदूषण, हिमालय के ग्लेशियर का पिघलना, अगर ये सब रहेगा तो खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था सब कुछ प्रभावित हो जाएंगे। हमारे पृथ्वी पर ये जो छोटे छोटे जीव हैं, ये भी जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। मधुमक्खियाँ जो कि शहद बनाने का काम करती हैं, ये फसलों के उगाने में भी काम आती हैं, अभी हम आपको बता ही रहे थे, और आज इनकी संख्या में भी भारी कमी आई है। दरअसल आनुवंशिक विविधता

प्रजातियों की विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक में आई कमी बाकी सब के संतुलन को बिगाड़ने में सक्षम है। अगर ऐसे ही हजारों प्रजातियां लुप्त होती रहीं तो फिर हम सब के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। और प्रकृति पर संकट हमारे अस्तित्व पर संकट है। ऐसे में कुछ उपाय जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, उनमें है पेड़ लगाना, प्लास्टिक बैग्स या पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करना, जल संरक्षण करना, स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण करना, लोगों में इसके लिए जागरूकता फैलाना। क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, ये तो सरकार का है, ये तो उस संस्था का है। और हाँ, इन सीटू संरक्षण यानी कि जो इन विविध प्रजातियों के पशु पक्षी फल पौधे जो भी हैं, इनके इन सीटू संरक्षण में भी कुछ काम होते हैं जो कि सरकार के द्वारा हो रहे हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व जैसे जिम कार्बेट, सुंदरबन, और एक सीटू जिसमें कि कृत्रिम तरीके से उन पशुओं को, पक्षियों को, फलों को, फूलों को लगाया जाता है जो कि वहाँ के नहीं हैं, जैसे चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक। तो हम जो अपने स्तर पर कर सकते हैं वो ये कि छोटे छोटे पौधे जिनको संरक्षण नहीं मिल पा रहा, अगर हमारे यहाँ जगह हो तो ऐसी जगह पे हम उन पेड़ पौधों को लगाएं, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम से कम करें, जागरूकता फैलाएं। और जो सरकारी योजनाएं चल भी रही हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत, जैसे ये प्रोजेक्ट टाइगर आदि वगैरह है, उनमें भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि कैंपा एक योजना है, नमामि गंगे योजना है, इनमें भी हम लोगों को यानी कि जनता जनार्दन को अपनी सहभागिता देनी होगी। दुनिया भर में कोस्टारिका ने अपने जंगलों को बढ़ाकर सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत में भी कुछ कम्युनिटी रिजर्व सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि कचरा जो घर से निकलता है उसे अलग करें, पानी बचाएं, पक्षियों को दाना डालें। ऐसे पशु जो सड़क पर बिना मालिक के हैं, अगर संभव हो तो उन्हें अपनी ओर से भोजन दें, सहायता करें, उनके लिए चारे की व्यवस्था करें जिससे वे बेमौत ना मरें। और मानसून की बात हम क्यों ना करें, जो कि बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है यहाँ पे, जिस जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है भौगोलिक संकट की वजह से। अभी देखिए, मानसून जो कि जून में आ जाया करता था, मिड जून में, वो जून के ख़त्म होने पर संभवतः कल रात से ही बारिश की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई, और प्रचंड गर्मी से जो भीषण गर्मी पड़ रही थी जिससे हम सब एकदम परेशान थे, तंगहाल थे, आज कुछ राहत महसूस हुई है। ये जलवायु परिवर्तन ही तो है जिसकी वजह से बेमौसम बारिश होने लग रही है। जो मौसम जब आ जाना चाहिए तब आता नहीं है, और उसकी वजह से बहुत से प्रजातियों पर, उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है।

0: हमारी पहचान है। श्रोताओं, जब विविधता जैव विविधता हमारी विरासत है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। अंत करने से पहले ये एक कोट हम आपको सुनाए जाते हैं। फूल अलग अलग हों तो बगिया महकती है, सुर अलग अलग हों तो संगीत बनता है, और लोग अलग अलग हों तो समाज समृद्ध बनता है। यह विविधता की असली शक्ति है।
1: तो घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी।
2: ओ घर

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज और आज का विषय था जैव संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब प्रस्तुत है लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं हरिश्चंद्र पांडे और साथी। सबसे पहले हम आपको हरिश्चंद्र पांडे और साथियों के स्वर में सुनवाने जा रहे हैं ये देवी गीत।

देवी गीत के बाद लीजिए, अब सुनिए ये खेमटा। हरिश्चंद्र पांडे और साथियों के स्वर में।

लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे हरीश चंद्र पांडे और साथियों के गाए लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर की बातें।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार हुआ। सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। पेशे खिदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत एक ही कलाकार।

श्रोताओ नमस्कार। आज के इस खास सफर में मैं हूं अतुल यादव। आज हम बात करेंगे उस जादुई जोड़ी की जिसने संगीत को सिर्फ धुन नहीं बनाया बल्कि उसे भावनाओं की भाषा बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्म संगीत के अमर संगीतकार युगल शंकर जयकिशन की।

इनकी धुनें सिर्फ गाने नहीं थे, वो एक दौर था, एक एहसास था, एक संस्कृति थी। तो आइए चलते हैं इस संगीत यात्रा में, जहां हर सुर में कहानी है और हर ताल में इतिहास है।

श्रोताओं, शंकर और जय किशन दोनों की पृष्ठभूमि अलग थी, लेकिन मंजिल एक थी और वो थी संगीत। शंकर सिंह राम सिंह मुंबई में थिएटर और संगीत से जुड़े थे। जय किशन दयाभाई पंचाल एक प्रशिक्षित तबला वादक थे और संगीत की गहरी समझ रखने वाले कलाकार थे। दोनों की मुलाकात पृथ्वी थिएटर के आसपास हुई थी और यहीं से शुरू हुआ था वो सफर जिसने हिंदी सिनेमा की संगीत की दिशा बदल दी। राज कपूर जैसे बड़े फिल्मकारों ने जब इनकी प्रतिभा को पहचाना तो संगीत की एक नई क्रांति उत्पन्न हुई थी।

1950 और 60 का दशक हिंदी सिनेमा का स्वर्णकाल हुआ करता था, और इस दौर में अगर किसी संगीत ने दिलों पर राज किया तो वो था शंकर जयकिशन का संगीत। राज कपूर की फिल्मों में इनकी धुनों ने जैसे जान डाल दी। पहला उदाहरण अगर हम देना चाहें तो आवारा फिल्म थी, और उसका वो गीत जिसने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई थी। उस फिल्म के गानों में जो धुन थी उसमें दर्द था, संघर्ष था और उम्मीद भी। एक और गीत था, ये रात भीगी भीगी। इस गाने ने रोमांस और बारिश की जो मिठास घोली थी वो आज भी ताजा लगती है। और एक गाना किसको नहीं याद होगा, मेरा जूता है जापानी, जो कि यहां ही नहीं बल्कि रशिया में भी लोगों ने बहुत पसंद किया। ये सिर्फ गीत नहीं था, ये उस समय के भारत की पहचान बन गया था, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक। श्रोताओं, शंकर जयकिशन की सबसे बड़ी जो खासियत थी वो था उनका ऑर्केस्ट्रेशन। वे भारतीय रागों को पश्चिमी संगीत के साथ इस तरह से मिलाते थे कि एक नया संगीत पैदा हो जाता था।

श्रोताओं, शंकर जयकिशन की शैली में जो खास चीजें थी वो थी भावनात्मक गहराई, मेलोडी की सरलता और ऑर्केस्ट्रा का भव्य प्रयोग। उनके संगीत में कभी तबला रोता था तो कभी वायलिन मुस्कुराता था। एक और गाना याद आता है कि आज फिर जीने की तमन्ना है, ऐसे गीत जो जीवन की आशा और आत्मविश्वास को पूरी तरह से प्रदर्शित करते थे। शंकर जयकिशन ने उस दौर के हर बड़े गायक के साथ काम किया। लता मंगेशकर की आवाज़ में इनके न जाने कितने गीत अमर हो गए, साथ ही मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ने इनके रोमांटिक और दर्द भरे गीतों को नई ऊंचाई दी थी।

श्रोता, वो कहते हैं ना कि हर यात्रा में उतार और चढ़ाव जरूर आते हैं। 70 के दशक में बदलते संगीत के दौर ने शंकर जी किशन की शैली को चुनौती दी। नए संगीतकार, नए प्रयोग और बदलती फिल्म पसंद ने इंडस्ट्री को बदल दिया था। जय किशन के निधन के बाद ये जोड़ी टूट गई और एक युग का समापन हो गया। लेकिन उनके संगीत की गूंज आज भी जिंदा है। आज भी जब हम पुराने हिंदी गीत सुनते हैं तो शंकर जय किशन का नाम सबसे पहले याद आता है। उनका संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो भावनाओं की शिक्षा था। उन्होंने साबित किया कि संगीत सीमाओं से परे होता है।

तो श्रोताओं, आज की संगीत यात्रा में हमने जाना कि कैसे शंकर जयकिशन ने हिंदी फिल्म संगीत को एक नई पहचान दी। उनकी धुनें आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और शायद हमेशा रहेंगी। मैं आपका रेडियो साथी अतुल यादव फिर मिलूंगा किसी नए कलाकार और उसके संगीत में सफर के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: फिल्म संगीत एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

0: नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
2: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। विशेष खदमत प्रोग्राम फिल्म संगीत।

मौसम कुछ अलग सा है। दोपहरी में भी एक ठंडक का एहसास है। हवा में मिट्टी की वो भीनी भीनी खुशबू है और आसमान जैसे दिल खोलकर बरस रहा है। ये सिर्फ बारिश नहीं है दोस्तों, ये तो यादों की फुहार है। कभी बचपन की कागज की नाव तो कभी पहली मोहब्बत का भीगा हुआ खत।

श्रोताओं, बारिश का पहला एहसास हमें बचपन में ही हो जाता है, जब मम्मी चिल्लाती थी भीग मत जाना सर्दी हो जाएगी, और हम क्या करते थे, बस छत से टपकते पानी में उछल उछल कर नाचते थे। गली में पानी भर जाता था और यही पानी हमारी दुनिया बन जाता था। कागज के नाव और उसकी रेस, कौन जीता कौन हारा, कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर हम बड़े होते चले गए और वही बारिश का एहसास मोहब्बत में कब तब्दील हो गया हमें पता भी न चला।

श्रोताओं, एक सवाल आपसे करूं, क्या आज भी बारिश में भीगने का वही मजा आता है जो बचपन में आता था? अगर आता हो तो प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा और हमें बताइएगा जरूर। फिलहाल बारिश सिर्फ पानी नहीं होती दोस्तों, ये यादों का मौसम होता है। कितने ही लोग इस मौसम में अपने पुराने किस्सों में लौट जाते हैं, कोई पहले मुलाकात को याद करता है तो कोई आखिरी मुलाकात को। बारिश में वो चाय की टपरी, भीगी हुई सड़कें और किसी का इंतजार करती वो खिड़की। कभी कभी बारिश हमें अंदर तक भिगो देती है, जहां शब्द नहीं होते, सिर्फ एहसास होता है।

दोस्तों, बारिश हमें एक बात तो सिखाती है कि रुकना नहीं है, बहते रहना है। जैसे नदियां बारिश के बाद और मजबूत हो जाती हैं, लबालब हो जाती हैं, भरी पूरी हो जाती हैं, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों के बाद और गहरा हो जाता है। कभी कभी जिंदगी में बारिश आती है, लेकिन वही बारिश हमें साफ कर जाती है, हमें नया बना देती है। तो अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई बारिश चल रही है, यानी मुश्किलात चल रहे हैं, तो घबराइए मत, ये भी गुजर जाएगी। बस हौसला रखिए और हाँ, अपनी जिंदगी से इंटरटेनमेंट को कभी मत जाने दीजिए, क्योंकि यही है जो आपको हर परिस्थिति में जिंदा रखता है, जिंदा दिल रखता है।

दोस्तों, बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं होती, एक एहसास है। कभी आपको बचपन में ले जाती है तो कभी किसी की याद दिलाती है और कभी खुद को खुद से मिला देती है। तो अगली बार जब बारिश हो तो बस एक कप चाय लीजिए और खुद को थोड़ा सा भीगने दीजिए और एहसास कीजिए उन पलों का जिसने जिंदगी में कभी भी मुस्कुराने का मौका दिया हो।

श्रोताओं, बारिश थमने सी लगी है, पर जो भीग रहा है ना, वो सिर्फ इस शहर नहीं, हम सबका दिल भी है। कभी कभी मौसम सिर्फ मौसम नहीं होता, वो हमारी अधूरी बातों का जवाब होता है, हमारी छिपी हुई यादों का हिजाब होता है। तो आज अगर आप भी भीगे हैं तो भागे मत इस एहसास से, क्योंकि बारिश आपको तोड़ने नहीं आई है, बल्कि आपको जगाने आई है। जैसे आसमान रोकर भी साफ हो जाता है, वैसे आप भी हल्के हो जाइए और मुस्कुरा दीजिए। इसी मुलाकात को आगे बढ़ाएंगे किसी और कार्यक्रम में आपके साथ। तब तक दीजिए अतुल यादव को इजाजत। नमस्कार।

0: लगी। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत प्रोग्राम खत्म होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजे रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान

0: का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay.

प्रस्तुत है जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों प्रस्तुत है जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम, हम दिल्ली से रिले करेंगे रात 9:30 बजे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रेशमा श्रीवास्तव का सितार वादन सुनिएगा अब से कुछ ही देर में यानी 12:15 पर और रात 10:30। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश हम लेकर आएंगे 12:30। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार।

का अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी 1:15 पर होगा। 2:30 श्रोता सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। सांध्यकालीन सभा का आरंभ हम करेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम से शाम 5:00। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी 5:15 पर होगा, जिसमें आज का आकर्षण होगी अंग्रेजी वार्ता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफर्ट्स टू कंजर्व फॉरेस्ट। 6:30 ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम पंचायत घर सुन सकेंगे, जिसमें आज सियाराम मिश्र का नीति वचन सुनवाया जाएगा। साथ ही ग्रामीण भाई आनंद लेंगे हरिश्चंद्र पांडे और साथियों के गाए लोकगीतों का। विशेष कार्यक्रम बोलते हैं नाकों में सुनना मत भूलिएगा, शाम 7:31 पर स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का होगा। रात 8:30 सबरस कार्यक्रम। और 10:00 फिल्मी गीतों का लुत्फ उठाइएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत में।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन एआईआर ऐप डाउनलोड करके। अब वक्त हो चला है शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रेशमा श्रीवास्तव का राग मधुवंती में सितार वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रेशमा श्रीवास्तव का राग मधुवंती में सितार वादन। अब आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश।

0: कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।
1: फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए। जी पवन जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: दूध का कर्ज।
1: गाने के बोल भी बता दीजिए।
2: मैं तो बीन बजाऊंगा।
1: जैकी श्रॉफ की ये फिल्म थी।
2: हाँ हाँ जैकी।
1: तो आपकी पसंद का ये गाना लीजिए, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए। हाँ प्रेमचंद जी बिल्कुल बोल रहे हैं, पोस्ट हंडिया जिला हंडिया। बड़ा सरल आपका पता है, एक ही बार में सब कुछ चला जाता है।
1: जी बिल्कुल मैम।
0: तो प्रेमचंद जी आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है दीवाना।
0: अच्छा जी, गाने के बोल बता दीजिए।
1: नहीं,
0: शाहरुख खान और ऋषि कपूर। हाँ हाँ,
1: और गाने के बोल हैं तेरे दर्द से दिल लावाद रहा, तेरे दर्द से दिल लावाद रहा, कुछ भूल जाए कुछ याद रहा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: हाँ नमस्ते मैडम, संगम नगरी प्रयागराज हवदिया झूसी से महेंद्र नाथ कुशवाहा बोल रहा हूँ।
0: जी महेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: बस मैडम बहुत बढ़िया, आपके कार्यक्रम सब बहुत अच्छे लगते हैं कलम से।
0: जी
1: इस समय जो है लोकगीत वगैरह का थोड़ा सा चेंज हो गया है, 10:30 बजे हो गया, 2:30 बजे से हटा करके इधर कर दिया, अच्छा लग रहा है इस समय।
0: अच्छा आप बहुत ध्यान से सुनते हैं हमारे सभी कार्यक्रमों को।
1: मैडम सब कार्यक्रम बहुत बढ़िया सुनते हैं मैडम। और गाना सुनना था मैडम बरसात पुरानी वाली का, हवा में उड़ता जाए मेरा
0: लाल दुपट्टा मलमल का। तो आपने बहुत ही पुरानी फिल्म का गाना चुना है।
1: हाँ मैडम बहुत पुरानी, अच्छे लगते हैं पुराने गानों में, मिठास बन रहती है।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: हाँ मैडम बहुत बढ़िया लगता है, थोड़ा नाम भी ले लें।
0: हाँ हाँ ले लीजिए ले लीजिए।
1: हाँ शुभम कुशवाहा, शिवम कुशवाहा, सत्यम कुशवाहा, सुनीता कुशवाहा और दीपिका कुशवाहा।
0: तो आइए सुनते हैं बरसात फिल्म का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: छतपाल सिंह पटेल, पूर्व प्रधान सलाहपुर, थाना पूरा होती, जिला प्रयागराज।
0: जी छतपाल जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: राजा राव फिल्म का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलवेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश और मैं हूँ मधु। आपके गीतों के साथ अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं जिला प्रतापगढ़
0: से। जी रोशनी जी, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम कयामत फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं।
0: कयामत फिल्म का कौन सा गाना है?
1: हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना।
0: तो आपकी पसंद का ये गाना लीजिए, सुनिए।

अभी श्रोता सुन रहे थे अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म गानों का प्रोग्राम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम।

0: युवावाणी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: झिलमिल
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। एक बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: 1:10 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। रियासती हुकूमत ने मुलाजिम असातजा के लिए अलग से टीचर अहलियत टेस्ट TET कराने का फैसला किया है। UP TET 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल इस सिलसिले में अफसरान को वाज़ह हिदायत दी। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने कल से 4 जुलाई तक मुनक्किद हो रहे UP TET 2026 इम्तिहान की दयानतदारी और शफाफियत व उम्मीदवारों की सहूलियत को यकीनी बनाने पर खसूसी जोर दिया। इस दरमियान रियासती हुकूमत ने UP TET 2026 के इम्तिहान में शिरकत कर रहे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूलों में मुलाजिम असातजा को खसूसी छुट्टी देने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 102 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने बोर्ड के इम्तहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा और मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को लैपटॉप और ग्रांट के चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत रामपुर समेत रियासत के रूहानी विरसे के मकामात को ज़िंदा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर इलाके में तरक्की को मजीद मजबूत करेगा।
2: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
1: रामपुर के बाद वज़ीर आला ने बरेली में तरक्याती काबों और अमन व अमान का जायजा लिया। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत रोजगार गारंटी और रोजी रोटी मिशन देही VBG राम जी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो गया है। इसके मुल्कगीर निफाज की माकबल शब पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी अहल देही मजदूर एक दिन के लिए भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुनासिब माली वसायल दस्तयाब करा दिए गए हैं, अमल दरामद का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तैयार है और चल रहे काम बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। जनाब चौहान ने कहा कि 125 दिन की तनख्वाहदार मुलाजमत की बढ़ाई गई गारंटी देही माश को मजबूत करेगी। ये एक्ट हर एक अहल देही कुनबे के लिए कानूनी तनख्वाहदार रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करता है। मुतादी बीमारियों पर काबू पाने की मुहिम आज रियासत के तमाम अजला में शुरू हो रही है। इस मुहिम के तहत तकरीबन एक दर्जन सरकारी महकमे पूरे महीने में मुतादी बीमारियों की रोकथाम से मुतालिक सरगर्मियों को मरबूत और मुनज़्ज़म करेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने देही इलाकों के शहरियों को राहत फराहम करते हुए एक अहम कदम उठाया है। अब रियासत भर के तमाम गाँव सेक्रेटरीटों में लेखपाल बाकायदगी से दस्तयाब होंगे। इस कदम का बुनियादी मकसद गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप के अहद को पूरा करते हुए रेवेन्यू सर्विसेज को आसान, तेज़तर और ज़्यादा शफाफ बनाना है। इस हुकूमती फैसले से देही इलाकों के शहरियों को अब गैर ज़रूरी तौर पर छोटी और बड़ी रेवेन्यू खिदमात के लिए तहसील हेडक्वार्टर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आज से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर के नाम से रियासत गिर मुहिम शुरू कर रहा है। इस मुहिम में दफ्तर सतह से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल गाड़ियों के लिए मैनेजरों और प्रिंसिपलों को नोटिस या फ़ोन के जरिए अलर्ट किया जाएगा कि वो जुलाई के पहले हफ्ते तक 100% स्कूली गाड़ियों का फिटनेस कराएँ और दुरुस्त परमिट हासिल करें। मानसून रियासत के तकरीबन तमाम अज़ला में पहुंच चुका है। मानसून की बारिशों के आगाज से गर्मी की शिद्दत से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर समेत कई अज़ला में कल से वक्फे से बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात के सीनियर साइंसदान अतुल कुमार सिंह ने रियासत के कई हिस्सों में भारी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ

0: नमस्कार श्रोताओं।
1: और तनु, हाँ? कैसे हो तुम?
0: बढ़िया, तुम कैसी हो?
1: भाई मैं भी सुन रही ठीक हूँ। और जानते हो अपने कार्यक्रम में आ गई हूँ है ना, अपना प्रिय कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
0: हाँ।
1: जहाँ हर दिन मिलती है जीवन को सरल, स्वस्थ और सुंदर बनाने वाली उपयोगी जानकारियाँ। तो भाई नाम भी तो बता दूं, तुम्हारा नाम तो मैंने ले लिया, अब मैं अपना भी नाम बता दूं।
0: भाई मेरे साथ है हेम।
1: हाँ, तो भाई सबका हार्दिक स्वागत है हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में।
0: और हमेशा की तरह हमारा आज का कार्यक्रम भी ज्ञान, स्वास्थ्य, स्वाद और जागरूकता से भरपूर है।
1: बिल्कुल।
0: तो आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम के विषय में। बताओ आज का क्या कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है?
1: देखो आज है 1 जुलाई।
0: हाँ।
1: और हम मना रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह, है ना। भाई सखियों कहते हैं कि पेड़ है तो जीवन है और पेड़ है तो भविष्य है।
0: बिल्कुल।
1: प्रकृति ने हमें जल, वायु, भोजन और जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन दिए हैं। इन संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? हमारा
0: वन है, जो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। और इसीलिए हमें ऐसे सप्ताह, ऐसे दिवस मना के लोगों में जागरूकता लाने का काम करना पड़ रहा है, ताकि हम उनको संरक्षित करें। क्योंकि हमें जिंदगी से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जो भी चीजें होती है ना, वो वनों से ही मिलती हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हो। और यही है कि हम आज के महत्व यानी वनों के महत्व को समझाने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाते हैं, है ना।
0: और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में। तब के जो तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री थे K.M. मुंशी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इसका उद्देश्य देश भर में वृक्षारोपण को वन जन आंदोलन बनाना, ताकि सब लोग इसमें
1: एकजुटता,
0: बिल्कुल एकजुट हो के इस काम में लग जाएं, वनों को संरक्षित करें और नए पेड़ लगा के वनों को बढ़ाने का भी प्रयास करें।
1: बिल्कुल भाई,
0: और हम सब इसके प्रति बहुत ज्यादा जागरूक रहे।
1: हाँ, भाई देखो वन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है।
0: हाँ।
1: अगर हमारा ये जो है जंगल वन कट जाएगा, एक भी पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे, हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर आएगा।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई हमें वन जो है शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, और जब बारिश के समय में संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। और जानते हो,
0: बिल्कुल, और जो भी आजकल समस्याएं देखने को आती है ना, कि कहीं बहुत बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, कहीं लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स वनों के कटने की ही वजह से हो रही है। जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, ये मिट्टी को बांध के रखती हैं, उनकी उर्वरता को बांध के रखती हैं। तो इससे क्या होता है, लैंडस्लाइड्स भी नहीं होते हैं, और जो जमीन होती है वो उपजाऊ होती है, और सारी ही चीजें, जैसे ऑक्सीजन तुमने कहा, उसके अलावा लकड़ी से सारी चीजें बनती हैं, पेपर जो हम लिखते पढ़ते हैं लेकर बैठे हुए हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो फल फूल, क्या चीज ऐसी है जो जंगल से नहीं मिलती?
1: और जानते हो भाई, हमारे जो ये हमारे ईश्वर ने जो रचना की है, सृष्टि की, इसमें तरह तरह के पशु पक्षी भी हैं।
0: बिल्कुल है ना? ये बहुत बड़ी बात है कि देखो, हम लोग ने, मानवों ने तो अपने लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए कि हम इस तरीके से रह सकते हैं, घर में रह सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये उगा सकते हैं, लेकिन जानवरों के जीवन में तो सब कुछ प्रकृति की है। अगर प्रकृति नहीं होगी तो वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? और इसी वजह से, क्योंकि वन कम होते जा रहे हैं, बहुत सारे जानवर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या एक्सटिंक्ट होने की कगार पर खड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: तो भाई वन कटने से रोकना है हम ही सबको, और अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। और इससे देखो सबसे बड़ी बात है, हम लोग कहते हैं अपने आयुर्वेद की तरफ चलते हैं, कि वन में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारा आयुर्वेद भयंकर से भयंकर बीमारियों को दूर कर देता
0: बिल्कुल
1: है।
0: और सबसे बड़ी बात, विदाउट साइड इफेक्ट,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: अब सभी चीज तो है, चाहे वो फल हो, फूल हो, या जो गोंद है।
0: हाँ।

0: कहते हैं ऐसा पौधा भी है जो गोंद हमें देता है
1: हाँ।
0: और हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल,
0: जब आप लड्डू बनाइए लोग कहते हैं ना गोंद ला के, तो ये कहाँ से मिलेगा हमें?
1: वन
0: से
1: ना ही तो मिलेगा। होता क्या है कि वन कम होने की वजह से जब उपज कम हो जाती है, फल कम हो जाते हैं या और चीजें कम हो जाती है, तब उसकी उपज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके यूज करते हैं, कीटनाशक यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, कार्बाइड लगा के चीजों को पका रहे हैं, तो ये सब चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी खराब हैं।
0: और पहले देखो क्या हुआ करता था, पेड़ों से जो फल नीचे गिरते थे उसका स्वाद और आज के स्वाद में कितना अंतर है।
1: बिल्कुल, ना स्वाद ना महक और ऊपर से नुकसान अलग से।
0: बिल्कुल, अब आजकल तो ऐसे लोग कहते हैं कि 12 महीने हर फल आता है। फल आने का एक समय होता है, है ना, कि जिस मौसम में जो फल आए वो हेल्थ के लिए बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छा
1: हमेशा
0: होता है।
1: ये बात हम लोग कहते हैं कि सीजनल फल सब्जियां खाइए।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन ये भी तो बात है ना कि वो सीजनल फल सब्जियां ठीक तरीके से उगाई गई हो, उनमें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स का, आर्टिफिशियल तरीकों का इस्तेमाल ना हुआ हो, तभी वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होंगी। और इस तरीके से अगर जंगल कट जाएंगे, पेड़ कट जाएंगे, तो इस ये चीजें इस तरीके से उपज बढ़ा के पैदा करना मजबूरी हो जाएगी,
0: मजबूरी
1: नहीं
0: हो
1: तो
0: जाएगी।
1: इतनी जनसंख्या के लिए चीजें कहाँ से आएंगी।
0: सही कह रही हो भाई, देखो पेड़ों का जो समूह वो हमें ये भी दिखाता है कि अगर यूनिटी है यूनाइट होकर अगर कोई काम करो तो वो जरूर सक्सेस होता है। तो ऐसे पेड़ जो वन है हमें ये बताते हैं कि हमारी छाया में आपका जीवन है, है ना, हमारा जो हमारे अंदर से जो ऑक्सीजन निकलती है वो आपके जीवन को बहुत ही शुद्धता प्रदान करती है।
1: देखो ना हेम, जैसे कहीं पर भी किसी चीज का जंगल है, तो वहाँ पे बिना किसी मेहनत के वो जंगल अपने आप बढ़ता रहता है। उसका पॉलिनेशन होना है या नए पेड़ उगने हैं, उसकी जड़ों से उगने हैं या उसकी टहनियों से उगने, जैसे भी उसमें किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, प्रकृति सारा काम अकेले दम पे करती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन
0: बिल्कुल।
1: अगर कोई अकेला पेड़ होता है तो उसको बचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है,
0: बहुत मेहनत
1: है ना। तो एकता में शक्ति तो वहाँ पे भी है भाई।
0: वो देखो जो हमारा नेचर है ना, ये अगर आप ध्यान से देखे बिल्कुल समझने की अगर कोशिश करें और अपने जीवन में लाने की कोशिश करें, तो बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन ये बता देते हैं, हमारा नेचर ही है, है ना। लोग कहते हैं ना कि अरे नेचर सपोर्ट, तो नेचर जो सपोर्ट होता है, जब आप नेचर को सुरक्षित रखेंगे तभी नेचर सपोर्ट होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और
0: तो आपको तो हर चीज बचा कर सहेज कर सजो कर रखना है और ये कोशिश करना है कि आप जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो आने वाली जनरेशन को भी आप बताएं, जिससे हमारा जो ये कोई भी टॉपिक है हम जो लेकर आते हैं उसमें सार्थकता है।
1: बिल्कुल, और अब तो क्योंकि इतना डेवलप कर लिया है टेक्नोलॉजी ने और हर एक चीज ने, अब तो ऐसे तरीके भी आ गए हैं कि अगर कहीं से रास्ता निकालना है या जरूरत है जमीन खाली करने की, पेड़ हटाना है, तो उस पेड़ को काट के खराब करने की जरूरत नहीं, पूरा पूरा उखाड़ के दूसरी जगह लगा दिया जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
1: है ना। तो जब हमारे पास इतनी टेक्निक है तो हम उसका इस्तेमाल क्यों ना करें, हम क्यों किसी पेड़ को काट के खत्म करें? सोचो एक बीज से एक विशाल वृक्ष बढ़ने में कितना समय लगता है,
0: है ना, काटने में एकदम समय नहीं,
1: काटने में एकदम समय नहीं लगता, तो इसलिए
0: सोचने वाली बात।
1: बिल्कुल,
0: तो भाई देखो कहते हैं कि एक पेड़ 100 खुशियां, हम लोग बात तो बहुत सारे संदेश देते हैं बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले एक कदम हम स्वयं बढ़ाएं, खुद बढ़ाएं, है ना। और हरियाली ही जीवन की सच्ची पूंजी है, और ये बिल्कुल सही है कि हर जगह अगर आप हरियाली देखते हैं तो आपका मन खुश ऐसे ही हो जाता है, आधी आपकी जो आधा दुख दर्द है ना वो ऐसे ही दूर हो जाता है। तो भाई आप अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और एक कोशिश ये भी करें,
1: नहीं नहीं हेम,
0: कोई बर्थडे हो कुछ भी हो,
1: हाँ तब भी पेड़ लगाएं। और मुझे एक पता है बड़ी अच्छी बात याद आई, जैसे हम लोग कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं घूमने या कहीं पर भी जाते हैं, तो जब आप प्रकृति के बीच में चल रहे होते हो ना, चाहे पैदल चल रहे हो चाहे गाड़ी से चल रहे हो, तो मन अपने आप इतना खुश हो जाता है कि जैसे अगर गाड़ी में गाना नहीं चल रहा है तो अपने आप ही गुनगुनाने
0: लगते हैं। बिल्कुल,
1: कितनी सच्ची खुशी मिलती है
0: वो
1: फीलिंग, जो
0: वो फीलिंग
1: कहीं भी नहीं मिल सकती,
0: नहीं मिलती है,
1: है ना।
0: तो भाई अगर उस फीलिंग को आपको बराबर मतलब कि रखना है और चलना है तो आपको ये बनाए रखना होगा, और इतनी अच्छी बातचीत के साथ जो गुनगुनाने वाली बात कर रही
1: हूँ गुनगुना लेते हैं।

0: वाह तनु,
1: बहुत
0: बहुत चुनकर गीत सुनाया,
1: खूबसूरत।
0: मना एकदम मन आनंद
1: हाँ,
0: से
1: मैं गाने के पहले
0: बढ़िया।
1: बोल रही थी ना कि
0: हाँ
1: प्रकृति के बीच में अपने आप मन
0: ओ
1: गुनगुनाने
0: बिल्कुल
1: लगता
0: फील कर
1: है।
0: लिया वो चीज़।
1: हाँ, और देखो
0: हाँ
1: इस गाने ने भी ये बात साबित कर दी कि हमारा जो दिमाग है, जो
0: हाँ
1: हमारा
0: हाँ
1: मानसिक जो परिस्थिति, जो स्थिति है
0: हाँ
1: मानसिक,
0: हाँ
1: वो प्रकृति के बीच में जाके एकदम स्वस्थ हो जाती है,
0: बिल्कुल
1: सारे डिप्रेशंस भूल जाती है,
0: हाँ
1: सारी चिंताएं भूल जाती है, और ये बहुत ज़रूरी है।
0: वो भी
1: इसीलिए
0: हाँ
1: प्रकृति के साथ रहना बहुत ज़रूरी
0: बहुत
1: है, क्योंकि
0: ज़रूरी
1: अपना
0: है,
1: मानसिक स्वास्थ्य सही
0: जरूर
1: रखना
0: सही
1: बहुत
0: रखना
1: ज़रूरी
0: है।
1: है,
0: और
1: और
0: आज
1: स्पेशली महिलाओं को,
0: अगला हमारा जो
1: है
0: हमारी
1: ना।
0: जो बातचीत है इसी पर है कि महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता,
1: जा
0: महिलाओं में मानसिक
1: बिल्कुल
0: स्वास्थ्य
1: भाई, हम ही तो
0: जागरूकता।
1: परिवार की धुरी हैं,
0: हाँ
1: हम ही
0: बिल्कुल
1: डिस्टर्ब हो जाएंगे तो
0: हाँ
1: परिवार का क्या होगा।
0: सही कह रही
1: और
0: हो।
1: सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं आज भी घर पे ही रहती हैं, तो उनका माइंड ना उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है,
0: सही कह
1: उन्हीं में
0: रही हो,
1: उलझा रह जाता है,
0: सही बात
1: वो
0: है।
1: खुद ही ये समझ नहीं पाती।

0: कि किस बेकार की चीज में वो उलझती जा रही हैं और उससे वो निकल नहीं पाती। और अगर इस चीज पे टाइमली ध्यान ना दिया जाए तो ये एक मानसिक रोग का, मैं मतलब शब्द कहूँ, या मतलब एक खराब मानसिक अवस्था का कारण हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
1: स्वस्थ जीवन का अर्थ केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होना होता है ना, बल्कि हमारा जो मानसिक रूप से जो हमारा दिमाग है
0: बिल्कुल
1: वो शांत होना चाहिए, सुकून हाँ। वाला होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, है ना भाई। मानसिक स्वास्थ्य हमारे विचारों को, भावनाओं को, जैसा तनु ने अभी बताया, हमारे व्यवहार और हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है।
0: बिल्कुल।
1: आज की महिला घर परिवार बच्चों नौकरी और सामाजिक जिम्मेदारियों का भाई महत्वपूर्ण जो है निर्वहन करती है, लेकिन इन अनेक भूमिकाओं के बीच वो अक्सर अपने मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी कर देती है।
0: होता है ना कि जैसे सुबह से उठे और पता है कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, तो कुछ और तीसरा अपने बारे में सोचने का
1: ही नहीं,
0: या अपने अंदर जो क्रिएटिविटी थी या जो टैलेंट था उन चीजों के बारे में सोचने का, अपने पे वर्क करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है।
1: एक छोटी सी बात बताऊं, अपने लोगों के बीच बहुत सी जो सखियां हैं वो जो ना करती होंगी ये काम, लेकिन अधिकतर मैं तो कहती हूँ 100% में 99% ऐसी बहनें हैं जो ये काम करती होंगी। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट उन्होंने रेडी किया, ठीक है, सबको उन्होंने करा दिया। अब उसमें अगर कम है या नहीं भी है तो फिर वो अपने लिए करने के लिए नहीं जाती,
0: हर जगह पे अपने लिए ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं।
1: तो ये चीज बहुत गलत है। अगर आपने बनाया तो दो अपने लिए भी तो बनाइए, बड़े खुश मन से कि नहीं सबको मैंने दिया तो मैं भी तो।
0: उससे भी पता है सिर्फ पेट की बात नहीं है, दिमाग भी उससे थोड़ा डिस्टर्ब होता है कि मतलब एक तो भूख से भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है, दूसरी चीज आप उस चीज को स्वाद नहीं ले पाए या आपने उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाए। खाना भी एक एंजॉयमेंट है, खुशी देता है,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो आप अगर कोई चीज कम है तो आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, सेकेंड ऑप्शन भी रख दीजिए, भाई आप ये चीज ले सकते हो, लेकिन खुद का हिस्सा, अपनी प्रायोरिटी को जरूर ऊपर रखना जरूरी है।
1: कहने का मतलब ये है कि अपनी जो महत्ता है वो स्वयं को समझना है और आपको ये सोचना है कि हम जो है दो पहिए हैं, अगर एक पहिया खराब होता है, एक पहिया खराब होता है तो जो गाड़ी होती है वो एक पहिए पे नहीं चलती है, दो पहियों पे चलती है। तो इसलिए दोनों पहियों का स्वस्थ होना जरूरी है और दोनों का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना जरूरी
0: देखो
1: है।
0: देखो ये भी होता है ना कि परिवार में सपोज किसी एक के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो जो भी महिला है घर की वो उसकी पूरी केयर अकेले कर लेती है, उसको पूरी तरीके से संभाल लेती है। लेकिन एक महिला के डिस्टर्ब होने से पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा परिवार मिलके भी उस एक अकेले को नहीं संभाल सकता है। और उसकी वजह से उन सबकी लाइफ में भी डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं। तो खुद को प्राथमिकता देना, खुद पे वर्क करना बहुत जरूरी है, खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। अब मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि अब जो प्रश्न उठता है कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या, है ना। तो सबसे पहले तो सखियों, मानसिक स्वास्थ्य वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है, ठीक है, तनाव का संतुलन जो होता है वो ढंग से कर पाता है कि नहीं कर पाता, इसको समझने की जो सोचने का विचार करता है, स्वस्थ संबंध बनाए रखता है और जीवन की चुनौतियों का सकारात्मक रूप से सामना कर पाता है।
0: बिल्कुल। अगर दिमाग डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है कि अरे जल्दी से काम कर लिए फिर लेट गए, या कोई बस जिसके लिए हमें जो करना है उसको कपड़े देने, उसको खाना देना है वो कर दिया, लेकिन उसके साथ एक गुड रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। तो जब तक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो वो एक जो हैप्पी एनवायरनमेंट है घर में, जो गुड रिलेशंस हैं घर में, वो चीज डेवलप नहीं हो पाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये सब चीज आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छी तरीके से रखिए, तभी हर काम जो अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल पाएगा, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे वो संबंध बनाने का, यानी आप किसी भी रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से अगर निभाना चाहते हैं तो पहले अपना मानसिक स्वास्थ्य सही रखिए।
0: बिल्कुल। और आज का ये विषय इसीलिए उठाया गया है ताकि आपके अंदर ये जागरूकता आए कि आप 5 मिनट निकालें अपने लिए, सोचें कि कहीं आप के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कहीं आप चिड़चिड़े तो नहीं हो रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चीजें नहीं हैंडल कर पा रहे हो, या कोई परिस्थिति सामने आ रही है तो आप बिल्कुल हाथ पैर हथियार डाल दे रहे हो कि नहीं, जिसको जो डिसीजन लेना होगा ले लेगा, आप उसमें एक सही अपनी राय नहीं दे पा रहे हो। ये चीजें आपकी बहुत जरूरी हैं आपके परिवार में।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं पे आप बैकफुट पे हो रहे हो, कहीं पे आप चीजों को नहीं हैंडल कर पा रहे हो, तो आप अपने लिए समय निकालो।

0: बिल्कुल,
1: आप वर्कआउट करो, आप जिम जाओ, आप टहलो, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आपको किसी भी चीज़ का शौक है, आर्ट का शौक है, गार्डनिंग का शौक है, अगर आपको फ्लावर्स मेकिंग का शौक है, कुछ भी एनीथिंग, सिलाई का शौक है,
0: तो वो भी आप
1: वो भी करो। जब आप एक बहुत प्यारा सा क्रिएशन अपने हाथ से कोई करते हो ना, आपको जब खुशी मिलती है तो आपके दिमाग में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि वो आपके दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर
0: बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने लिए समय निकालिए।
1: हाँ,
0: सबके लिए आपने समय निकाला, लेकिन अपने लिए अगर आपने समय नहीं निकाला तो बस वही कलेश वाली बात होगी कि आप दिन भर सुबह से उठकर और रात तक आपने वर्क किया, ठीक है, सामने वाला तो देख लेगा कि भाई, कह देगा कि भाई आप भी ये काम कर लो, लेकिन जब तक आपके मन में अपने लिए बात नहीं आएगी तब तक तो आपका जो हेल्थ इशू है वो रहता ही रहता है।
1: सुपर वुमन बनने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को एलियन बनने की जरूरत नहीं है। आप इंसान हो, आपको भी रेस्ट की जरूरत है, और आप ये मत सोचो कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही है, आप ही को सब कुछ करते रहना है, करते रहना करता है, ऐसा नहीं है। सबको छुट्टी मिलती है, आप भी छुट्टी लो। अगर आप नहीं मतलब शारीरिक रूप से आप स्वस्थ फील कर रहे हो या आपका मन नहीं है, तो कभी आप घर वालों के सहयोग से कोई चीज बना सकते हो। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप बाजार से मंगा सकते हो, बच्चों को काम पे लगा सकते हो, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि एक घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा। जब सब लोग मिलके काम करेंगे आपको भी थोड़ा आराम
0: मिलेगा, है ना? और आराम देखिए, अगर 7 से 8 घंटे की नींद आपकी हो गई तो आपका चिड़चिड़ापन ऐसे ही दूर हो जाएगा। आप अपने लिए, जैसे हमने कहा ना, समय तो सजिए संवरिए, ये भी एक कला है,
1: बिल्कुल,
0: है ना? लोग कहते ना कि भाई अपने लिए, अपने लिए भी आप कुछ काम करिए। ये बात जरूर पॉइंट नोट करिए कि आपको अपने लिए भी कुछ करना है, सबके साथ मिलकर। और जानते हैं, सबकी अपेक्षाओं पे आप खरे नहीं उतर सकते हैं, तो आप ये बिल्कुल कोशिश ना करिए कि सबको खुश करने की, ठीक है? आपका जो काम है, हाँ, किसी से आप कोई ऐसी बात ना करें जो किसी को लग जाए, ठेस पहुंचे। आप अच्छी तरीके से, विनम्रता पूर्वक, जिस तरीके से आप बात करते हैं, अपनी वाणी को एकदम मधुर बनाकर बातचीत करिए। और अगर आपको ना भी कहना है, बड़े प्यार से ना कहिए कि सामने वाला एकदम आपकी बातों से ग्लैड हो जाए।
1: तो हमारी आज की बातों का सम अप ये है, सबसे प्यार करिए, सबका ख्याल रखिए, लेकिन खुद के साथ
0: साथ।
1: और अब आप एंजॉय करिए इस म्यूजिकल ट्रैक को।

0: भाई चिंता चिता के समान, तो
1: बिल्कुल,
0: इसलिए
1: चिंता
0: बेफिक्र हो
1: छोड़
0: जाइए,
1: दो,
0: छोड़ दीजिए।
1: बढ़िया अपना
0: हाँ
1: ख्याल रखो, बढ़िया बढ़िया बनाओ खाओ, और
0: और
1: इसीलिए तो हम बढ़िया बढ़िया रेसिपीज बताते रहते हैं,
0: तो अब
1: है ना।
0: आज क्या बता रही हो?
1: आज हम बताने वाले हैं क्रिस्पी टोफू रोल।
0: वाह, क्रिस्पी टोफू रोल, चलो भाई।
1: देखो, ये
0: हाँ
1: स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हैं, और इसमें हम जितनी भी चाहें अपने पसंद से ताज़ी सब्जियां ऐड कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: और
1: फिर परिवार को बुद्धू बना के खिलाने के लिए भी एक स्वादिष्ट रेसिपी है ये, है
0: कि अगर इस तरीके से नहीं खाओगे तो इस
1: इस
0: तरीके से
1: तरीके से
0: खाओ
1: खाओ।
0: लेकिन बहुत हेल्दी होता है और आप
1: हाँ
0: इसको फटाफट बना सकते हैं ना।
1: हाँ बिल्कुल, और इसकी विधि भी बहुत आसान है।
0: अच्छा
1: देखो, इसके लिए पहले मैं सामग्री बता देती हूँ।
0: बिल्कुल बताओ।
1: 200 ग्राम टोफू, मतलब
0: हाँ
1: मैं ये क्वांटिटी ऐसे बता रही हूँ कि ये 200 ग्राम के लिए, अगर आपका
0: अच्छा,
1: बड़ा परिवार है या
0: हाँ
1: छोटा परिवार है तो बाकी चीज़ें आप
0: आई
1: उसी
0: थिंक
1: रेशियो में
0: दो
1: चेंज
0: दो
1: कर
0: सौ
1: लेना।
0: ग्राम जो बता रही हो हमारे ख्याल से 3 से 4 लोगों के लिए हो जाएगा आराम से।
1: हाँ,
0: हाँ
1: अगर एक एक
0: हाँ
1: रैप
0: हाँ
1: खाते हैं तो
0: हाँ तो
1: 4 रैप बन
0: बिल्कुल
1: जाएंगे
0: बिल्कुल
1: इससे।
0: बिल्कुल। हाँ
1: तो फिर इसके बाद आप 4 रोटियां पतली पतली, या रैप जो भी आप बनाना चाहो वो बना लो।
0: और
1: 1 का पत्ता गोभी, 1 गाजर,
0: हाँ
1: 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज, ये सारी चीज़ें आपको बारीक बारीक काटनी है।
0: बिल्कुल।
1: आप चाहो तो इसको चॉपर में सारा मिला के काट लो, और चाहे आप
0: अच्छा
1: अलग अलग, जैसे कुछ लोग गाजर के लच्छे पसंद करते हैं तो
0: हाँ,
1: कद्दूकस कर लें, छोटा छोटा करना है तो
0: मतलब
1: चॉप कर
0: वैरायटी
1: लें।
0: ऑफ वेजिटेबल्स।
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ
0: हाँ ठीक।
1: 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 बड़े चम्मच मैदा, और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला।
0: और अगर लाल मिर्च नहीं डालने का मन है तो ना
1: नहीं
0: डालें, है
1: डालने का मन है तो
0: ना।
1: ना डालें, जो
0: हाँ
1: लोग कम मिर्चा खाते हैं अवॉइड कर सकते हैं,
0: हाँ
1: काली मिर्च से वो हल्का सा
0: हाँ हो
1: तीखापन
0: जाएगा।
1: आ
0: हाँ आ
1: जाता है।
0: जाएगा। हाँ
1: हाँ, नमक स्वाद अनुसार, और 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच हरी चटनी या मेयोनीज अगर आपको पसंद हो तो यूज़
0: तो
1: करिए, कुछ लोगों
0: हाँ
1: को मेयोनीज नहीं
0: नहीं
1: पसंद होती
0: पसंद है तो
1: है
0: ना डालें।
1: तो आप उसकी जगह चीज़ डाल सकते हैं
0: हाँ
1: या नहीं भी डाल
0: नहीं भी
1: सकते हैं,
0: डाल
1: जैसा
0: सकते,
1: आपको मन हो।
0: ठीक।
1: और मुझे तो पता है, घर की जो गाढ़ी मलाई हो ना, अगर उसको काफ़ी देर
0: हाँ, अरे
1: छन्नी में
0: वाह
1: रख दो
0: वाह,
1: सारा
0: हाँ हाँ
1: दूध गिर
0: तो
1: जाए,
0: वो एकदम ठीक की
1: हाँ
0: तरह हो जाता है ना।
1: ठीक हो जाती है,
0: हाँ
1: तो वो अच्छी भी लगती है फिलिंग में और नेचुरल भी रहती है।
0: मुझे तो जानते वो टोस्ट जो आता है ना, वो उसके साथ खाने में बड़ा मजा आता
1: तो
0: है।
1: आप चाहो तो भाई, अगर मेरी तरह आपको घर की चीज़ों का यूज़ करना
0: हाँ
1: है तो
0: हाँ
1: आप उसको भी कर सकते
0: हाँ
1: हो,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: तेल आवश्यकता अनुसार ले लीजिए।
0: हाँ हाँ
1: अब बनाने की विधि ये है
0: हाँ
1: कि पहले तो टोफू को दबाकर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो
0: वो
1: निकाल
0: निकाल
1: लें
0: दिया जाए।
1: ताकि वो सौगी ना हो,
0: हाँ हाँ
1: उसको फिर लंबे लंबे टुकड़ों में काट लें।
0: जी।
1: और 1 बाउल में कॉर्नफ्लोर, मैदा, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल बना
0: जितना
1: लें।
0: जितना लिया है उसको थोड़ा सा करके गोल बना लिया जाए,
1: हाँ, गाढ़ा सा
0: ठीक।
1: बैटर बना
0: अच्छा
1: लेंगे।
0: अच्छा
1: इसमें टोफू के टुकड़े डुबोएंगे तो ये जो बैटर है ना, ये बाकी चीज़ों को चिपकाने के काम आएगा।
0: अच्छा हाँ।
1: अब कढ़ाई में तेल गरम करें और टोफू को सुनहरा कुरकुरा होने तक तल लें।

0: जैसे वो सेलो फ्राई भी तो कर सकते
1: हाँ
0: हैं।
1: शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बिल्कुल शैलो फ्राई कर लें या पैन पे उसको ऐसे कर लें या कढ़ैया में डीप फ्राई कर लें, जैसे भी कर
0: जैसा
1: लें।
0: आपको लगे,
1: हाँ
0: लेकिन
1: जैसा
0: अगर
1: आपको
0: हेल्थ के
1: पसंद हो।
0: अकॉर्डिंग देखते हैं तो शैलो फ्राई ही
1: और
0: अच्छा
1: आजकल
0: लगता
1: तो
0: है।
1: हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो एयर फ्रायर का
0: हाँ,
1: ज्यादा
0: एयर
1: से ज्यादा
0: फ्रायर में कर
1: इस्तेमाल
0: देते
1: करना
0: हैं।
1: चाहते हैं,
0: हाँ
1: नो
0: हाँ
1: ऑयल है
0: बिल्कुल,
1: ना, तो
0: और
1: आप
0: फटाफट वो बन भी जाता
1: बन
0: है।
1: भी जाता है, तो आप बस उसमें थोड़ा सा ग्रीस करें और आप एयर फ्रायर में कर लें।
0: ठीक है।
1: अब सब्जियां तैयार करनी है तो एक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, इन सबको 2-3 मिनट के लिए हल्के आंच पर भून ले। मतलब
0: हाँ
1: हमें इतना कम भूनना है कि
0: हाँ
1: उसका क्रिस्प ना जाए,
0: ना
1: वो
0: जाए,
1: सॉफ्ट ना होने पाए,
0: ये बता
1: बस
0: रही हूँ ना,
1: हल्का
0: मेरे
1: सा
0: मुंह में
1: सॉटे।
0: पानी आ रहा है, इतनी सारी वेजिटेबल्स बता रही हूँ और कैसे कैसे बनेगा, तो वो
1: चलो
0: अजीब सा मुझे
1: चलो
0: लग रहा
1: तुम
0: है कि
1: शाम को बनाओ, मैं आती हूँ घर
0: बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम मोस्ट
1: है ना।
0: वेलकम।
1: तो हल्का सा बस इसको सॉटे कर लेना है। अब
0: हाँ।
1: रोल बनाने के लिए आप रोटी या रैप को पहले बिछा लीजिए, फिर उसमें चटनी, टोमेटो सॉस, मेयोनीज, जो भी आपको
0: हाँ जो
1: लगाना
0: भी,
1: है लगा लीजिए,
0: हाँ।
1: ऊपर से सब्जियां फैलाइए, फिर ये क्रिस्पी टोफू रखिए और
0: अच्छा,
1: थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क के
0: अरे
1: कस के इस
0: वाह,
1: रोटी का रोल बना लीजिए।
0: क्या बात है भाई,
1: बिल्कुल।
0: अरे
1: और
0: मतलब
1: अगर जैसे इसमें एक चीज़ और ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम लोग स्प्रिंग रोल्स बनाते
0: हाँ
1: हैं ना,
0: हाँ वो भी
1: तो
0: उस तरीके से,
1: हाँ तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हम लोग जैसे बैटर बना के पतला सा वो
0: हाँ
1: बनाते हैं,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: उनमें भी ये फिलिंग कर सकते हैं। फिर
0: बिल्कुल
1: उसको दो साइड से दबा के जब रोल करेंगे और मैदे से चिपका देंगे तो वो बिल्कुल भी फटता नहीं
0: नहीं,
1: है,
0: और आराम से वो
1: आराम से
0: जो,
1: वो फ्राई भी हो
0: हाँ फ्राई
1: जाता
0: भी हो
1: है।
0: जाता है, सिक
1: बस
0: जाएगा।
1: अब आप इसको बीच में काट के टेढ़ा टेढ़ा और टमाटो सॉस और या कि कोई भी डिप अपने पसंद का बना सकते हैं। पुदीने का डिप बहुत
0: अरे
1: अच्छा
0: बहुत
1: लगता है,
0: अच्छा लगता है, और
1: मिंट।
0: पुदीने की तो महक और स्वाद तो अपने आप
1: हाँ
0: में एक स्वाद ला देता है, खाने का एकदम जो टेस्ट है वो चेंज
1: बिल्कुल।
0: हो
1: तो
0: जाता
1: आप
0: है।
1: मिंट का डिप बना
0: हाँ
1: सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: आप
0: बिल्कुल,
1: उसको सेजवान सॉस के साथ खा सकते हैं,
0: हाँ
1: जो भी
0: हाँ
1: आपको पसंद हो।
0: बिल्कुल,
1: और सेहत का लाभ तो इसमें आप देख ही रहे हो,
0: हाँ
1: सारी
0: हाँ
1: सब्जियां हैं, टोफू में बहुत सारा कैल्शियम और आयरन होता है, तो ये एक हेल्दी डिश है जिससे आपका पेट भी बहुत देर तक भरा रहने वाला है।
0: बिल्कुल। तो भाई खाने के साथ साथ गाने की बात फिर होती है ना, है? तो
1: बिल्कुल
0: चलो सुन लेते हैं।
1: हाँ।

0: अब अगली सेहत की बात,
1: बिल्कुल,
0: वो भी बिना किसी काम के। हाँ। कोई किचन में नहीं जाना, कुछ नहीं
1: कुछ
0: बनाना,
1: फटाफट आपको उसका
0: बस बाजार से खरीदिए और खाइए इस सीजन के बढ़िया बढ़िया जामुन।
1: तो मैं समझ गई हूँ और बता देती हूँ कि जामुन है। और जैसा कि बारिश का, जब बारिश का मौसम आता है तो देखो बहुत सारे ऐसे फल हैं कि उसमें जब हम लोगों को नहीं मिलता और कभी कभी मन करने लगता है कि ये खा ले, लेकिन अभी समय और लोग बेचते भी हैं, कैसे बेचते हैं, क्या क्या स्लोगन उनके रहते हैं, क्या क्या गाने,
0: और बारिश अच्छा लगता है, बिकते हुए जामुन देखकर ही मजा आ जाता है।
1: बिल्कुल। और एक मेवा फालसा, मेवा फालसा भी बहुत मिलता है। तो ये लगता है कि चलो भाई अब समय इंतजार जो खत्म हुआ और अब जामुन का स्वाद भी लिया जाए। तो जामुन जो है केवल फल ही नहीं है,
0: क्या है, नमक के साथ।
1: हाँ, फल फल के साथ साथ स्वाद तो इसमें मिलता है। हाँ। लेकिन औषधि इसमें जो है ना, औषधि है ये,
0: औषधीय गुण बहुत ज्यादा भर भर के है और इतने ज्यादा है। हाँ। कि आप सीजन में इसको अच्छे से खा लीजिए तो वो साल भर उन डेफिशिएंसीज को ठीक करके रखता है।
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ तक कि सिर्फ फल ही नहीं, हेम इसकी तो गुठली भी कहते हैं कि अगर पीस के उसका पाउडर बना के खाया जाए तो डायबिटीज वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा
1: डायबिटीज। और दूसरी बात ये है कि अगर बच्चों के पेट में कीड़े हों है ना, तो अगर ये जामुन का जो चूर्ण है बना के घर में रखिए और बच्चों को केवल आधे से थोड़ी सी चम्मच, जो छोटी चम्मच होती है उससे थोड़ा सा, चौथाई हिस्सा आप दे के और बच्चों को गर्म पानी से अगर पिला दीजिए और ये हफ्ते में आप दो बार करिए, फिर एक हफ्ते छोड़ के फिर दो बार करिए, देखिए इतना मतलब कि बच्चा सुकून में रहेगा।
0: अच्छा।
1: जो रोता है, चिड़चिड़ाता है, वो दूर हो जाएगा। और भाई डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये एकदम गुणकारी है, गुणों से भरपूर है।
0: बिल्कुल। और सुंदरता के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो खाने से फिर आपकी स्किन जो है वो बहुत शाइन करने लगती है
1: और क्या, चमकने लगती है। फिर लोग पूछेंगे आपने क्या किया।
0: बिल्कुल।
1: तनु हम सब बताएंगे हम लोगों ने जामुन खाया इसलिए। और दूसरी बात ये भी है, देखिए हर चीज का होता है कि क्वांटिटी उसकी कितनी है।
0: हाँ।
1: है ना, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी खाना चाहिए। जैसे अब हम डायबिटिक हैं तो पता चला अकेले ही हमने उठा के आधा किलो जामुन खा लिया तो नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है। तो आपको जो खाना है वो 100 ग्राम खाना है एक बार में, उससे ज्यादा नहीं खाना है। ठीक है। दूसरी बात है क्योंकि देखो सब में लाभ भी है और क्या होता है नुकसान
0: तो
1: भी,
0: देखो हर चीज की खराब होती है।
1: और ये जो है हम एक मुट्ठी जब जामुन आप खा लेते हैं, एक मुट्ठी जामुन का जो बीज है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, उस बीज को सुखा लीजिए और सुखाने के बाद जब उसका पाउडर हो जाता है तो पाउडर तो एकदम ज्यादा हो जाता है ना, तो आप आधा चम्मच उसका यूज कीजिए।
0: अच्छा।
1: हाँ, तब वो ज्यादा फायदे, क्योंकि डायबिटिक 2 टाइप्स होते हैं।
0: हाँ,
1: है ना,
0: हाँ,
1: बहुत
0: हाँ,
1: से लोगों
0: हाँ,
1: को होता है कि भाई बहुत ज्यादा मात्रा पे वो होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं, बता नहीं पाते वो कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो आप घर में जो ये सारी चीजें हैं, ये मेडिसिन हैं, इसको अगर आप लेंगे, जामुन को ऐसे भी खाइए, बीज का भी वो करिए, और जामुन के पत्ते भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर 5 पत्ता जामुन के, 5 पत्ते जामुन को गर्म पानी में उबाल लीजिए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जैसे पानी खौलता रहे और उसमें डाल दीजिए, उसमें 5 पत्ते सदाबहार के और 5 पत्ते जामुन के डाल के और ढक के रख दीजिए। उसके बाद उसको छान के और सिप कर करके आप आधा कप पानी लीजिए, सिप कर करके आप उसको पीजिए, आपका जो डायबिटीज है ना वो बैलेंस रहेगा।
0: अरे वाह।
1: हाँ, बहुत फायदेमंद है,
0: बहुत फायदेमंद है। और आजकल तो डायबिटीज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है।
1: हाँ, बहुत,
0: है ना।
1: तो भाई देखो इतनी सारी जानकारी है हो गई है हमारे पास, है ना। तो अब चलते हैं फिर एक गीत की तरफ, आओ सुनते हैं।

0: भाई तो साथ में तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो।
1: ये सारी सखियां हमारी बंधु हैं, हमारी सखियां हैं, हम इनके साथ इस प्रोग्राम में खूब इंजॉय करते हैं, इनके हिसाब से इस प्रोग्राम को बनाते हैं और चाहते हैं कि ये हमें अपनी प्रतिक्रियाएं लिखकर भेजें।
0: बिल्कुल।
1: तो इसी के साथ
0: घर चलने के लिए तो सखियों से
1: कहते हैं विदा, कहते हैं नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे

0: कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन GRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से

0: लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
0: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी

0: कार्य पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
1: India's engagement
2: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
1: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
1: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी।
1: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
2: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुँचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड

0: पृथ्वी से टकराए।
1: जी
0: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
0: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
1: जी,
0: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है

0: कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
1: जी पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
0: देखो ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती है।
1: मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानि अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
1: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
1: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम। यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
1: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक

0: बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
5: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए है ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है, तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल

0: दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
1: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
0: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
1: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना। बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
0: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
1: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना। मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
0: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
1: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
0: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
1: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना। ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
0: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
1: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
1: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे वाह, ये भी
1: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
1: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
2: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहां खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
1: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग चार दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी, मुखिया जी!
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने तीन मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
6: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
6: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
6: अब क्या है?
7: नीचे वाली

0: मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
1: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं।
2: मुखिया जी, मुखिया जी,
1: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
2: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
1: चढ़ रहा है। अरे तो तीसरी मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
1: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यहीं रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
1: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान, इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे कहां जाऊं मैं? ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है, कोई है, अरे बचाओ, बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूं मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़े धरती पर धंसाए बैठा है। अगर अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा, मैं उसे पकड़ूंगा, किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच ही गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। हमारी ये सभा समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स, FM 100.3 मेगा हर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DD फ्री डिश और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। 5 बज रहे हैं, हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आनंद बख्शी की गीत रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं योगेश की गीत रचना, आर डी वर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म मंजिल का गाना है ये।

0: इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीडी फ्री डिश और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अब पेश है यूथ का फेवरेट प्रोग्राम युववाणी।

0: planet for future generation by making conscious decision about your transportation, energy use and consumption. Again, it is essential to note that sustainable practices are a continuous process that must be incorporated into our daily lives and decisions. We all have a role to play and we must take responsibility and make informed decision to protect the environment for future generations. As Mahatma Gandhi famously said, the earths provide enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. This timeless wisdom underscores the essence of sustainability. Living within the planet means and ensuring a thriving world for future generation. Thank you.
1: Video like karne ke paise milenge. So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर. हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर. नया भारत, नया आकाशवाणी.
5: आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से कामकाज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार, इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके TDS की महत्वपूर्ण भूमिका है.
6: 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए TDS e-file करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है.
7: अंतिम तिथि के बाद TDS फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा. पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना न भूलें. यदि TDS या TCS योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है. अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं.
5: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता.
8: So friends, before moving ahead in our program, we would ask you to listen to this beautiful track, and after that, Divya, we'll be back and be discussing some more important topics that we have in our program for our friends today.

0: यूथ अभी अपना फेवरेट प्रोग्राम युव वाणी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति

समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण

0: हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कार्यक्रम विवरण

पहले आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। रात 9:30 बजे चर्चा का विषय है पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे हरिश्चंद पांडे और साथियों के गाए लोकगीत और सियाराम मिश्र से नीति वचन सुनाया जाएगा।

हमारा खास कार्यक्रम बोलते नगमे 7:31 पर वाचन स्वर वंदना राठौर और नेहा गुप्ता। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8 बजे। सबरस कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 8:30 पर। 10 बजे होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर आपको सुनवाएंगे रेशमा श्रीवास्तव का सितार वादन। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुबह 6:05 पर। विचार बिंदु कार्यक्रम में कल सुबह 6:30 पर आपको सुनवाएंगे महादेवी वर्मा के विचार, काव्य का चरम लक्ष्य। कृषि जगत कार्यक्रम में सुबह 6:35 पर कृषक जन सुनेंगे डॉक्टर रामचंद्र से बातचीत, कृषि एवं वनोत्पाद। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 6:45 पर सुनिएगा डॉक्टर राधा मोहन मिश्र की वार्ता, दंत चिकित्सा की आधुनिक तकनीक। चरितमानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 बजे और इसके बाद 7:10 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मों से ली गई कुछ भक्ति रचनाएं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन सुनिएगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 7:30 और दिन में 12:15 पर। नमस्कार प्रयागराज का प्रसारण समय सुबह 8:45 और इसके बाद 9 बजे आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर आपको सुनवाएंगे सोमनाथ बरन के गाए भजन और गीत। सुगम संगीत के एक दूसरे कार्यक्रम में शाम 7:45 पर सुनिएगा अमित कुमार के गाए भजन और गीत। लोकमाधुरी कार्यक्रम में सुबह 10:05 पर आपको सुनवाएंगे आश्रया द्विवेदी और राम सूरत और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। दस बजकर 30 मिनट पर लोकगीत का एक और कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कलाकार होंगे लहरी लाल जी यादव और साथी तथा शशि बाला जैन। एक ही कलाकार कार्यक्रम के लिए लेकर आएंगे रोज की तरह 11 बजे और 11:30 पर आपको सुनवाएंगे पुनः प्रसारित कार्यक्रम बोलते नगमे। संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद होगा 12:30 पर। पनघट कार्यक्रम में 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी मोहिनी श्रीवास्तव के गाए लोकगीत और परिचर्चा का विषय होगा सामाजिक कुरीतियां टोना टोटका। प्रतिभागी माधुरी श्रीवास्तव, रेखा सिंह और सुशीला देवी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर बाद 2:30 पर। शाम 5 बजे आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। युवजन अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुन पाएंगे रोज की तरह शाम 5:15 से। कल के पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे लहरी लाल जी यादव और साथियों के गाए लोकगीत। इसके अलावा मेरी खेती मेरी बात में किसान चर्चा के प्रतिभागी किसान होंगे ज्ञान सिंह और हिंचलाल। 7:31 पर काव्य कौमुदी के प्रतिभागी कवि अभिषेक केसरवानी और प्रीता वाजपेयी। रात 8 बजे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सबरस कार्यक्रम 8:30 पर।

इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य द ओवल लंदन इंग्लैंड में खेली जाने वाली आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2026 का आंखों देखा हाल आपके लिए लेकर आएंगे कल रात 10:30 से।

पर गजलों पर आधारित प्रोग्राम कहकशां कल रात 9:30 पर नशर किया जाएगा। और रात 10 होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप ट्यून कर सकते हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा डीटीएच फ्री डिश पे भी आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं और साथ साथ न्यूज़ ऑन AIR पर भी हमारे कार्यक्रम आप एक्सेस कर सकते हैं। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से लीजिए अब सुनिए देश का आना।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 6:20 हो रहे हैं। संस्कृत समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: दिल्ल्यां वसंतकुंज क्षेत्रस्य नेल्सन मंडेला मार्गेण सह द्वारिकादूत मार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48,100 AE राष्ट्रीय राजमार्गस्य कृते षड्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय अद्य सर्वकारेण अनुमतिः प्रदत्ता। अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रीय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर सुदीर्घस्य कानपुर कवराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगम नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति। यत्र संरचनाः षड्मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पनाः सन्ति।
2: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
1: भारतीय ऋतु विभाग अवदत् यत् आगामि दिनेषु दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृत कालः अग्रे गमिष्यति। आगामि दिनद्वयोः उत्तर प्रदेशे बिहारे उत्तराखण्डे ओडिशा प्रदेशे विदर्भ क्षेत्रे च प्रचण्डतः अतिवृष्टेः ऋतु विभागेन नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रसारिता। फीफा विश्वकप क्रीडायां मेक्सिको देशः अद्य प्रातः मेक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। नॉर्वे देश अपि टेक्सास नगरे आइवरी कोस्ट देशं 2-1 पराजित्य 16वें चरणे प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब ग्रामीण जन अपना कार्यक्रम सुने, पंचायत घर।

0: पांचो राम राम।
1: हम कहे दुर्गा भैया।
0: हाँ भैया।
1: हम कहे भाई देखा किसानन के भाई देखा चेहरा तबे खिला था जब प्रकृति रंग बदला था।
0: भैया देखा
1: अब खरीफ का सीजन बा और हम कही देखा कल से दौड़ आजा कहूँ कहूँ दमार शुरू कर दे।
0: हाँ भाई गर्जन तो तनी के भाई जीव आए कि भाई देखा आपके भाई बारिश तनी के बरसे तो भाई रोपाई शुरू की जाए।
1: बिल्कुल भाई हम कही देखा हर साल की तरह से भाई देखा मानसून थोड़ा सा विलम्ब बा।
0: हाँ आपके थोड़ा सा देर
1: बात नहीं ना भाई हम कही देखा भाई अगर बारिश वे अच्छी जब हो लागत है ना तो हम कहे भाई धान पान सब भाई पानी केरा जो ना है ये सब पानी वाले जो खेत है ना भाई धाने फसल खास कही के तो भाई थोड़ा सा अगर विलम्बो रहे तो भाई चलत है जो ना है। और हम तो कहे भाई जो प्रगतिशील किसान है ओ भैया अपन व्यवस्था देखा भाई धान के रोपाई के पहले से गए के रखे यहाँ जो ना
0: बिल्कुल है जिनके पास भाई देखा संसाधन भा तो भाई वो अपन चुस्त दुरुस्त है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ठीक बा। लेकिन एक थोड़ा सा ये रहा थे कि भाई देखा देव राजा तनी कृपा कह दे तो वो ज्यादा अच्छा रहा।
1: ए दुर्गा भैया हम एक बात यह कहा वो हम कही देखा अलग अलग क्षेत्र में माटी माटी के बात बाटे तो भाई बहुत जगह हम देखा थे किसान भाइन की जो नर्सरी पड़ी रहे तैयार हुई ये बा।
0: हाँ,
1: और कुछ
0: करीब करीब
1: किसान
0: के
1: भाई
0: जने के तैयारी बात
1: जहाँ
0: है।
1: भाई पानी की व्यवस्था रही रोपायु भी करत हैं बोला हम कहे देखा था भैया आज आवत रहे ना पर गरे खेती बाड़ी तरफ देखा है तो भाई मेरे राजनेतन भैया देखत है अबो भाई भाई नर्सरी डालत हैं जो
0: हाँ नर्सरी डालता है। और देखा एक चीज बाकी उतना थोड़ा सा अगर चाहे तो भाई जल्दी पके वाली भाई
1: मतलब कहे मतलब
0: प्रजाति
1: भैया
0: लाई
1: ये
0: के।
1: है ना कि जौन प्रजाति है भाई कुछ जल्दी तैयार होती
0: हाँ
1: है कुछ भाई
0: उनका लाई के और
1: विलम्ब से।
0: रोपाई कैसे वो बेहन
1: बिल्कुल
0: डाल
1: बिल्कुल।
0: सका थी।
1: अब भाई जौन उर्द मूंग का जौन खेत है भैया वो तो भाई खाली ढंग से नहीं।

0: हाँ है, अब वो तो लड़ाई होकर खाली होते तो हमारा थोड़ा सा तनखा विलम्ब हो। बोला कुछ कहत रहे भैया आज कोनो दिवस बाटे भैया बताओ थोड़ा जौन है।
1: ए भैया आज आटे चिकित्सक दिवस।
0: अच्छा, भैया
1: तो भाई देखा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस देखा हर साल भाई आजे के दिन मनावा
0: अच्छा
1: जाता।
0: 1 जुलाई के जौन है।
1: ये दिन भैया डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के जयंती और पुण्य तिथि
0: तिथि
1: के उनके स्मृति में ये दिवस भाई मनावा जाता है। अब कहा जाता है भाई देखा देखा अगर सर केहू बीमार हो जाए घर में देखा सब परेशान हो जाते,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लेकिन मुला देखा डॉक्टर हो भाई चाहे गर्मी हो चाहे जितनी भी परिस्थिति हो कठिन परिस्थिति देखा सेवा कार्य करे के लिए भाई देखा तैयार रहा थे।
0: ए भैया
1: और एक ही
0: दुर्गा
1: सबसे बड़ा उदाहरण भैया देखा कोरोना काल,
0: कही गया भैया हम
1: जहाँ
0: कही गया।
1: भैया अपन जीव डरात रहा कि अब का हुई अब का हुई, वहाँ देखा डॉक्टर भैया अरे लगा रहे।
0: बिल्कुल भाई देखा चिकित्सक भैया कहते ना कि भाई धरती के भगवान है। हाँ भाई तोहरे भाई तबीयत कहे कोनो समय खराब हो था भाई लेके देखा अस्पताल दौड़त है। और चिकित्सक भैया हरे अगर उस समय सोते वहाँ तबो सुनत हैं तो देखा भाई मरीज के ठीक करे बिना दौड़ के आवत हैं जौन है। हाँ
1: बिल्कुल
0: तो भाई ऐसे जितना भी चिकित्सक भैया हरे हैं उनके सबके जौन है समाज के प्रति जौन अपने देश के प्रति जौन योगदान बा खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल देखा ए मोहन भैया कहा गया भैया देखा जहाँ सेवा धर्म हो वहीं भाई सच्चा चिकित्सक भाई देखा जन्म ले थे।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इनके जोन बस सेवा के भाई हम लोग ऋणी यही और कृतज्ञ ही। और सबसे बड़ी चीज़ भैया है कि आज के दिन उनका नमन यह भी ना करे तो उनके ज्ञान सेवा और समर्पण
0: अच्छा
1: कि
0: भैया
1: अनगिनत कितने लोगों के भाई देखा जीवन दान दे थे।
0: अच्छा भैया अच्छा हम कहीं देखा भाई चर्चा कर रहे हैं ना कि कोरोना काल के तो भाई एक समय ऐसा रहा कि जब हर आदमी डरा रहा तो चिकित्सक भैया अरे न सिर्फ भाई दवा करें बल्कि भाई अपने मधुर भाषा से अपने व्यवहार से अपने जो मरीज भैया हैं इनके उत्साह भी बढ़ाएं उनकर हिम्मत बढ़ाएं
1: बिल्कुल
0: कि
1: बिल्कुल
0: भाई कैसे ऐसे लड़ाई बाटे
1: बिल्कुल
0: कि भाई हर चीज़ के देखा दवाई से इलाज नहीं ना कहा थे ना भाई मन के हारे हार बा मन के
1: बिल्कुल
0: जीते जीत
1: बिल्कुल
0: बा।
1: बिल्कुल कही गए मोहन भैया कि भाई दवाइन तो नहीं देते न, बात साथे साथे भाई जौन साहस देते
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: जिये के जौन उम्मीद देते वो बहुत कारगर होते भाई।
0: बिल्कुल भाई अगर हमारे अंदर भाई अगर इच्छा न होए कोनो चीज़ अगर हम डर गए तो बहुत तक दवाई करवा तब वो हम ओका असर नहीं हो पाते उतना लेकिन अगर इच्छा शक्ति अगर भैया जग गए तो हम कहीं पे
1: जिए
0: दवा भी
1: अगर इच्छा
0: छोटी
1: शक्ति
0: सी
1: बा
0: दवाई बड़ा काम करा था
1: हाँ
0: भैया।
1: तो भाई देखा कि फिर दवा बहुत तेजी से भाई असर
0: बिल्कुल
1: करा था।
0: बिल्कुल एक बात यह कहा भैया हम तक कही भाई देखा अपने चिकित्सक भैया है रे आजकल तो भाई देखा अपने गांव गिराव में जाए जाए के भैया छोटी छोटी जगह पे भाई शिविर लगावत हैं कि भाई कैसो भी हो अपने मरीज भैया अरे सब ठीक हो जाए जो ना। हाँ
1: ठीक हो जाए गांव गिराव में बहुत बात साथे साथे एक सबसे बड़ी चीज़ बा कि उनका स्वास्थ्य के प्रति अपने जागरूक भी रख कराता है कि भाई हमका का खाए चाहिए कैसे हमारा रहन सहन हो चाहिए कि भाई बीमारी आवे उसे पहले ही बचा।
0: बिल्कुल बिल्कुल तो भाई देखा अपने आज के दिन जौन है अपने चिकित्सक भैया हरिण के सेवा समर्पण के प्रति जौन है
1: को बिल्कुल बिल्कुल उनका याद करें कि उनके
0: बिल्कुल।
1: समर्पण के याद करें के दिन ना भैया। और
0: एक बात यह होगा भाई हम कहीं देखा अपन देश में भाई समय समय पे अपने चाहे व्यापारी वर्ग हों चाहे भाई किसान भैया हरे हों उनके विकास के लिए एक नया कानून हमेशा लावा गया कि ताकि उनका जो उन्हें कार्य वो सुचारू रूप से चल सके। भाई अपने व्यापारी वर्ग के भाई देखा उनका तरह तरह के उत्पाद बाँटे तो भाई एक देश में कोने कोने में ले जाएगा किसान भाई के कोनो उत्पाद बाँटे तरह तरह के तो वह भी कौन देश के कोने कोने में बेचे बाँटे तो ऐसे में जगह जगह के जौन कर प्रणाली रही भैया उसे एक असुविधा ही होत रही कि भाई उनका तरह तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो भाई इस चीज़ के सरल करे के लिए देखा भारत सरकार जो ना है एक महत्वपूर्ण जौन कदम उठाया जो ना है GST कानून लिया है भैया।
1: मोहन भैया जी का वस्तु एवं सेवा कर कहा थी।
0: तो भाई हम कही जब ये कानून जो आए जो ना है तो भाई एकल कर जो व्यवस्था रही उसे जो व्यापार के जो सरलीकरण भैया वो बहुत आसान हो के हो जाऊँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: और सबसे बड़ी चीज है जो एक अवधारणा विकसित भाई भाई एक राष्ट्र और एक कर के।
1: बिल्कुल भैया, तो इस तरह से कहे मतलब ये बात है भैया कि अब कोनो भी चीज अगर लेता है सामान लेता है तो भाई एक बार राष्ट्र का लग गए तो भाई वो कहीं भी अपन सामान ले जाता है तो उसे अब कठिनाई जो आवत रही पहले वो अब दूर रही है।
0: व्यापार में भी सुविधा हो गए और कहा जाता है कि भाई जो अलग अलग कर रहा था वो एकीकृत हो गए बा, ठीक बा कि राज्य के अलग रहा केंद्र के रहा, तो बहुत सरलीकरण एक व्यवस्था हो गए और आसान भी हो गए कि अब व्यापारी भैया अरे ओका समझ भी सका थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर में भाई शामिल भी हो सका थी।
1: अच्छा एक बात यह कहा भैया कि एहमा एक यो भी प्राविधान बाटे कि जैसे क्योंकि भी अपन का जमा करी बाटे तो खुद अपन भाई ऐसी एक व्यवस्था हम दीन गई बाटे कानून में भाई डिजिटल माध्यम से भी कि बैठे बैठे अपन घर से कह सक थी जो
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, सबसे अच्छा आसान यह बा कि भाई जो डिजिटल करें उससे बहुत कुछ आसान हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब भाई कहूँ भी जाता है तो भाई एक बार जब कर लग गवा तो ओकर एक निर्धारित रूप से भाई प्रपत्र मिल गया बाटे तो कहूँ भी ओका दिखाए के जानकारी तुरंत हो जाता है।
0: बिल्कुल, और सबसे अच्छा चीज़ है कि व्यापार करब आसान हो।
1: तो हम कही भाई यह तरह के जो कानून है अपने देश के अपने विकास के खातिर अपने व्यापार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जौन है और धीरे धीरे हम कही तो भाई 10वां साल अटे जौन है
0: हाँ,
1: और
0: आज के
1: निरंतर
0: जौन
1: जौन है भाई एकर एक की वजह से अपने देश के जो व्यापार बा वो बराबर बढ़त बा और खास करके जो व्यापारी वर्ग बा भैया वो भी खुश बा ऐसे
0: वो खुश बात है। और जब भाई देखा आजकल केहू भी काम नया शुरू करत है तो पहले जितना भाई तनिक डरात रहन कि भाई कहाँ हमका कर देख पड़ी कहाँ नहीं,
1: बिल्कुल
0: अब बहुत सरलीकृत हो गया बात है और सब आसानी से भाई देखा समझ भी जाता है तो आसानी से वो व्यापार की ओर अपन व्यापार की ओर रुख करता है और व्यापार आगे बढ़ावाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम कहीं देखा आगे चर्चा चलत रही मुला देखा भाई आज तो अपने भरी पंचायत बाटे भैया। हाँ आज नीति वचन भी सुना जाए सियाराम मिश्रा के साथे साथे भाई धान के वैज्ञानिक खेती कैसे करें भैया राजे सिंह से भाई चंद्रजीत यादव के बात कही वो सुना जाए बोला उससे पहले हम कही अपने पंच भाइन के भाई गीत गौने से स्वागत किन जाए जो है। हाँ तो हरिशंत पांडे और संघातिन का गाय गौने और सुनवा दे भैया
0: सुनवा दे।
2: अरे घरवा तू

0: हाँ भैया, हम कहीं देखा कितनी बढ़िया गौनई रही जौन है। और अपन किसान भाई बिल्कुल एका सुनन। देखा भाई, बात होत रही कि अपन जौन भाई देश में व्यापारी के जौन भाई कानून लइयाओ का जौन है, तो उसे अपन व्यापार बहुत सरल भव जौन है। अभी कहा भाई, देखा आज दिन भाई देखा बुधवार के बाटे, और दिन भर से आदमी जब थका मदा आवत खरे जौन है, और भाई काम काज के बाद भाई देखा धर्म कर्म जब अपने होते है, तो ओकर निश्चय रूप से एक थकान पूरी मिट जात जौन है। और ऐ समय तो भाई जगह जगह पे देखा लोग धार्मिक यात्रा भी कराता है जौन है, तरह तरह के भाई कथा पुराण चलत बाटे। तो ऐसे में भाई देखा अब अपने पंच भाई के ठुनीत वचन भाई सुनवाई दिया जाए सियाराम मिश्र के जौन है।
1: सुनवाए थे।
2: समादरणीय समस्त पंच महानुभाव, महामनीषियों द्वारा समाज के मार्गदर्शन हेतु समय समय पर जो बातें बताई गई हैं उन्हें नीति वचन के नाम से जाना जाता है। आयुः कर्मंच वित्तंच विद्या निधनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये पांच जीव के गर्भ में स्थित रहने पर ही निर्धारित हो जाते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्यै कोऽपि न विद्यते जन्म जन्मानि मृत्येषु मरणम तस्य केवलम्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से जिन मनुष्यों के पास एक भी पुरुषार्थ न हो उनका जन्म लेना भी मृत्यु तुल्य है। लालयेत पंचवर्षाणि दस वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रावदाचरेत। 5 वर्ष की आयु

तक पुत्र का दुलार करना चाहिए। 10 वर्ष की आयु तक पुत्र को दंड आदि देकर विद्यार्जन और सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित करना चाहिए, परंतु 16 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्च सतैवरः, एकश्चन्द्रतमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्र से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, परंतु हजारों तारे अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना हालादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण शर्वरी। एक ही पुत्र हो, वह विद्वान हो, साधु चरित्र वाला हो, तो संपूर्ण कुल इस प्रकार से आनंदित होता है जैसे एक चंद्रमा रात्रि में शोभायमान होता है और अंधकार को दूर कर देता है। मूर्खश्चापि जरायुतोपि तस्माज्जात मृतो वरः, मृतम स चाल्प दुखाय यावज्जीवं जडो दहेत। ज्यादा दिन जीवित रहने वाले मूर्ख पुत्र से पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अच्छा होता है, क्योंकि मृत पुत्र थोड़े ही दिन दुख का कारण होता है, किंतु मूर्ख पुत्र जब तक जीवित रहता है वह कष्ट ही देता है। किम तया क्रियते धेनवा यच दोग्धि नगर्भणी कोर्थ पुत्रेण जातेन योन विद्वान न भक्तिवान। उस गाय से क्या लाभ जो ना तो दूध दे और ना ही गर्भ धारण करे। उसी प्रकार उस पुत्र से भी कोई लाभ नहीं है जो ना विद्यावान हो और ना आस्थावान हो। किं जातैर बहुभिः पुत्रैः शोक संताप कारकैः, बर मे कह कुलालंबी यद विश्राम्यते कुलम। शोक संताप पैदा करने वाले बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं, बल्कि शांति और विश्राम देने वाला एक ही पुत्र सर्वोत्तम है। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन बन्हिना दह्यन्ते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। एक सूखे वृक्ष से आग लग जाने पर संपूर्ण वन जल जाता है, उसी प्रकार एक कुपुत्र पूरे कुल को नाश करने में सक्षम होता है। एकेनापि सुवृक्षेण शोभनेन सुगंधिना वाशितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। यदि वन में एक भी सुगंधित वृक्ष हो तो संपूर्ण वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार कुल में अगर एक भी सुपुत्र हो तो वह कुल तर जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गस्थितः सह पितरोपि धन्यः एषां कुले वैष्णव नाम धेयम्। वह कुल जिसमें कोई वैष्णव जन्म ले लेता है वह पवित्र हो जाता है, उस माता की कोख कृतार्थ हो जाती है, वह पृथ्वी भाग्यवती हो जाती है, वह धन्य हो जाती है, तथा स्वर्गवासी पितृ भी अपना धन्य भाग मनाने लगते। त्यजेत्येकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे सर्वं त्यजेत। अगर एक व्यक्ति का त्याग कर देने से कुल की मर्यादा बच सकती है तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, और यदि एक परिवार का त्याग करने से एक गांव की रक्षा हो सकती है तो उस कुल का उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए, और यदि गांव का त्याग कर देने से पूरे जनपद का हित हो तो उस गांव का भी परित्याग कर देना चाहिए, और आत्महित के लिए जो भी बाधक हो उसका परित्याग कर देना आवश्यक होता है। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी विभवेश्च संतुष्टः तस्य स्वर्ग इह वही। आज्ञाकारी पुत्र, पति की इच्छा अनुसार चलने वाली स्त्री, और जो भी धन पास में हो उससे संतुष्टि हो, ऐसे व्यक्ति का स्वर्ग इसी पृथ्वी पर है। ये पुत्रा

0: ही गति सम भाई अस कुमित्र परी हरे ही भलाई। संमित्रों का लक्षण गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बताया कि कुपथ निवारी सुपंथ चलावा गुण प्रगटई अवगुण ही दुरावा देत लेत मन संक न धरई बल अनुमानी सदा हित करई विपति काल कर सतगुण नेहा अश्रुति कह सत्य मित्र गुण एहा। मित्र को कुमार्ग से हटाकर अच्छी राह पर लगाना, उसके अवगुण का ध्यान न देते हुए उसके गुणों का सम्मान करना, लेन देन में किसी भी प्रकार की दुविधा मन में न रखना और शक्ति भर मित्र का हित करना, यही सच्चे मित्र का लक्षण है। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाश्यते। कुमित्र पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, परंतु सुमित्र से भी बहुत रहस्यमय बातें बताना उचित नहीं है, क्योंकि यदि सुमित्र भी कभी कुपित हो जाए तो आपके रहस्य रहस्य नहीं रहेंगे, वह उसे प्रकाशित अवश्य कर देगा। दुर्जनस्य च सर्पस्य बरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंशति काले तो दुर्जयन्तो पदे पदे। दुर्जन और सर्प, इन दोनों में सर्प अच्छा है, क्योंकि सर्प मृत्यु आने पर ही डसता है, परंतु दुर्जन कदम कदम पर नष्ट करता रहता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भाष्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयत् शोकगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनी गजमुच्चहार। एक भौरा रात्रि के समय कमल में बंद हो जाता है और वह कमल के अंदर बैठ करके प्रतीक्षा करता है कि रात्रि व्यतीत होगी, सुबह होगी, सूर्य निकलेगा, सुंदर कमल खिलेंगे। वह इसी प्रकार के मनोरथ कर ही रहा है, उसी समय एक मदोन्मत्त हाथी आकर उस कमल को उखाड़ करके अपने पैरों से रौंद देता है।
1: हाँ दुर्गा भैया, हमके भाई देखा कितना बढ़िया नीति वचन रहा, निश्चय रूप से भाई सब किसान भाइन के अच्छा लगा हो जो ना है। हम कहा भाई देखा अभी चर्चा होत रही कि भाई इस समय खरीफ का सीजन बा भाई, प्रमुख फसल लेकर धान बाटे, तो धान के रोपाई के का वैज्ञानिक तरीका बाटे और किसान भाई का कैसे करें जो ना है, एक बिना आज विस्तार से देखा भाई, जानकारी दे के खातिर भाई डॉक्टर राजेश सिंह से भाई चंजीत यादव के बात कही बा, हमके अपने किसान भाई की सुनवा दिया जाए।
2: सुनवा दो
3: किसान भाई, आप सब खरीफ के मौसम में धान के रोपाई करते हैं, निश्चित तौर पे भाई आप सब बहुत दिनन से धान के खेती करत आवत बाटे, नर्सरी के डाले के तरीका या कितने दिन में धान के हमें रोपाई करे के बाटे, ये सब के आपके सामान्य जानकारी तो राहत है। लेकिन अगर कुछ नई तकनीक या और कुछ विशेष अगर जानकारी आप सबको हो जाए तो हम समझते हैं कि धान के फसल से आप सबके और अच्छा फ़ायदा हो सकत है। भाई देखा, यह सब सोच के आज हम स्टूडियो में डॉक्टर राजेश सिंह जो उनकी यही कुल के विशेषज्ञ हैं, भैया को बुलाए बाटी तो

0: भैया से जाना जाए कि भैया जौन धान के वैज्ञानिक खेती होत है ये कैसे किया जाए जौने से कम क्षेत्रफल में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सकत है एक विषय में बताइए भैया। तो भैया आपके कार्यक्रम में स्वागत है और जानना चाहब कि कैसे धान के वैज्ञानिक खेती किसान भाई करें हमरे।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये धान की खेती तो जो है हमारे मतलब पीढ़ियों से चलती जा रही है और रोपाई रोपाई किया हुआ धान तो हर किसान भाई लगाते ही हैं, लेकिन इसमें एक नया है जैसे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जिसको श्री विधि भी कहते हैं,
0: जी
1: ये मेडागास्कर से हुआ था, उसके बाद फिर इसको इसको इंडिया में फिर इसको स्टैंडर्डाइज किया गया और रिकमेंडेशन में भी आया ये।
0: जी
1: और इसमें धान की श्री विधि में ये जो परंपरागत धान की रुपाई होती है उससे क्या फायदे हैं मैं बताना चाहूँगा। जैसे
0: बिल्कुल
1: इसमें सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो किसान भाई जो रुपाई करते थे धान की उसके लिए नर्सरी में 25 से 30 किलो बीज लगती थी,
0: जी जी
1: लेकिन ये अब यहाँ पे बीज सिर्फ 6 किलो लगेगी प्रति हेक्टेयर की दर से और धान की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी 10 से 30% तक पाया गया है। और उसके बाद इसमें फसल पकने की अवधि भी कम है, लगभग 8 से 10 दिन पहले जो है पक जाती है फसल
0: जी
1: और 8 से 10 दिन के पौध को हम लोग रोपाई करते हैं। तो
0: अच्छा
1: इसमें आप देखते हैं जब जो है जो रोपित धान में जब 21 दिन की सीडलिंग्स की रोपाई की जाती है उस समय लगभग 4-5 दिन का एक ट्रांसप्लांटिंग शॉक कहते हैं जी, जी जड़ें निकाल के नए खेत में लगाई जाती हैं तो उसमें जो है थोड़ा सा मुरझाते हैं पौधे
0: जी
1: जिस वजह से 7 से 8 दिन डिले हो जाता है और इससे आपकी गेहूं की फसल डिले हो जाती है क्योंकि खेत की तैयारी के लिए कम समय मिलता है, गेहूं की फसल डिले हो जाती है। लेकिन इसमें जो है आपकी 7 से 10 दिन पौधे जल्दी मैच्योर्ड हो जाएंगे,
0: जी
1: हार्वेस्टिंग हो जाएगी
0: जी जी
1: और इस वजह से आपको इसमें अवधि भी कम लगेगी और जो है सीड भी बीज भी कम लगेगा, उत्पादकता भी ज़्यादा रहेगी। और इसमें एक और जो ज़रूरी चीज़ है इसमें लगभग 50% की सिंचाई में भी आप बचत कर सकते हैं पानी की,
0: अच्छा
1: जो
0: अच्छा
1: आज के समय में बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ पौधे रहते हैं और इसमें जो है कीटनाशकों का भी उपयोग कम करना पड़ता है, बस इसमें 50% जो भी हमारा उर्वरक डालते हैं वो हमें जैविक उर्वरक डालने होते हैं।
0: अच्छा ये सब बातन पे ये श्री तकनीक जोन बतावत बाटे आप ये तकनीक में ध्यान दे पड़े।
1: जी
0: राजेश भैया ये बताओ कि जैसे भूम के चयन बाटे जोन धान के यहाँ भाई विकसित खेती करेगी धान के तो ओकरे लिए का कुछ विशेष बात की ध्यान दे पड़े।
1: देखिए भूम के चयन में कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन भूम का चयन ऐसा करें जो जैसे ऊसरीली भूम में नहीं कर पाएंगे आप इसको,
0: अच्छा
1: अच्छी भूमि होनी चाहिए और उसका पीएच मान जो है 7 से 7.5 रहे जिससे मतलब कि न्यूट्रल सॉइल्स में, और जो थोड़ा सा भारी मिट्टी या मीडियम मतलब मीडियम भारी, हल्की मिट्टी में तो करते ही नहीं है धान,
0: जी जी जी
1: भारी मिट्टी या मीडियम मिट्टी हो उस पर आप अच्छे से इसका उत्पादन कर सकते हैं जैसे
0: भैया
1: धान
0: एक
1: का
0: चीज
1: करते हैं।
0: बताऊं जैसे आप बताएं बिया की मात्रा में कम लागे तो नर्सरी के तरह ही बिया सीधे पूरे खेत में धान के बिया के बोए के परे या नर्सरी डाल के ओका फिर मेन खेत में स्थानांतरित करे के परे।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसमें देखें श्री पद्धति में जैसे हम लोग धान की नर्सरी लगाते हैं वैसे ही इसमें लगाया जाता है, बस एक चीज़ ये ध्यान दिया जाता है कि नर्सरी के लिए आप थोड़ा सा जहां नर्सरी लगाते हैं वो थोड़ा सा 5 से 6 इंच उठा करके नर्सरी की जगह बनाते हैं, उसमें 4 फुट चौड़ाई होनी चाहिए
0: जी
1: ताकि हमारे किसान भाई दोनों तरफ बैठ करके उसमें जो कुछ अगर खरपतवार उगते हैं उसको निकाल सकें, और 5 से 6 इंच ऊँची होती है और इसमें जो है लगभग आप मान के चलें 100 वर्ग फुट
0: जी
1: की एरिया नर्सरी अगर है तो उसमें आप 1 हेक्टेयर की आप रोपाई कर सकते हैं और उठी हुई क्यारियां इसमें बनाई जाती हैं। और इसमें जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि नर्सरी की में 4 परत होती हैं, इसमें पहली परत में 1 इंच मोटी सड़ी गोबर की खाद ली जाती है,
0: जी
1: फिर दूसरी परत में 1.5 इंच मोटी खेत की भुरभुरी मिट्टी, तीसरी परत में 1 इंच मोटी सड़ी गोबर की खाद और फिर चौथी परत में फिर 2.5 इंच मोटी खेत की भुरभुरी मिट्टी, और
0: अच्छा
1: इन सभी ये परतों को अच्छे से मिला करके भुरभुरा कर लेना चाहिए। फिर 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इन तैयार क्यारियों में बीज को अच्छे से समतल करके एक बार बिखेर दिया जाए और फिर सड़ी गोबर की खाद से या पुआल से उसको ढक दिया जाए या मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं
0: जी जी
1: ताकि इसमें जो है आपका जो चिड़िया लगती हैं और जो आपके जो और नुकसान करने वाले जो कीट लगते हैं वो सब इसमें नहीं लगेंगे, और धूप से भी जो सूख जाती हैं क्योंकि ये अंकुरित दाने होते हैं धान के जो लगाए जाते हैं
0: जी
1: नर्सरी
0: जी
1: में तो
0: बहुत
1: वो
0: नाजुक
1: भी
0: होते भैया
1: जी जी जी तो वो भी सूखने ना पाए। और उसके बाद

0: क्यारियों में पर्याप्त नमी बनाए रखें और फव्वारा विधि से सिंचाई करना चाहिए। और सिंचाई क्यारियों के मध्य में बनाई गई नालियों से भी कर सकते हैं अगर फव्वारा से न कर पाएं तो।
1: जी जी जी
0: और मतलब इस तरह से करने पे फायदा क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं 6 से 8 दिन 8 से 10 दिन के पौधों को उखाड़ा जाता है लगाने के लिए, तो उसमें ये होता है क्योंकि ये जो है अगर आप गोबर यूज़ करेंगे और जो है भुरभुरी मिट्टी यूज़ करेंगे तो उखाड़ना आसान रहेगा, जड़ों को नुकसान कम होगा, इस वजह से ये ज़रूरी है।
1: डॉक्टर साहब, जौन पोषक तत्वों के प्रबंधन की बात किया जाता है धान के फसल के लिए, वहाँ पे का कुछ ध्यान देख पड़े?
0: देखें, इसमें सिद्धांतन जो श्री विधि का सिद्धांत है उसमें ये है कि 50% आपको जो है आपको जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना है।
1: जी
0: तो इसमें जो है आप 15 15 टन गोबर की खाद आप जो है या तो आप कंपोस्ट भी ले सकते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से, खेत की
1: जी
0: तैयारी के समय उसमें मिलाना है। उसमें जिंक सल्फेट भी आप मिला सकते हैं क्योंकि खेत की तैयारी के समय ही जिंक सल्फेट मिलाना है।
1: जी
0: उसके बाद लेव लगाते समय इसमें अगर मान लीजिए कुछ किसान भाई हमारे जो है वो हरी खाद भी लेते हैं जैसे ढैंचा लेते हैं।

0: इसमें जो है आप 15 15 टन गोबर की खाद आप जो है, या तो आप कंपोस्ट भी ले सकते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से, खेत की
1: जी
0: तैयारी के समय उसमें मिलाना है। उसमें जिंक सल्फेट भी आप मिला सकते हैं, क्योंकि खेत की तैयारी के समय ही जिंक सल्फेट मिलाना है।
1: जी
0: उसके बाद लेव लगाते समय इसमें इसमें अगर मान लीजिए कुछ किसान भाई हमारे जो है वो हरी खाद भी लेते हैं, जैसे ढैंचा लेते हैं,
1: जी
0: तो 45 दिन पे जब ढैंचा में जो है फ्लावरिंग पुष्प अवस्था होती है, उस समय उसको काट के उसको मिला दिया जाता है, और लगभग 10 दिन उसको लगता है सड़ने में।
1: जी
0: तो जब आप उसको काट के खेत में मिला दें पानी लगा के, उसी समय आपको जो है अपनी नर्सरी तैयार करके बीज लगा देना चाहिए, क्योंकि 8 से 10 दिन में जब तक वो सड़ेगा तब तक हमारे जो है पौधे रोपित करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
1: जी
0: और जैविक खाद के अलावा इसमें नाइट्रोजन 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से इस्तेमाल करें। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फॉस्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा लेव लगाते समय डाल दें,
1: जी
0: और नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा जो बचेगी वो पहली निराई के समय, लगभग 10 दिन बाद पहली निराई करते हैं ट्रांसप्लांटिंग के बाद,
1: जी
0: और बची हुई जो मात्रा है वो दूसरी निराई के समय लगभग 20 दिन बाद रोपाई के वो जो है खेत में डाल देना चाहिए।
1: तो एक तरह से पोषक तत्वों के प्रबंधन करब जरूरी होते हैं।
0: जी
1: अब डॉक्टर साहब ये बताओ कि खेत के जौन तैयारी करें किसान भाई वो पे
0: हाँ,
1: का कुछ विशेष ध्यान दे हुए।
0: देखें इसमें बस ध्यान ये देना है, देखिए खेत की तैयारी तो हमारे किसान भाई करते ही आए हैं इतना दिन से, लेकिन ये है इसमें ध्यान ये देना, क्योंकि हमारे जो रोपित पौधे हैं वो बहुत कम उम्र के हैं,
1: जी
0: तो उसमें ये ध्यान देना है कि कतई ऐसा ना होने पाए कि खेत में पानी भरा रहे। अगर पानी भरा रहेगा तो आप उसको रोप नहीं पाएंगे, वो जो पौधे हैं वो बह जाएंगे रोपाई करते समय।
1: नाजुक हुई ही
0: तो
1: छोटा हुई ही
0: जी
1: तो इनाते पानी के मात्रा तो बहुत कम हो जाए।
0: बस बस उसको जो है एक पतली सी फिल्म जैसे हो तभी वो रोपाई हो पाएगी। तो
1: अच्छा
0: जी ये ध्यान देना है।
1: रोपाई में और का कुछ विशेष ध्यान देखिए।
0: रोपाई इसमें मेन है, प्रमुख इसमें रोपाई ही है, क्योंकि हम जो है यहाँ पौध से पौध की दूरी और जो है कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर इसमें मेंटेन करते हैं, इसमें स्क्वायर प्लांटिंग करते हैं।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: इसमें ध्यान ये देना है कि आप जो है लगभग जो एक पौध एक जगह पे आप सिर्फ एक पौध लगाएं, और लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में उन पौधों को अपने अंगूठे एवं अनामिका उंगली के सहायता से लगाएं,
1: जी
0: और कतार से कतार एवं पौध से पौध की दूरी मेंटेन करने के लिए आप चाहें तो 2 रस्सियों की मदद ले सकते हैं, स्टैक वायर कहते हैं,
1: जी
0: 2 रस्सियों की मदद से ले सकते हैं। इसमें जो है क्रॉस की दिशा में जैसे क्रॉस बनाती हूँ ये रस्सियाँ, और जहाँ पे क्रॉस बनाएं जो कि 25 बाय 25 सेंटीमीटर पे होगा, वहाँ पे आप जो है एक पौधे को लगाएं। तो इसमें मेन रोपाई ही है, क्योंकि यहाँ पे जैसे नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग में रोपाई में 3 पौधे लगाते थे, यहाँ पे सिर्फ एक पौधा लगाना है,
1: और दूरी
0: और
1: भी है पौधा से पौधा के 25 सेंटीमीटर।
0: 25 सेंटीमीटर कतार से कतार की भी दूरी और पौध से पौध की भी दूरी, ये जरूरी है मेंटेन करना।
1: अच्छा तो इन बातन पे ध्यान दे के तब रोपाई के काम किसान भाई करें।
0: जी
1: अब डॉक्टर साहब बात आवत है कि भाई रोपाई के लिए किसान भाई खरपतवार के नियंत्रण करब बहुत जरूरी होते है तो एक लिए का कुछ करे पड़े।
0: देखें इसमें क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने 25 बाय 25 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे जो दूरी पे आपके पौध को लगाया है, तो इसमें पर्याप्त दूरी है पौध से पौध के बीच में। इसमें आप जो है एक कोनोवीडर आता है, कोनोवीडर की सहायता से आप इसमें जो है निराई गुड़ाई कर लें,
1: जी
0: और इसमें आपको ध्यान देना है कोई खरपतवार नाशी यूज़ नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है।
1: अच्छा।
0: इसमें जो है आप 10 दिन बाद रोपाई के 10 दिन बाद पहली बार कोनोवीडर चला लें, और इसके बाद 10 10 दिन के इंटरवल पे 3 से 4 बार आपको कोनोवीडर लगाना है चलाना है। उसमें ध्यान ये दें कोनोवीडर सुचारू संचालन हेतु खेत में नमी होना चाहिए, और ये क्या करता है कोनोवीडर जब बीच में पौधों के चलेगा तो वो जो है गुड़ाई भी करेगा और जो खरपतवार हैं उनको मिट्टी में दबा देता है, जिससे वो सड़ के उर्वरा शक्ति बढ़ाती हैं मिट्टी की,
1: जी
0: और साथ ही साथ हमारे जड़ों का जो है ऑक्सीजन मिलता है हमारे जड़ों को, जिस वजह से उनकी बढ़वार अच्छी होती है, और यही कारण है कि हमारे पौधे इतने हष्ट पुष्ट होते हैं कि उनमें बीमारियां भी कम लगती हैं और प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है उनका, जो है ज़्यादा वो ताकत होती है पौधों में,
1: जी
0: और आप देखेंगे कि कल्ले 2 से 2.5 गुना तक ज़्यादा कल्ले निकलते हैं अगर आप उसको नॉर्मल रोपित पौधों से आप कंपेयर करें। इसीलिए इसका उत्पादकता 30% से 40% तक ज़्यादा होती है।
1: डॉक्टर साहब एक चीज़ बताऊँ जैसे कोनोवीडर जो उन बात करता है भाई देखा ही तो आधुनिक कृषि यंत्र बाटे किसान भाई अब हमें समझते हैं कि ज़्यादातर किसान भाई पहली बार नाम सुनो तो ये कर तो ये भैया एकर इस्तेमाल किसान कैसे करी वो भाई, एक तो उनके लिए एकदम नया बाटे, तो ये कृषि यंत्र का बाजार में उपलब्ध होए ना।

0: बिल्कुल उपलब्ध है, और ये बहुत अच्छा, आप समझ लें कि इसमें जो आदमी खुरपी से करता है उससे बहुत आसान है, क्योंकि आपको खड़े होके इसको दोनों पौधों के बीच में, दोनों कतारों के बीच में चलाना है। बहुत कम समय में हमारे किसान भाई अकेले कर सकते हैं, इसके लिए कोई मजदूर को लगाने की ज़रूरत नहीं है।
1: जी
0: और ये इतना बेनिफिशियल है, इतना अच्छा है कि आप जो है बहुत कम टाइम में अपना पूरा खेत कर लेंगे, और जो है इससे आपके पौधों को ऑक्सीजन मिलेगा, जड़ों को, जड़ें जो है विकास अच्छा होगा, कल्ले अच्छे फूटेंगे और आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा इससे।
1: जी
0: तो
1: डॉक्टर साहब, ई भाई तो बातन पे ध्यान दही किसान भाई। अब कुछ जल प्रबंधन के विषय में बताऊँ कि का कुछ जल प्रबंधन पे ध्यान दही पड़े।
0: देखें, इसमें तो सबसे पहली बात है, हमारे कहीं खेत में कहीं गड्ढा ना हो, पहले ही बुआई के पहले आपको जो है उसको अच्छे से समतल कर लेना चाहिए, तथा क्यारियों के मध्य में सिंचाई एवं जल निकास के लिए आवश्यकता अनुसार नालियों का निर्माण करें।
1: जी
0: अब इसमें एक चीज़ जो हमारे रोपित धान से अलग है, इसमें श्री विधि में जो है कहीं भी, जैसे जब आपका जो है प्रारंभिक या वनस्पतिक वृद्धि जो होती है उस समय आपको जो है खेत में पानी नहीं भरा होना चाहिए,
1: जी
0: उसमें जो है नमी होनी चाहिए खेत में, और पानी नहीं भरा होता है इसी वजह से उनका विकास ज़्यादा अच्छा होता है, जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है जिससे विकास भरपूर होता है और हमारे हष्ट पुष्ट होते हैं वो पौधे, और उनमें कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि श्री विधि में रोपाई के समय पर्याप्त नमी अगर है, और मतलब आपको पहले बताया था उसमें नमी ज़्यादा नहीं, मतलब उसमें पानी नहीं होना चाहिए खेत में जब आपने
1: जी
0: रोपाई किया,
1: जी
0: रोपाई के बाद में खेत में हल्की सी सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई शाम को करें, दिन में ना करें, क्योंकि कई बार होता है धूप बहुत तेज हो जाती है, अगर मान लीजिए कि बारिश नहीं होती कुछ दिन तक, धूप बहुत तेज होती है तो वो पौधों को हमारे जला देती है,
1: भाई
0: तो
1: पानी गर्म हो जाए तो पौधा का
0: जी
1: नुकसान करे।
0: जी तो उसको शाम को सिंचाई करें। और आप ये देखें कि प्रारंभिक और वनस्पतिक वृद्धि के समय अवस्था में खेत में पानी भरकर रखना आवश्यक नहीं है, बस मृदा में नमी बनी रहे रहनी पर्याप्त है। अगर मिट्टी में आपको हल्की दरारें दिखें तभी खेत में आप जो है सिंचाई करें, और धान के पुष्प गुच्छ प्रारंभ होने की अवस्था में
1: जी
0: जब आपका जो है उसमें आप
1: फूल
0: देखेंगे
1: आवे
0: कि
1: लगे
0: फूल
1: जब।
0: आने लगे, तो उस समय से लेके फसल के परिपक्वता तक
1: जी
0: आपको लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर पानी इस विधि में भी मेंटेन करके रखना है।
1: अच्छा
0: लेकिन जब लगभग 70% दाने हमारे कड़े हो जाएं धान का, आप
1: हाँ
0: देख लें
1: जी
0: उस समय खेत से पानी निकाल दें, उससे ये होगा कि आपकी जो वो होगी मैच्योरिटी होगी, जो
1: हाँ
0: हमारा जो पौधे
1: धान के
0: जो
1: पके
0: धान,
1: वाली जो
0: हाँ,
1: अवस्थिति है।
0: पकना बराबर से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं कुछ देर में पक रहा है कुछ जल्दी पक गया, तो उसमें कई धान में ऐसा होता है झड़ने लग जाते हैं दाने, वो भी नहीं
1: जी
0: होगा
1: जी
0: इसमें।
1: डॉक्टर साहब, जैसे भाई कुछ किसान भाई तो नर्सरी डाल चुका बाटेन और रोपाई करत बाटेन, या कुछ किसान भाई जो देर में भाई सोचेन वो अब नर्सरी डालता हुआ बाटेन, तो भाई ये तकनीक में नर्सरी में बहुत समय तो लागत ना है भाई, 10 दिन के समय
0: बिल्कुल
1: बतावत बाटे आप,
0: बिल्कुल
1: तो अब भी लोग कई के का ए भी से भाई धान के रोपाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा उन्नतशील प्रजातियों के विषय में हम जाने चाहब कि कौन कौन उन्नतशील प्रजाति बाटे जोने के अगर रोपाई करें किसान भाई तो अच्छा फायदा होए।
0: देखें, अब की बार इसलिए ये प्रजातियों की बात है जो किसान भाई अभी हमें नहीं लगा पाए होंगे, क्योंकि अब की बार बरसात देर से हुई है
1: जी
0: और लगभग सीज़न भी लेट चल रहा है, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, अभी भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपका 8 से 10 दिन में आप जो है इसको रोपाई कर सकते हैं, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है इसमें। देखें, सिंचित दशा में अगर शीघ्र पकने वाली प्रजातियां जो 105 से 110 दिन लेती हैं और जिनकी उत्पादकता लगभग 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है,
1: जी
0: उसमें प्रमुख प्रजातियां हैं साकेत 4, पंत धान 12, मालवीय 35
1: जी
0: और शुष्क सम्राट इत्यादि, ये सब जो है प्रजातियां हैं जो सिंचित दशा में शीघ्र पकने वाली हैं। अब जो
1: अच्छा
0: है सिंचित दशा में मध्यम अवधि में पकने वाली प्रजातियां भी हैं, इनकी उपज ज़्यादा होती है, 55 से 60 कुंतल होती है, लेकिन अवधि भी ज़्यादा लगती है, 125 से 130 दिन लगता है।
1: जी
0: इसमें सरजू 52 है जो बहुत मतलब किसान भाई लेते भी हैं, पंत धान 4 है, नरेंद्र धान 359 है, और कस्तूरी है जो एक सुगंधित वो है, और
1: जी
0: फिर मालवीय धान 36 है,
1: जी
0: तो ये प्रजातियां हैं। उसके अलावा कुछ हमारे किसान भाई सुगंधित धान भी लेते हैं, तो इसमें मालवीय बासमती 1 है, नरेंद्र लालमती है, और वल्लभ बासमती 22 है,
1: जी
0: और मालवीय सुगंध 105 है, जो 105 से 110 दिन में की अवधि लेती हैं, और इनकी थोड़ा सा उपज कम होती है, हालांकि सुगंधित धान है तो इसमें पैसा ज़्यादा अच्छा हमारे किसान भाइयों को मिलता है,
1: जी
0: ये 30 से 35 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी उपज है।
1: अच्छा।

0: डॉक्टर साहब भाई जोन आप तकनीक से बताएं कि धान के लोग खेती कर ही अगर किसान भाई हमारे तो निश्चित तौर पे भाई उनका लागत खर्च भी कम आए और निश्चित तौर पे अगर देख रेख समय पे करत रहें तो उत्पादन भी अच्छा मिले। तो आप आएँ और इतना बढ़िया जानकारी दें कि धान के वैज्ञानिक खेती किसान भाई हमारे कैसे करें, ये सब जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ दुर्गा भैया, हम कही भाई देखता डॉक्टर राजन कितनी बढ़िया बात बताएं जो ना है। निश्चय रूप से अगर किसान भाई हैं विधि से अपन धान के रोपाई करी तो उनका जो धान के फसल बा वो बढ़िया रहे और
0: बढ़िया रहे।
1: फायदेमंद रहे जो ना है। हमके अपने किसान भाई से एक अनुरोध ये बाटे कि अगर अपने कार्यक्रम में जो पंचायत का कार्यक्रम बा का और जानकारी चाहता है कि तरह से उनका एक कार्यक्रम लागत है वो अपन सुझाव भैया एक फोन मोबाइल नंबर बाँटे वहाँ पर दे सकत हैं। मोबाइल नंबर बा भैया 8004926250 भैया। तो यह नंबर पे भैया व्हाट्सएप के जरिए दे सकत हैं, साथे साथे आकाशवाणी के जो फेसबुक पेज बा भैया वहाँ पे अपन सुझाव दे सकत हैं। और मौसम के भाई देख करके अपने स्वास्थ्य के भाई ख्याल रखें, खेती बाड़ी काम करें। अब समय बा अपने पंच भाई से विदा लेके, तो पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

ग्रामीण जन अभी अपना पंचायत घर कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनते हैं देश गान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रादेशिक समाचार की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपये है।
1: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। BOT टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहाँ के विकास को और गति देगा।
2: दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।

0: मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं, जिससे भावी पीढ़ी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।
1: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए SIT ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने SIT को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को SIT के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BVGRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सृजनशील योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनमोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, DBT, UPI, डिजीलॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: टीईटी परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी

0: आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश भर में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोलते नगमे। दोस्तों श्रोताओं नमस्कार, वंदना जी नमस्कार,
1: नमस्कार नेहा जी, नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को हमारा
0: और साथ में नगमे भी आप सभी को नमस्कार कर रहे हैं दोस्तों। और वंदना जी मैंने और कहा ना,
1: हाँ,
0: और मैं आपको कुछ शब्द देती हूँ और करीब करीब वर्ष बता देती हूँ, मैं देखती हूँ है ना। सुधीर श्रोताओं देखिए कुछ शब्द हैं इस गाने में, जैसे कि बेरुखी और इंतज़ार, जानिसार।
1: क्या बात है, जानिसार, जो चीज़ पहले आपको कहनी चाहिए थी नेहा जी वो शब्द आपने बाद में दिया। तीसरा जो शब्द आया है जानिसार, यही गीत का मुखड़ा है। और करीब करीब मैं गीत क्या फिल्म तक पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि ये फिल्म मैंने देखी थी
0: जी।
1: बड़ी ही मर्मस्पर्शी फिल्म थी ये
2: जी, केदारनाथ,
1: और जो उत्तराखंड में 2013 में जो एक त्रासदी हुई थी भूस्खलन के द्वारा, उसकी पृष्ठभूमि पर जो एक प्रेम पनपा, अभिषेक कपूर ने इसकी कहानी लिखी और निर्देशन भी उन्हीं का रहा है। और पहले हम गाना सुन लें जिस गीत की हम बात कर रहे हैं, जिसे मैंने आपके क्लू देते ही पहचान लिया है लेकिन पिछली बार कहीं कुछ मिस हो गया था मुझसे क्योंकि आपने सही तरीका नहीं अपनाया था
0: तरीका नहीं, ये कहिए कि आप फेल हो गई थी
1: चलिए अगर आपको इसमें खुशी मिलती है फेल होने में मेरे तो मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं सच में हार गई थी उस दिन, तो लेकिन आज तो जीत गई हूँ ना,
0: हिसाब बराबर हुआ,
1: हिसाब बराबर हुआ। तो क्या ये गीत यही है जिसका मैं अब मुखड़ा प्ले करने जा रही हूँ, सुनिए बताइए।

0: अमिताभ भट्टाचार्य ने जो शब्द उन्होंने चुने हैं इस गीत के लिए कमाल हैं। कैसे प्यार को उन्होंने बयां किया है कि दीवानापन भी ठीक है, प्रेम भी ठीक है, लेकिन ये जो नाराज़गी है उसमें बहुत बड़ी ताकत है। बात ना हो तो भी चलेगा, बात करें तो भी चलेगा, लेकिन ये जो नाराज़ होने का भाव है इन सब भावों से ऊपर हो गया है। और इस फिल्म में जब हम सारा अली खान को, सुशांत सिंह राजपूत को, जो कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जब उनकी एक्टिंग देखते हैं तो लगता है कि बहुत सुंदर परिपक्व एक्टिंग की है दोनों ने, है
1: ना? सच करिए नेहा जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये फिल्म पर्दे पर आई और इसमें जब डेब्यू किया है सारा अली खान ने, तो किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि इतनी मैच्योर एक्टिंग एक नवोदित कलाकार कर सकती है, क्योंकि वो पूरी तरह से पर्दे में इतने सशक्त रूप में उभर कर आती हैं। और साथ ही साथ ये याद, एक ताज़ा हवा का जो झोंका होता है उसकी तरह से तो आई है, लेकिन याद ये दिला गई अपनी माँ की, अमृता सिंह की।
0: अरिजीत सिंह ने जैसे गाया है ऐसा लगता है जैसे उनकी आवाज मदहोश करने वाली, मैं कहूँ एक खास तरह का जादू है। जब आप उनकी आवाज़ सुनते जाते हैं और जब तक ये गाना अपने पड़ाव तक नहीं पहुँच जाता, आप उनके जादू में कैद हो जाते हैं।

0: अमिताभ भट्टाचार्य जब ये लिखते हैं कि दुनिया के सारे रिश्ते मैंने ठुकरा दिए तुम्हारे लिए, न जाने कितने रिश्ते होते हैं एक इंसान के, पड़ोस का धर्म होता है, कार्यस्थल का होता है, घर का है, बहुत सारे, उसकी दुनिया बहुत बड़ी होती है और उस पूरी बड़ी दुनिया में एक इंसान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो नाराज़ हो जाए तो सोचिए वो पूरी डवाडोल सी दुनिया लगती है, तो ये बड़ी बात है।
1: सच बात है, और नाराज़गी तो ये रंग दिखाती ही है अपना, और नाराज़गी ही वहाँ जाहिर की जाती है नेहा जी, जहाँ पर बहुत प्यार होता है,
0: अपनापन होता है
1: और अपार श्रद्धा भी होती है प्रेम के प्रति, क्योंकि हम बहुत कुछ मांग रहे होते हैं, मांगना कोई उस भौतिक रूप में नहीं होता है, वो एक समय की मांग होती है, और एक कहते हैं ना कि जो एक कमिटमेंट किया जाता है एक दूसरे के प्रति, उस कमिटमेंट को अगर कोई पूरा नहीं करता है तब भी कहीं ना कहीं एक उजागर नाराज़गी उसकी झलक दिखाई पड़ती है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि नाराज़ होने पर दोनों ही नाखुश हैं।
2: और इसी गीत का एक फीमेल वर्जन भी है जिसे गाया है असीस

0: पता है दोस्तों, जब ये रूठने मनाने नाराज़गी के दौर से हम एक कदम आगे जाते हैं, बढ़ते हैं, तो एक वो भी समय आता है जब हम किसी की कमी बेसी जो भी उसके बावजूद हम उसे अपने होठों पर सजाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो कलाकारी है सामने वाले में तो है ही, लेकिन जो सजाना चाह रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कलाकार और साहसी व्यक्ति, और मैं कहूँ कि ईश्वर ने उसे बहुत सुंदर भावों से नवाजा है, है ना?
1: सच कह रही है नेहा जी, उनकी आवाज़ जब जब सुनाई पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जो हम बार बार कैद होने की बात कर रहे हैं, जादू की बात कर रहे हैं, तो ये जादू और ये कैद हो जाना तिलिस्म में, वो आवाज़ का ही एक तरह से कमाल होता है। और ये आवाज़ है गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी की।
0: आपको याद आया किसने लिखा?
1: बिल्कुल, कतील शिफाई जी की ये गज़ल है। मानवतावादी एक शायर माने जाते हैं, और जो प्रेम की भावना होती है, रुमानियत से भरपूर उनके लफ्ज होते हैं जो सीधे हमारे दिल तक पहुंचते हैं।
0: जानती हैं क्यों ऐसा होता है? आप ये जो कह रही हैं कि ये मानवतावादी शायर रहे, एक बात और आपने कही रूहानी
1: जी,
0: है ना, कि इन्होंने प्रेम को बहुत बड़े रूप में देखा। जब हम लोग नाराज़गी और रूठने से भी एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो शायद यही प्यार का जो मीठापन है, उसका जो रूप है, वो दिखाई पड़ता है। और जब वो कहते हैं कि तुम्हें होठों पर सजाना चाहता हूँ, मतलब आप जो भी बोलेंगे, शायद उस शब्द में, उन बोलों में वो रूप आएगा, वो आवाज़ आएगी जिसको हम अंदर सहेजे हुए हैं ना।
1: तो चलिए, जो अंदर कतील शिफाई ने लफ्ज़ों के ज़रिए सहेजा और आवाज़ के ज़रिए जिसे फिज़ाओं में अनगुंजित किया जगजीत सिंह जी ने, तो उसको हम अपने श्रोताओं तक भी पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं। तो इसका हम मुखड़ा सुनते चलिए, गज़ल का।

0: जब कहते हैं कि पूरी बस्ती में अंधेरा है लेकिन मैं रोशनी जलाना चाहता हूँ, हो सकता है कि पूरे जहाँ में किसी को इश्क से अभी उसकी मुलाकात ना हो लेकिन मैं करना चाहता हूँ वो हिम्मत क्योंकि कहते थे कि शायद जो इश्क की रोशनी होती है वो फैलती सी जाती है और इस कदर फैलती है कि सबको वो, आपने पटाखा वो वाला देखा है ना कभी बचपन में छुड़ाया हो
1: जी,
0: उसको
1: जी.
0: क्या बोलते थे हम लोग, एक में आग लगाई तो कई उसके धागे से कई पटाखे छूटते चले जाते
1: हाँ,
0: थे,
1: मिर्ची पटाखा जो होता है चटाई बम कहते हैं
0: वैसे शायद प्रेम और करुणा भी है ना
1: जी.
0: कि आपने एक बार उसकी लौ रोशन की तो शायद वो लौ की लड़ियां बनती चली जाती हैं।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरती के साथ में आपने इस बात को रखा है नेहा जी, और उतनी खूबसूरती के साथ गज़ल हमारे सामने नज़र आ रही है जिसे हम सुन रहे हैं, और आगे की जो बातें हैं वो गुफ्तगू क्या होगी, कितनी दिलकश है और किस तरह से कोई आंसू मोती बन जाता है उसकी बात होगी, वो अब हम सुनते हैं आगे।

0: ये भी खूब है कि एक आंसू अपने ही तुम्हारे दामन में टांग दूंगा और टांगने के बाद वो आंसू मोती बना दूंगा। ये बड़ी बात है ना, दोनों ही चीज़ें बहुत कीमती हैं, आंसू भी और मोती भी। आंसू शायद टिक जाए इसलिए मोती बना देंगे।
1: नहीं, बात ये होती कि खासियत तो उस दामन की है जिस दामन पर आंसू बहाया जा रहा है, जहाँ पर उस आंसू की कद्र और कीमत कितनी बढ़ जाएगी जो मोतियों से तोली जाएगी। तो ये तो वही होता है जहाँ पर प्यार बहुत गहरा रंग दिखाता है। और जब इस तरह की बातें आती हैं और शायर जब इस तरह की बात कहीं लिखता है तो इतना मानी खेज होता है वो कि जिसे समझना पल भर में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंतर्निहित जो और सारे जो अर्थ होते हैं वो भी हमें खोजने होते हैं, जिसके लिए हमें ठहराव की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा ठहरना पड़ता है, इत्मीनान सुकून की दरकार होती है कि हम बैठें और इन गज़लों को सुनें और ये सोचें कि एक एक लफ्ज़ जो शायर ने कलमबद्ध किया है वो कितना असर रखता है, कितना ज़बरदस्त हमारे अंदर भीतर हलचल पैदा करता है, विचारों की क्रांति पैदा होती है एक तरह से, चाहे वो प्यार की बात करी जाए या समाज के बदलाव की क्यों ना बात हो।

0: अभी जब ये गज़ल चल ही रही थी, उसका अगला जो पड़ाव है, उसकी पंक्तियाँ हैं, जब हम लोग सुन रहे थे, तो उसमें एक बात कतल शफाई जी ने जब कही कि आखिरी हिचकी तेरे जानों पर आए, मतलब ये जो अदब है ना तुम्हारी, अगर सांस का एक टुकड़ा भी बचा है तो वो शायद तुम्हारी अदब में ही होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये बात कहें कि कितनी जो छवि है आपकी वो गहरे तौर पर बैठी हुई है।
1: नेहा जी, इसे बढ़कर किसी प्रेम के लिए क्या बात होगी कि वो प्रेम की गोद में, जानू मतलब गोद होता है, वो उसमें आखिरी सांस अपनी खर्च करना चाह रहे हैं। इच्छा इस तरह की रखना, ख्वाहिश रखना कितनी बड़ी बात है, और अपने प्यार के प्रति कितनी वफादारी है और समर्पण यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और जब हम इसको सुन रहे हैं तो मन बहुत कुछ कहने के लिए प्रेरित हो रहा है, और जो कुछ कहना चाहते हैं वो शायद शब्दों में हम बांध नहीं पाएंगे। बहुत कुछ छूट भी रहा है पीछे, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।

0: गुलाम अली जी की आवाज़ जब वो गाते रही हैं स्टेज पर भी स्टूडियो में भी, तो वो कहते हैं ना उनका चुटीला अंदाज़ भी होता था। मतलब गाते रहे हैं और बीच में कहते थे अब ज़रा देखिए, इस पर गौर फरमाइए, तो ऐसा लगता था कि उनके साथ ही बहे चले जा रहे हैं। कई बार मखमली सी गुदगुदी लगती है और पता नहीं उस मखमली सी गुदगुदी के साथ गहराई में कब उन्होंने उतार दिया वो पता ही नहीं चला।
1: बिल्कुल सच करी है नेहा जी, और उनका अंदाज़े बयां तो बड़ा ही पुरलुत्फ होता है, क्योंकि वो बताते हैं जो दर्शक सामने बैठे होते हैं या श्रोता होते हैं कि किस तरह से, किस अंदाज़ में गज़ल को सुना जाना चाहिए, इसके जो शब्द हैं वो शब्द क्या कह रहे हैं, उसका तरीका कैसा होना चाहिए सुनने का, वो श्रोताओं को उस रूप तक ले जाते हैं, वहाँ तक लेकर जाते हैं और फिर वो बातों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि जब वो कह रहे हैं कि तेज़ हवा ने हमसे पूछा, तो वो तेज़ हवा जो कि तेज़ है उसकी तेज। अनगूंज कैसी होगी, उसकी लयकारी कैसी होगी, उसमें स्वर किस तरह से आरोह अवरोह के साथ आगे बढ़ेगा या घटेगा, वो सब कुछ वो गायन के ज़रिए हम तक पहुंचाते हैं। तो देखिए चलिए हम आगे क्या ही बात करें, उन्हीं के मुख से सुनते हैं।
2: लफ्ज़ हैं तेज़ हवा ने मुझसे पूछा, तो हवा का फैक्ट तेज़ का, सिर्फ हवा का नहीं तेज़ हवा का।

0: मोहसिन नकवी साहब, जब कहते हैं कि आखिर तुम इतने अच्छे क्यों लगते हो, कई बार उन अदाओं में गुम सा हो जाता हूँ, खो जाता हूँ, पता ही नहीं चलता कि आखिर अच्छे क्यों लगते हो। दिन भर सोच के बाद सोचता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, हवाएं बिगाड़ती हैं, दिन ढल जाता है, रात आती है, चांद निकल आता है इसी तलाश में, लेकिन फिर से रात ढलती है और दिन निकलता है, फिर से तलाश शुरू हो जाती है। तो जिनको भी इस तरह की अदायगी बख्शी होगी वो ऐसा ही होता है।
1: नेहा जी, जब आप तलाश की बात करी कि जो तलाश या खोज अनवरत चलती रहती है, तो सच मायने में प्रेम ही वो एक ऐसा रूप है, स्वरूप है, जो मंजिल की बात नहीं करता है, वो सिर्फ रास्तों की खूबसूरती की बात बयां करता है, चाहे उसमें कितने दर्द मिले, कांटे हों, उदासियां हों, गम हो, आहें हों, आंसू हो, या तमाम खुशियां ही क्यों ना हो, लेकिन वो सिर्फ सफ़र तय करता रहता है, क्योंकि हर एक पड़ाव जो आता है इस सफ़र में वो इतना खूबसूरत होता है, इतना दिल नशीं होता है कि मन बस उसी प्रेम में, पूरी तरह से प्रेम के फूल के इर्द गिर्द भौरे के समान घूमता रहता है, डोलता रहता है।

0: जरा इसकी आखिरी बोलों पर गौर फरमाएं। वो कहते हैं कि मेरे हिज्र की बात छोड़ो, इसका मतलब मेरे बिछड़न को, मेरे दुख को, मेरे
1: जुदाई
0: दर्द
1: को,
0: जुदाई को छोड़ो, आप अपनी बयानगी करो, क्योंकि जब आप मेरे हिज्र पर नज़र डालेंगे, बात करेंगे, तो शायद वो जो बात हम तलाश ही कर रहे थे, वो बात बहुत गहरी बात एक ही है कि इतनी मुद्दत बाद मिले हो, फिर कहाँ गुम हो। तभी उन्होंने हवा ही नहीं कहा, तेज़ हवा कहा, कि कई बार हमको गहराई नापने की ज़रूरत पड़ती है।
1: जी हाँ, लेकिन समझने की ज़रूरत नेहा जी अब हमें भी है, क्योंकि समय इजाज़त की बात कर रहा है।
0: सुधीर श्रोताओं, आज का

0: कार्यक्रम आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि पसंद आया होगा।
1: पसंद आया है तो अपनी प्रतिक्रिया 8004926250 जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भेज दीजिए। और अब विदा की बेला आ चुकी है दोस्तों, तो दीजिए हमें इजाजत।
0: नमस्कार।

सावन की फुहारों में कुछ ऐसा असर है, हर बूंद में जैसे तेरा ही जिक्र है। भीगती हुई शाम और तेरी यादों का साथ, भीगती हुई शाम और तेरी यादों का साथ, यही तो मेरे दिल की सबसे हसीन बरसात है।

बारिश की बूंदें जब खिड़की पर दस्तक देती हैं, तेरी यादें भी दिल में हलचल सी करती हैं।

दिल में हलचल सी करती हैं। कुछ बूंदें जमीन पर गिरकर मिट जाती हैं, कुछ आंखों में उतरकर अश्क बन जाती हैं।

अभिन्द्र कुमार उपाध्याय के गीत रचना आप सुन रहे थे फिल्म रॉय से। स्वर और संगीत अंकित तिवारी का था।

0: चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से।
1: आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से कामकाज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार, इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके टीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस ई फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है।
3: अंतिम तिथि के बाद टीडीएस फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना न भूलें। यदि टीडीएस या टीसीएस योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।
0: बारिश ने आज फिर एक कहानी लिख दी। बारिश ने आज फिर एक कहानी लिख दी। मिट्टी की खुशबू में तेरी निशानी लिख दी। जितनी बूंदें गिरी इस भीगी हुई जमीन पर, जितनी बूंदें गिरी इस भीगी जमीन पर, उतनी दफा दिल ने

समीर की गीत रचना नदीम श्रवण का संगीत कुमार सानू अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें फिल्म का नाम फूल और कांटे।

उमड़ते बादल, बरसती फुहार और ठंडी हवा का साथ। उमड़ते बादल, बरसती फुहार और ठंडी हवा का साथ, यादों ने फिर छेड़ दी दिल की हर एक बात। सावन की हर बूंद यही पैगाम सुनाती है, सावन की हर बूंद यही पैगाम सुनाती है, सच्ची मोहब्बत हर मौसम में मुस्कुरा।

SH बिहारी की गीत रचना, ओपी नैयर का संगीत, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, फिल्म कश्मीर का सदाबहार युगल गीत है ये।

बादल भी क्या खूब मोहब्बत निभाते हैं, समंदर से मिलकर धरती पर बरस जाते हैं। जो लोग कहते हैं इश्क में कुछ नहीं मिलता, वो शायद कभी सावन की बारिश में नहीं भीग पाते हैं।

इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीडी फ्री डिश और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। पेश है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल की गाई इस गणेश वंदना के साथ।

कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं कभी, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं कभी, बस मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपे रहते हैं सभी।

वक्त ने हर दर्द का हिसाब तो कर दिया, वक्त ने हर दर्द का हिसाब तो कर दिया, बस दिल का खालीपन कभी न भर सका।

दिल की वीरानियों का कोई मौसम नहीं होता, दिल की वीरानियों का कोई मौसम नहीं होता, कुछ दर्द उम्र भर साथ निभाते हैं।

0: हरिहरन की गाई इस गजल के साथ ही सबरस कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: एहसास की धूप छाओं में, हवाओं के संग।

गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अनेकता में एकता इसकी विशेषता है। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक

0: राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान

0: में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे।

0: 52 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves two major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: On host England in first T20 International, a five-match series tonight, and in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। हुकूमत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की मालियत के शाहराओं के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। विकसित भारत जी रामजी एक्ट आज से मुल्क भर में नाफिज हो गया है। मरकज ने इस स्कीम के तहत उजरत की नजरे सानी शुदा शरहों को नोटिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के दावों में यकसानियत लाने की गरज से गाड़ियों के हादसे के मुतासरीन की आमदनी का तायुन करने के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो कल 16वें भारत जापान सालाना समिट में हिस्सा लेंगी। मर्दों के क्रिकेट में आज रात 5 मैचों की सीरीज में भारत और मेजबान इंग्लैंड पहले T20 बैन अक्वामी मैच में आमने सामने होंगे और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के अटलांटा में इंग्लैंड और DR कॉन्गो प्री क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज शाहराओं के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिस पर मुश्तरका तौर पर 14,114.81 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्टों में 6,969 करोड़ रुपए का दिल्ली में सुरंग से मुतालिक एक प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को कम करना है। दूसरा प्रोजेक्ट 7,145 करोड़ रुपये के ग्रीन फील्ड शाहरा से मुतालिक है। ये शाहरा उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। मरकजी काबीना के फैसलों के बारे में कौमी राजधानी में मीडिया से बात करते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इन प्रोजेक्टों का मकसद PM गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सफ़र के वक्त को कम करना और इक्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग देना है। काबीना ने दिल्ली में कौमी शाहरा 148 AE पर 6 लेन वाली 8.1 किलोमीटर तवील सुरंग की तामीर को मंजूरी दी है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। काबीना ने उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा नंबर 34 पर 117.7 किलोमीटर कानपुर कबरई सेक्शन की तामीर को भी मंजूरी दी है, जो 4 लेन वाली एक्सेस कंट्रोल राहदारी होगी, जिसका ढांचा इस तरह वजह किया जाएगा कि इसे आसानी से 6 लेन वाला बनाया जा सके।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 के तहत बढ़ी हुई उजरतों का इतलाक आज से मुल्क भर में हो गया है। देही तरक्यात की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहें तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बढ़ा दी गई हैं। वजारत ने कहा है कि पहली मरतबा 300 रुपये यौमिया की उजरत की एक अबूरी बुनियादी शरह मुतारफ कराई गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस प्रोग्राम के तहत कोई भी नोटिफाइड उजरत इस सतह से कम ना हो। विकसित भारत जी राम जी के तहत कौमी औसत उजरत MG नरेगा के तहत 298.80 रुपये यौमिया से बढ़कर 327.40 रुपये यौमिया हो गई है, जो कि 10% का औसत इजाफा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रहनुमा खतूत जारी किए हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की बुनियाद पर गाड़ी के हादसे में हलाक होने वाले मुतासरीन या दावा पेश करने वाले जख्मियों की सालाना आमदनी का तायुन अदालतें किस तरह करें। गाड़ियों के हादसे की सूरत में मुआवजों में यकसानियत लाने की गरज से एक अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तनख्वाह पाने वाले अफराद के लिए पिछले बरस की इनकम टैक्स रिटर्न ही सालाना इनकम का तायुन ऋण करने के लिए काफ़ी होगी। अपना रोजगार आप चलाने वाले अफराद के सिलसिले में अदालत ने कहा है कि पिछले 3 बरस में दाखिल की गई ITR में बताई गई औसत आमदनी को ही आमतौर पर रेफरेंस पॉइंट बनाया जाएगा। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर

0: सिंह ने कहा कि मोटर गाड़ियों के एक्ट के तहत सालाना आमदनी का हिसाब किताब लगाने के लिए कोई एक तयशुदा फार्मूला नहीं हो सकता, इसलिए उसने तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन और अपना रोजगार खुद चलाने वाले अफराद के दरमियान वाजह तफरीक कायम की है ताकि उनकी अपनी अपनी ITR की बुनियाद पर मुआवजे का तयन किया जा सके। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के सिलसिले में आला सतह की कमेटी से कहा है कि वो जल्द अज जल्द अपनी सिफारिशात पेश करे। नई दिल्ली में कमेटी के साथ एक मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने यह हिदायत दी। कमेटी ने वजीर दाखिला को मुत्तला किया कि वह मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का दौरा करेगी ताकि आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के बारे में बर मौका इत्तला हासिल कर सके और मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सके। कमेटी ने जनाब शाह को बताया कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मुतालिका मालूमात हासिल करने की गरज से एक तफसीली सवालनामा पहले ही तैयार किया जा चुका है जिससे उनके ये दौरे ज्यादा बामानी और ज्यादा तामुल पर मबनी हो सकेंगे। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरपर्सन PP चौधरी ने लोकसभा और रियासती कानून साज असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ मुनक्किद करने की जरूरत पर जोर दिया। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात का एक साथ इनेकाद करने से हुक्मरानी का निज़ाम मुस्तहकम होगा, बार बार होने वाले चुनाव से खलल अंदाजी में कमी आएगी और ये मुल्क की मईशत के लिए फायदेमंद रहेगा। जनाब चौधरी ने कहा कि इंतखाबात का एक साथ इनेकाद कराने का ख्याल नहीं है और इंतखाबी कमीशन, लॉ कमीशन और माहिरीन पर मुश्तमिल दीगर इदारे बरसों से इसकी तजवीज़ पेश करते रहे हैं। एक मुल्क एक इंतखाब के फवाइद बयान करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि इससे मिसाली जाब्ता अखलाक के बार बार निफाज में कमी आएगी।
1: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हुआ।
0: मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने डेंगू से मुतालिक तैयारियों के बारे में दिल्ली सरकार के साथ एक जायजा मीटिंग के दौरान अवामी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि TB मुक्त भारत अभियान में तेजी आ सके। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि इस मुहिम से मुतालिक तमाम इत्तलात और मालूमात सादा और आसानी से समझ में आने वाली जबान में होनी चाहिए ताकि अवाम तक वसी तर रसाई को यकीनी बनाया जा सके। भारतीय बहरिया के बहरी जहाजों INS तरकश और INS इक्षक ने सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पर लंगर अंदाज होने का अपना दौरानिया मुकम्मल किया। वजारत दिफा ने आज बताया कि इन बहरी जहाजों का यह दौरा बहरे हिंद खित्ते में दोस्ताना बहरी मुल्कों के साथ बहरी तआवुन को मुस्तहकम करने के भारतीय बहरिया के अज़्म को दोहराता है। यह दौरा विजन महासागर से भी मुताबिकत रखता है। इस दौरान सेशल्स के कौमी दिन और गोल्डन जुबली तकरीबात के तहत मुख्तलिफ पेशे वराना इस्तकबालिया और कम्यूनिटी की शिरकत पर मबनी सरगर्मियों को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। अपने दौरे के दौरान INS तरकश के बहरी बैंड और मार्चिंग दस्ते ने 28 जून को मुनक्किद सेशल्स के कौमी दिन की परेड में हिस्सा लिया, जो भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी और दीरीना बहरी साझेदारी की अक्कासी करता है। ये आकाशवाणी है। जापान की वजीर आजम सनाई ताकाइची अपने 3 रोजा भारत दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वजीर आजम ताकाइची का खैर मकदम किया। जापान की वजीर आजम सनाई ताकाइची का यह भारत का पहला सरकारी दौरा है। इस दौरान वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वें भारत जापान सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। ये चोटी कॉन्फ्रेंस फरीकैन को दो तरफा तआवुन के सभी पहलुओं का जायजा लेने, उन्हें मुस्तहकम करने और बाहमी मफादात के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी और जापान की वजीर आजम के दरमियान बातचीत के बाद कई मुफाहमत नामों के तबादले की उम्मीद है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारत और जापान बुनियादी ढांचे, शहरी जदीदकारी, तवानाई, ज़राअत, सियाहत और हुनरमंदी प्रोजेक्टों समेत शुमाल मशरकी भारत में कनेक्टिविटी और तरक्की में शराकत दार हैं। शुमाल मशरकी खिता खुले और आज़ाद भारत बहरुल काहिल के जापान के नज़रिए से मुताबिकत रखता है और जुनूबी एशिया को जुनूब मशरकी एशिया से जोड़ने में पुल का काम करता है। शुमाल मशरकी खित्ते और जापान के दरमियान साल 2025 तक अब तक कई आला सतह के दौरे हुए हैं, जिनमें जापान के खारजी उमूर के वजीर ममलकत इवा

0: होरी का इस साल फरवरी का भारत दौरा शामिल है। इस दौरान उन्होंने मेघालय और आसाम के वज़ीर-ए-आला से मुलाकात की थी। इसी तरह आसाम के वज़ीर-ए-आला ने भी गुज़िश्ता साल जनवरी के महीने में जापान का दौरा किया और आसाम और आसियान के दरमियान अगले 5 साल के दौरान 20,000 नौजवानों को तरबियत देने से मुतालिक मफाहिमत नामे पर दस्तखत किए गए। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद में तारीखी 125 साल पुराने मुकद्दस गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को मुनहदिम किए जाने की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि यह इंतहाई अफसोसनाक और तहजीबी विरासत को ख़त्म करने की एक तयशुदा कार्रवाई है। मुबैना इनदामी कार्रवाई के मुतालिक मीडिया के सवालात के जवाब में वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इस इनदामी कार्रवाई पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया और मकामी हुक्काम या इवैक्यूट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की जानिब से कोई बामानी कार्रवाई न किए जाने की रिपोर्टों पर भी तशवीश जाहिर की। भारत ने पाकिस्तान से जोर देकर कहा है कि वो इस मामले की तेजी से तहकीकात करे और कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुंचाए। जनाब जायसवाल ने जोर देकर कहा कि गुरुद्वारा साहिब के मुनहदिम किए गए हिस्सों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और उनकी तामीर नौ की जाए। भारत ने इस्लामाबाद से जोर देकर यह भी कहा है कि वह अकलियती फिरकों और उनकी इबादत गाहों के तहफ़ सलामती और ठीक ठाक रहने को यकीनी बनाए जाने से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और पाकिस्तान में फिरके वारियत पर मबनी तशद्दुद और मजहबी अदम रवादारी के मौजूदा माहौल को फैसला कुन इख्तिताम तक पहुंचाए। भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में सिफारती चैनलों के जरिए एक दूसरे के मुल्कों में जेर हिरासत शहरी कैदियों और माही गिरों की फहरिस्तें एक दूसरे को पेश की। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 ऐसे शहरी कैदियों और 53 माही गिरों की फहरिस्त उन्हें सौंपी जो पाकिस्तानी हैं या जिनके मुतालिक ख्याल है कि वह पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 सिविल कैदियों और 198 माही गिरों की फहरिस्त सुपुर्द की जो भारतीय हैं या जिनके मुतालिक ख्याल है कि वो भारतीय हैं। भारत पाकिस्तान के जेर हिरासत शहरी कैदियों माहीगीरों और उनकी कश्तियों और लापता भारतीय दिफाई अहलकारों की जल्द अज जल्द रिहाई के लिए लगातार जोर देता रहा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों का पहला जत्था जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप में पहुंच चुका है और कल से सालाना यात्रा शुरू होने की तमाम तैयारियां हो गई हैं। तमाम जरूरी तैयारियां जिनमें बढ़ी हुई सिक्योरिटी और यात्रियों की रिहाइश के इंतजाम शामिल हैं पूरी हो गई हैं। ये 57 रोज़ा यात्रा ननवान पहलगाम और बालतल के रास्ते सख्त सिक्योरिटी में जारी रहेगी। आकाशवाणी ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में वाक़े रंग भवन ऑडिटोरियम में अपनी नशरियाती हाउस की फ़ोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का इफ्तिताह किया। इस फोटो गैलरी का इफ्तिताह पद्म विभूषण बांसुरी नवाज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने किया। इस तकरीब के दौरान एक मौसीकी रेस कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया जिसमें पंडित रूपक कुलकर्णी ने बांसुरी की धुनों से मन मोह लिया। इस तकरीब के दौरान प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी और दूरदर्शन न्यूज़ के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद अफराद से खिताब करते हुए जनाब द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की फरावा मौसीकी की विरासत को महफूज रखने और फ़रोग देने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है।
2: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के मैन T20 5 बैन अलावामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में होगा। ये मुकाबला भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फुटबॉल में फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में आज रात एटलांटा में इंग्लैंड का मुकाबला जमहूरिया रिपब्लिक कांगो से होगा। और आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے۔ مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے معاوضے کے دعووں میں یکسانیت لانے کی غرض سے گاڑیوں کے حادثے کے متاثرین

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक है प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट है। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: तो सुन जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं, तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा

0: सबकी पहुंच में होना और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?

0: सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा। हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी, जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती है, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट, एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
2: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफाम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं दूसरा, और तीसरा अब हमारा है भारत का, जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है।
2: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका अगर 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी AI है, वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से GPU प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो MSMEs और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो AI कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो LLMs या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो

0: एबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत यहाँ ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया है, और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इससे ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हो या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हो, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी पुसुम जी ने बात किया कि एआई कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूस दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
2: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माइकॉप आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: सुन जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
0: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी, हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है, इवन जो आपको सर्टिफिकेशंस, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए हैं, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास

0: डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
2: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिलमैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टैब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा आरबीआई का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं कि बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर, तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी करप्शन ये सब है वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूं उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है। तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
0: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई, सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है, उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवरेनिटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं। उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है, और अगर अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है. तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो

0: पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है,
1: काफी निर्यात कर रहे हैं हम
0: जी। और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी MOU साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए है, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, AI में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन AI का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन AI का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है, ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये AI के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब AI के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी AI के लिए भी हम लोग को GPU चाहिए। अभी GPU अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का GPU चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो AI तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो GPU पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, तो सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी, अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती है कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
0: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि OTP शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या SMS या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं, मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक IITs के थ्रू MSMEs को अवेयर करने के लिए कि इनको

0: को कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट को भी आना चाहिए इसके आगे और कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ONDC जैसी पहल हो या फिर GEM जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो MSMEs हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ONDC पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल FTA साइन कर रहे हैं, अब ONDC के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ FTA कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले GST हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि GST जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी, टैक्सेशन और खासकर MSMEs को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इंप्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो MSME हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे अब पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर हमारे MSME के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं FTA के थ्रू बेचने हैं तो उसमें कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव है, हम लोगों को अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो की एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई AI, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे AI विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और AI एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।

कार्यक्रम में पहले आपको सुनाने जा रहे हैं समीर की गीत रचना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज, नदीम श्रवण का संगीत, फिल्म का नाम जान की कसम।

मोहरा। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इस फिल्म का गाना आनंद बख्शी का लिखा, विजू शाह का संगीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें।

युवा। फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाने जा रहे हैं इस फिल्म का गाना अदनान सामी और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं सितार पर बजाया राग किरवानी, वादिका रेशम श्रीवास्तव। इनके साथ तबले पर संगत की है विनोद कुमार मिश्र ने।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक DR कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sai Ramujtaba.